918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सभा की शुरुआत रोज ही की तरह करेंगे समाचारों के साथ, हिंदी और अंग्रेजी में। समाचारों के लिए आइए आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री

0: मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ईश्वर के बारे में कुछ किताबें पढ़ने या किसी गुरु के आशीर्वाद से ईश्वर और उनकी महिमा को नहीं समझा जा सकता। यह केवल एक अनुभूति है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इसे आपको स्वयं ही अनुभव करना होता है। भगवान से कुछ मांगने पर ना मिले तो उनसे नाराज होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता हो, बल्कि भगवान तो वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो।

ईश्वर की भक्ति हमें अद्भुत शक्ति देती है। हमारे मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं, मन शांत और सरल हो जाता है। हम अपने समय और धन को अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। ईश्वर इस जगत के कण कण में है, वो सदैव हमारे पास, हमारे साथ, हमारे सुख दुख में रहते हैं। जब भी आपके मन में किसी के प्रति बुरे विचार या घृणा आ रही हो, तो ऐसे में अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाएं। ऐसे विकार केवल ईश्वर के मनन से ही दूर हो सकते हैं।

ईश्वर सत्य हैं और वो लोगों के हृदय में विराजमान रहते हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास बने रहने पर उनकी कृपा अवश्य बरसती है। जिस प्रकार दूध में उपस्थित होते हुए भी घी किसी को दिखाई नहीं देता, फूल में गंध होने के बाद भी नजर नहीं आती, उसी प्रकार हमें अपनी बुराई, दूसरे की भलाई, बीज में छिपा वृक्ष और सभी स्थानों पर उपस्थित ईश्वर नजर नहीं आता।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।

देखिए परमात्मा के इस सारे कायनात को हम देखें तो हमें एक चीज नजर आती है कि परमात्मा सतत सृजनशील है, नॉन स्टॉप 24 घंटे सृजन चल रहा है। उसका काम अरबों खरबों पता नहीं कितने वर्षों से है, लेकिन सृजन रुकता नहीं है। तो सृजन ही प्रेम और धर्म है। एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ, अपने घोड़े पर बैठकर हर दिन सुबह शहर में घूमता था, रोज का उसका नियम था। उसको बड़ा सुंदर अनुभव होता था यह देखने में कि कैसे मेरा शहर विकसित हो रहा है, कैसे उसकी राजधानी अधिक से अधिक सुंदर हो रही है। उस राजा का यह स्वप्न था कि उसे पृथ्वी की सबसे सुंदर जगह बनाया जाए उसकी राजधानी को। वो हमेशा अपने घोड़े को रोकता और एक बूढ़े व्यक्ति को देखता। उसका रोज का नियम था। उस बूढ़े की उम्र करीब करीब 120 वर्ष की थी, इतना वृद्ध था वो आदमी। तो राजा जब घूमने निकलता तो उस बूढ़े व्यक्ति के पास, जो बगीचे में काम करता रहता, बीज बोता, वृक्षों को पानी देता, ऐसे वृक्ष जिनको बड़े होने में सैकड़ों साल लगेंगे, फिर भी उसकी रखवाली करता वो बूढ़ा व्यक्ति। उसे बड़ी हैरानी होती कि यह आदमी आधा कब्र में जा चुका है, 120 साल का हो गया है, किसके लिए यह बीज बो रहा है, ये तो जाने वाला है। वो कभी भी इस वृक्ष पर आए हुए फल और फूलों को कभी देख नहीं पाएगा, क्योंकि वृक्षों को बनने में, ऊंचा होने में टाइम लगता है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह अपनी मेहनत का फल देख पाएगा। एक दिन वो बादशाह अपने को रोक नहीं पाया, रोज देखता उसको, वृद्ध व्यक्ति को बगीचे में सतत काम करते हुए, और काम करते हुए प्रसन्नता यह भी देखता। वो रोक नहीं पाया, अपने घोड़े से उतरा और उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर वो पूछने लगा, बाबा मैं हर दिन यहां से गुजरता हूं और एक प्रश्न मेरे दिमाग में रोज आता है, अब यह असंभव हो गया मेरे लिए कि मैं आपके कार्य को क्षण भर बाधा पहुंचाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप किसके लिए यह बीज बो रहे हैं। ये वृक्ष जब तैयार होंगे, युवा होंगे, तब आप यहां नहीं होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने सम्राट की तरफ देखा, हंसा और फिर बोला, यही तर्क अगर मेरे बाप दादाओं का होता तो मैं फल और फूलों से भरे इस सुंदर बगीचे से महरूम हो गया होता। मेरे बाप दादा भी यही सोचते कि हमें क्या करना है। तो आज ये जो वृक्ष बगीचा मेरे सामने लहलाता है, इससे मैं महरूम हो गया होता। हमारा पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी माली है। मेरे पिता बाप दादाओं ने जो बीज बोए उसके फल मैं खा रहा हूं, और मेरे बच्चों के बाद बच्चों का क्या हो गया, इसकी रखवाली, इसकी सुविधा मैं जुटा रहा हूं। लोग मेरे बगीचे को दूर दूर से देखने आते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे वृक्ष है जो हजारों

साल पुराने हैं और मैं बस वही कर रहा हूं जो मैं कृतज्ञता से कर सकता हूं, धन्यवाद से कर सकता हूं। माली कहता सम्राट से, जहां तक बात बीज बोने की है, जब बसंत आता है और जब बसंत आने के बाद पत्ते उगते देखकर मुझे इतना आनंद आता है कि मैं भूल ही जाता हूं कि मैं कितना बूढ़ा हो गया हूं। उस सृजनशीलता में मुझे इतना आनंद आता है एक पत्ते को खिलते देखकर

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:10 पर सुनिए कार्यक्रम खेती हराम वास्ते। आज जानकारी देंगे ग्वार की उन्नत खेती। मानसकान में आज हम आपको सुनवाएंगे भाग संख्या 278। 7:30 पर सुप्रभात में बात करेंगे मार्गदर्शक की उपयोगिता, नरसेवा, नारायण सेवा, अनुशासन का महत्व। साथ ही साथ भेंटवार्ता सुनवाएंगे नगरीय स्वच्छता पर सफाई निरीक्षक वार्ताकार मनिंद्र सारसर से नवीन सिसोदिया की बातचीत। सुगम संगीत 8:45 पर, 9:10 पर मरुमंगल में आज कलाकार होंगे करीम खां खजड़ला। 9:30 पर फिल्म संगीत और प्रातः 10 आप सुन पाएंगे कार्यक्रम अनुरोध गीत। फिल्म संगीत प्रातः 11 और कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत 12:05 पर। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे 12:30 पर और 12:50 पर खेत खलिहान में। आज जानकारी देंगे हरे चारे के लिए लोबिया की खेती। महिला जगत में आज बात करेंगे बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का प्रेम, फायदे या नुकसान, स्क्रीन से लगाव छिन रहा है बचपन, थायराइड कारण और निवारण, घर पर आनंद ले भेलपूरी का। 2:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। उर्दू सर्विस के प्रसारण दोपहर 3 से हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5 युववाणी में बात करेंगे जाने राजस्थान के सांस्कृतिक महत्व को, महिला सशक्तिकरण, अध्यात्म का जीवन में महत्व, योगासन के फायदे, साथ ही साथ आज का इतिहास। वार्ता सुनवाएंगे महिला सशक्तिकरण, वार्ताकार होंगी सानिया कुमारी। कार्यक्रम धीनेरी बाता हमारे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:05 पर सुनिए सराय की और चौपाल। शाम 7 आप हमारे केंद्र से सुन पाएंगे। 7:45 पर फिल्म संगीत और रात्रि 8 कार्यक्रम एक ही फिल्म से राजस्थान दर्शन। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर केंद्र से रात्रि 10 रिले किया जाएगा। रात्रि 10:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 55. And in the FIFA World Cup, England opened their Group L campaign with a 4-2 victory over Croatia at Dallas Stadium in Arlington, USA. England captain Harry Kane struck twice from the penalty spot in the 12th and the 42nd minutes. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। खेती हरा वास्ते कार्यक्रम में आज जानकारी देंगे ग्वार की उन्नत खेती।
2: किसान भाइयों राम राम। भाई लोग हर तरह की खेती करे अपने क्षेत्र में, हिंगे सागे सागे सावणी की फसल में किसान भाई जका ग्वार की भी खेती करे। ग्वार अपने सिंचित अरबरानी क्षेत्र में भी बीजी जाए। ग्वार की फसल में भी आपा उन्नत विधियां अपनावा तो कम पानी में ज्यादा उत्पादन आपा ले सका। अब बात करा आपा उन्नत किस्मा की, तो उन्नत किस्मा में जिया HG2-20 सिंचित अरबिरानी क्षेत्र का तरह अच्छी किस्म है और इस आपा ज्यादा पैदावार भी ले सका। ई किस्म में पौधा में ज्यादा शाखावा हुए जैसे में फूल 40-50 दिन में आ जाए और पकाव अवधि 110-120 दिन है। पैदावार की बात करा तो 3-4 क्विंटल प्रति बीघा ती पैदावार हो जाए। आ किस्म कम गिरे और बीमारियों के प्रति मध्यम सहनशील है। RGC-1002 की बात करा, आ किस्म अति शुष्क और कम बिरखा और पानी गए अच्छे निकास वाली माटी के लिए ग्वार की अच्छी पैदावार देने वाली संपूर्ण क्षेत्र में अच्छी किस्म है। इंगे बुंटे में ज्यादा शाखा हुए, पतियांगो किनारो दांतेदार हुए। आ किस्म 80-90 दिन में पाक कर तैयार हो जाए। RGC-1066 इन्हें लाठी ग्वार भी कहे। आ किस्म 100-105 दिन में पाक कर तैयार हो जाए। इमें शाखावा कौन बने, इंगा दाना सफेद गुलाबी आभायुक्त हुए। उपज की बात करा तो 3-4 क्विंटल प्रति बीघा ताई हुए। आ यांत्रिक कटाई के खातर भी चोखी है। HG-365 की बात करा, ई किस्म का पौधा छोटा हुए। आ जल्दी पाकर पकने वाली अच्छी किस्म है। आ 85-100 दिन में पाक के तैयार हो जाए। इंगा दाना छोटा है, सलेटी रंग का हुए। दाना की औसत पैदावार 3-4 क्विंटल प्रति बीघा ताई हो जाए। दाने में गोंदगी मात्रा 30% तय हुए। कम टाइम में पाकने वाली आ किस्म है। टाइम पर आपा कटाई कर लिया तो इनके बाद में मैं सरसों की फसल भी आपा ले सका। RGC-936 किस्म की बात करा, जल्दी पाकने वाली किस्म है। आ 100-110 दिन में पाक कर तैयार हो जाए। उपज की बात करा तो 4 क्विंटल प्रति बीघा डेढ़ तय उपज हो जाए। इनमें झुलसा रोग सहने की भी क्षमता है। किसान भाइयों RG-986 की बात करा, ई किस्म में ज्यादा शाखा निकले। आ किस्म की पत्तियां जकी खुरदरी हुए और इंगी पकाव अवधि की बात करा तो 115-125 दिन में पाक करा तैयार हो जाए। इंगी औसत उपज की बात करा तो 3-4 क्विंटल प्रति बीघा डेढ़ तय हो जाए। इंगी फलियां जकी लंबी हुए, झुलसा रोग कम लागे। सिंचित और बिरानी क्षेत्र में आप बिजाई की करी जा सके। किसान भाइयों की कारण वंशु उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध नहीं हुआ तो बी अवस्था में किसान भाई स्थानीय किस्म को चुनाव करके जबकि अच्छी पैदावार देने वाली है तो बीसू चुनाव करके अरबे बिजाई कर सके। फसल चक्कर की बात करा, कणक सरसों बिंग बाद आप ग्वार ले सका। कपास एर फिर पड़त फिर बिंग बाद आप ग्वार ले सका। पड़त है तो बीम आप ग्वार ले सका। खेत के चुनाव की बात करा, ग्वार की खेती हर तरह की जमीन में भी आप कर सका। क्षारीय समस्या वाली भूमि या जगह में पानी को भरा हुआ है तो भी मैं ग्वार की खेती आपने नहीं करनी चाहिए। ग्वार की खेती सिंचित और असिंचित या दोनों ही परिस्थितियां में करी जा सके। वर्षा के बाद 1-2 जुताई करके सुहागो लगा खेत ने तैयार कर लेना चाहिए ताकि घास फूस नष्ट हो जाए। अरबी के बाद में आपने बिजाई जकी कर देनी चाहिए। जे बिरखा नहीं हुए तो जुलाई में पहले पखवाड़े के बाद प्लेव करके आपने बिजाई जकी कर देनी चाहिए। बीज के मात्रा की बात करा, 4-5 किलो बीज है जो प्रति बीघा तय अपने स्वस्थ प्रमाणित बीज लेके ग्वार की जकी बिजाई कर देनी चाहिए। बिजाई 2 पोराशियों करनी चाहिए जकम कतार शू कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तय होनी चाहिए। खाद और उर्वरक की बात करा, ग्वार खातर 5 किलो नत्रजन और 8-10 किलो फॉस्फोरस प्रति बीघा बुआई शू पहला खेत में मिला के अपन तैयार कर देना चाहिए। इंगे सागे सागे इंगे खातर 50 शू लेगे 62.5 किलो सुपर फॉस्फेट, 10 शू लेगे 11 किलो यूरिया प्रति

के हिसाब से अपने ड्रिल करके दे देनी चाहिए। बरानी क्षेत्र में जो को आपा ग्वार बीजा फास्फोरस की मात्रा जगी 5 किलो आपने देनी चाहिए। निराई गुड़ाई जब फसल आपने 1 महीने की हो जाए तो इन टाइम निराई गुड़ाई या कसी की सहायता से आपने कचरो जो को निकाल देना चाहिए। सिंचाई बात करें बिजाई के लगभग 1 महीने बाद में आपने वर्षा नहीं हुआ तो सिंचाई करनी चाहिए। जरूरत होने पर दूसरी सिंचाई बाद में अगस्त या सितंबर में आपने जरूरी हो तो सिंचाई कर देनी चाहिए। ग्वार के बाद आप जो हाड़ी वाली फसल लेना चाहो तो 15 सितंबर के बाद में आपने सिंचाई जी नहीं करनी चाहिए। तो किसान भाई इन तरह से जो आप तौर तरीका अपनावा तो ग्वार की भी आप अच्छा उत्पादन है जो ले सका। तो अब वो खेत का नहीं चालू। राम राम सा राम राम।

आज से आरंभ होता है श्री रामचरितमानस के पांचवें सोपान सुंदरकांड का संगीतबद्ध पाठ। मंगलाचरण के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति की याचना करते हुए जगदीश्वर के राम रूप की वंदना की है। माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले रघुकुल मणि, शांत चित्त, शाश्वत शांति देने वाले सर्वव्यापी और सभी प्रकार के प्रमाणों से परे हैं। इस वंदना के पश्चात भक्त कवि ने अतुलित बल वाले पवनसुत हनुमान को प्रणाम निवेदित किया है, जिन्हें सुमेरु पर्वत के समान कांति प्राप्त है, किंतु जो दैत्यों का विनाश करने के लिए अग्नि रूप धारण कर लेते हैं। सागर तट पर रीछराज जांबवान के प्रेरणा भरे वचन सुनकर पवनपुत्र हनुमान को अपनी क्षमता और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस कान। आज हमने आपको सुनवाया भाग संख्या 278। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

0: स्वच्छता न केवल हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारे अच्छे मन के लिए भी आवश्यक है। बात करेंगे नगरीय स्वच्छता पर। सफाई निरीक्षक मनिंदर सारसर से बातचीत कर रहे हैं नवीन सिसोदिया।
1: श्रोताओ राम राम। कोई भी शहर हो बिंग मायने सारों जरूरी हुआ सफाई व्यवस्था, सड़कों को निर्माण निर्माण वास्ता है और सफाई व्यवस्था वास्ता भी शहर के अंदर निगम पालिका आदि संस्थान जी का भी बनाडा हुआ है। अपने सूरतगढ़ शहर में नगर पालिका सूरतगढ़ वो काम संभाले करें। शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने वास्ते आज अपना आकाशवाणी सूरतगढ़ का स्टूडियो में आपा बुलाए हुए मनिंदर सारसर ने, ये स्वच्छता निरीक्षक है। तो अपने शहर में जितनी भी सफाई हुए बे सफाई कर्मचारी जितना भी है बांगा ऊपर निरीक्षक लगड़ है और इस शहर की जी सफाई व्यवस्था है इन्हें देखे करें। आज आप जानांगा कि भी की प्रकार ये सफाई की व्यवस्था देखा है, में के सुधार करो जा सके और के जी खामियां है बयान नजर आवे और की आप आम नागरिक के रूप में उन्हें सहयोग कर सका। सारों पहले तो मनिंदर जी थारो घणो न घणो स्वागत है सा।
2: धन्यवाद
1: मनिंदर जी। आप सारों पहले यही बात पूछना चाहवा कि जी सफाई की जी प्रक्रिया है
2: जी,
1: बा माने बताओ के चरणा के अंदर हुआ किया हुआ है और प्रत्येक चरण पर कौन सो कर्मचारी जी वो काम करे।
2: देखो जी, सफाई की जिकी व्यवस्था है बी के लिए सफाई कर्मचारी सुबह बहुत ही जल्दी आगे काम लग जावे और आना के पश्चात सफाई कर्मचारी झाड़ू काम और नाली निकालना वो काम करे।
1: अच्छा,
2: बी के पश्चात हमारी ट्रैक्टर ट्राली आवे वे माने लोड करके कचरा ने और हमारा जो MRF प्लांट है वे प्लांट में ले जावे।
1: अच्छा,
2: प्लांट में ले जाने के बाद में भी कचरा को निस्तारण रिसाइकिल बिन गए दोबारा हम लोग करा।
1: ठीक है,
2: भी कचरा अलग अलग करना वो काम में लोग करा और जो भी काम है बड़ो MRF प्लांट के अंदर हुए। वो
1: MRF प्लांट को के नाम हुआ है
2: जिको कचरा ने रिसाइकिल बिन करना को जिको प्लांट है बिको नाम
1: MRF। अच्छा, कचरा ने रिसाइकिल करो थे बेटा।
2: हां जी बेटा।
1: तो अपने शहर में जहां सफाई कर्मचारी कितना है?
2: अपना शहर के अंदर 250 कर्मचारी है सफाई कर्मचारी।
1: अच्छा,
2: और स्थायी और 80 कर्मचारी अस्थायी जिका काम कर रहे हैं।
1: अच्छा, तो आंगी ड्यूटी थे को सुबह जल्दी चालू हो जल्दी कितने बजे चालू हो जाए साहब?
2: देखो सफाई कर्मचारियों की जिकी ड्यूटी है दो शिफ्ट में हुए, सुबह सुबह 6 बजे ले गए 10 बजे तक और दोपहर 3 बजे ले गए 7 बजे तक।
1: अच्छा,
2: गर्मी के दौरान और सर्दी के दौरान आ ड्यूटी जिकी है सुबह 7-11 और 2 ले गए 6 बजे तक।
1: अच्छा, तो मनिंदर जी आप यहाँ पूछना चाहें कि जहाँ थे बताया कि सफाई है बात तो सुबह हो जाए और ए सफाई कर्मचारी करे बिंग बाद में थे जी को कट्ठो कर दो बिना ले जाने वास्ते गाड़ियाँ लागड़ी है
2: बिग ले जाने लिए देखो ट्रैक्टर ट्रॉली को यूज करा मैं।
1: अच्छा,
2: जिका कचरा पॉइंट है बहुत कचरा चकना के लिए।
1: हाँ,
2: और घर घर कचरा जिको है बिना चकना के लिए मैं साधना को यूज करा भी मैं ऑटो टिपर है ऑटो होपर है ये भी अंदर यूज हुए।
1: टिपर और होपर में क्या अंतर हो?
2: टिपर जो है वो छोटो हुए घर घर कचरा संग्रहण हुआ भी और होपर जो है वो है बड़ो भी कचरा पात्र खाली कर गए और बे लेके जावे।
1: तो अपने शहर में कचरा पात्र भी रखड़ा है?
2: अपने शहर में कई जगह कचरा पात्र भी रखड़ है विशेष जगह बे खाली करने के लिए सुबह सुबह गाड़ी आवे ऑटो होपर वो बान खाली करे और बान लेके जावे।
1: आपा बात करा जी, कई बार आपा लोगों में शिकायत सुना कि आज हमारे कचरा की गाड़ी आई कोनी कचरा की गाड़ी आई कोनी, तो लोग कोशिश करे कि भाई आपा कचरो जी को गाड़ी में डाला तो बिंग बावजूद कई बार वे समझे कि गाड़ी कोनी आवे कई कई दिन कोनी आवे तो बिंग पीछे के कारण है?
2: देखो गाड़ियों को एक बात यह है कि कई बार टेक्निकल फॉल्ट हो जाए गाड़ी के अंदर।
1: अच्छा,
2: जब भी माने दिक्कत आवे कई बार जिका हमारा ड्राइवर है वहां कोई घर है अति आवश्यक काम हो जावे या मान लो भी बीमार हो जावे तो दिक्कत आवे। बाकी मैं पूरी कोशिश करा कि प्रतिदिन प्रत्येक घरों में कचरो निस्तारण करा लेके जावा।
1: जी गाड़िया जी की थे बताओ कचरा आ रही है ए सारा दिन चला है सुबह सुबह करता है?
2: आंगो जो को टाइम टेबल है वो सुबह सुबह हो रहे हुए।
1: अच्छा,
2: सुबह 6 बजे ले गए 12 बजे तक 1 बजे तक गाड़ी चले।
1: तो कचरो जी को थे आप अभी बात करा मनिंदर जी थे कहो कि भाई दो तरह को गिल्लो और सूखो अलग अलग हुआ है तो गीला कचरा में क्या चीज आवे और सूखा में क्या आवे?
2: देखो गीला कचरा में घर की सब्जियां होगी।
1: अच्छा,
2: घर को जो सामान गिल्लो है वो गीला कचरा में आवे बिना अपना अलग रखना चाहिए। और सूखा कचरा में जो सूखी थैले हैं आजकल लोग क्या करे सबसे बड़ी बात तो है कि जिकी पोलिथीन आ रही है।
1: हाँ,
2: पोलिथीन में कचरो पैक करके डाल दे गिलो सूखो मिक्स करके डाल दे।
1: अच्छा,
2: क्यों माना बहुत बड़ी समस्या हो।
1: तो पोलिथीन तो मनिंदर जी बैन है?
2: बिल्कुल पोलिथीन बैन है लेकिन फिर भी के शहर में मैं अभियान भी चला रहे हैं इस विषय में लेकिन फिर भी पोलिथीन चल रही है। मैं बार बार निवेदन करा कि पोलिथीन बैन है आप लोग यूज ना करो ये पोलिथीन को।
1: तो फिर लोग पोलिथीन के सामान क्या लेगा वे?
2: आप कपड़ा उथेलो लेके जाओ बाजार में।
1: अच्छा,
2: सामान लेगा हो फिर भी थाना अगर कोई प्रेस करे तो कोई दिक्कत कोई थाना कोई ना कपड़ा उथेलो देवे बाजार में तो माने नगर पालिका में संपर्क करो मैं व्यवस्था करवाऊंगा थाने कपड़ा।

दोस्तों, अपने आसपास साफ सफाई रखना, अपने समाज को, अपनी गली को, अपने वार्ड को, अपने देश को साफ सुथरा रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है।

0: थेला बांटा मैं भी बांटा अच्छा, और सामाजिक संस्था भी बांटे कपड़ा थेला।
1: बिल्कुल सही बात है सर। पर आप देखा कि जी मतलब सड़क पर अगर कचरो है नी तो भी मैं 80% ज्यादा हिस्सों जी को खिले ही है।
0: बिल्कुल आज के टाइम में सब बड़ी जी समस्या है जी प्लास्टिक की सिंगल यूज थेले हैं आंगी है ये वजह सबसे बड़ी तो समस्या पसवाना हो रही है।
1: अच्छा
0: पशु इथेले जिया खाजा है मान लो साइड में गिर दी खटे और पशु अगर खा गए तो भी बहुत बड़ा नुकसान हुए। तो मारो सब वही निवेदन है जितना भी श्रोता है कि वे लोग प्लास्टिक को यूज ना करें और बिक जगह कपड़ा की थैली को यूज करें।
1: तो कपड़ा की थैली यूज करनी चाहिए सबने। अर्पिंग बाद में बात करा जी थे कहो गिलो कचरो और सूखो कचरो जी को बेन अलग अलग रखना चाहिए। मैं तो थारू पूछना चाहूँ की जिया कई बार अपने बरसात वगैरह भी हुए जिया तो बरसात में पानी को जी को भराव हो जाए तो बिंग पीछे के थे मुख्य वजह मानो।
0: देखो मुख्य वजह है कि आज के टाइम में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अतिक्रमण हटावा।
1: अच्छा
0: जिका बड़ा बड़ा नाला है शहर का जागरूक लगाऊ निवेदन करा बार बार कि भी आंग ऊपर अतिक्रमण हटाओ। अगर अतिक्रमण हटेगा तो बाकी सफाई होगी और बाकी सफाई होगी तो पानी निकासी बेहतर होगी।
1: ठीक है
0: तो ये अभियान में मैं लाग भी रहा अभी काफी दिनों अभियान चल रहा है अतिक्रमण हटाने को और नाला सफाई करना को।
1: तो मनिंदर जी अतिक्रमण में के चीज आएगा जी।
0: देखो मुख्यतः जी की बात करें आप शहर के बीच में जो अतिक्रमण है वो तो नाला नाले आगे ऊपर जी अतिक्रमण कर लियो माने रोक ली अवरुद्ध कर ली
1: जी हाँ आगे आप घर का अगर रैंप बनावा वो भी अतिक्रमण में आएगी।
0: रैंप नियमित कुछ लिमिट में बनावा रैंप। आजकल कई लोग क्या कर रहे हैं जी रैंप बना लियो अपनी 25-30 फुट की है फ्रंट है अपनो मुख्य है तो मेरे लोग क्या कर रहे हैं भी मैं 5 या 4 फुट को रैंप बनावा तो जायज है
1: ठीक है
0: घर में आना जाना के लिए। लोग पूरी पूरी नाली पैक कर रहे हैं तो इस वजह के पानी अवरुद्ध हो रहे हैं और अपने शहर में पानी निकासी की समस्या।
1: नाली कई लोग तो मन लगा नाली भी पैक ही कर दे पूरी।
0: हाँ नाली पैक कर दे जाए तो दिक्कत हो रही है।
1: अच्छा
0: अभी थोड़ा दिन पहले अभियान चलाया मैं त्रिमूर्ति रोड के ऊपर भी पर लोगों ने 50-50 फुट को अतिक्रमण कर रखे भी वजह आज की रोड है त्रिमूर्ति रोड है अपना मुख्य बाजार है ये लोग भरे रहे पानी निकासी लेट हुए और बाद में नगर पालिका पर ओड़मो
1: मिले। तो थारो कहना मतलब वो है कि अगर नालियां सारी साफ हुए और एक दूसरे में जुड़ेड़ी हुए तो जो बरसात को पानी भी आवे वो आप ही आप निकासी हो जाए।
0: निकासी व्यवस्था बहुत बढ़िया है शहर में यदि थोड़ा सा सहयोग आम लोग करे अतिक्रमण ना करे तो कोई दिक्कत ही को नहीं आवे सफाई की।
1: सही बात है मनिंदर जी। मैं थारो अब ज्यादा लंबी बातचीत ना करते हुए थारो वही पूछना चाहूंगा कि आपने शहर की जितनी भी जनता थाने सुन रही है बा वास्ते थे सफाई के वास्ते और खासकर अतिक्रमण वास्ते के संदेश देना चाहो।
0: मेरो बाहू करबद्ध निवेदन रहोगो कि आप एक तो कचरो जो है वो सड़क पर ना खिंडाओ।
1: अच्छा।
0: सड़क पर अगर कचरो खिंडाओगा तो सफाई व्यवस्था में सबसे बड़ी घातक चीज है। मारी गाड़ी अगर आप तक नहीं पहुंच रही है तो आप मारू संपर्क करो मैं आप तक तुरंत व्यवस्था कराऊंगा।
1: संपर्क कटाए नगर पालिका में करेगी
0: नगर पालिका में करो मेरे व्यक्तिगत संपर्क कर सके।
1: अच्छा मनिंदर जी
0: मेरे व्यक्तिगत संपर्क करो मैं वांगी व्यवस्था करवा के दूंगा संपर्क समस्या दूर कराऊंगा। और जल निकासी के लिए मेरा निवेदन रहेगा शहर का जितने प्रबुद्ध लोग है वे अपना अतिक्रमण अपना स्वेता हटा लेवाए जिको माने अगर आना रहा है जिको मानसून के अंदर दिक्कत ना आवे।
1: जी बिल्कुल मनिंदर जी थे शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। मैं उम्मीद करा जिका आपने सुनने लग रहे श्रोता भाई बे ये बात से समझेगा और शहर ने स्वच्छ बनाने में साफ सुथरा बनाने में आपको योगदान देवेगा और थाना भी योगदान देवेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे नगरीय स्वच्छता पर सफाई निरीक्षक मनिंदर सारसर से नवीन सिसोदिया की बातचीत। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत फिर बातें और भी करेंगे।

दोस्तों, इस दुनिया में जीवन जीने के लिए सभी को किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है, किसी न किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। अकेले रहकर खुश रहना भी संभव नहीं है और अपने जीवन का रास्ता खोज पाना भी संभव नहीं है। हम अपना दर्द बांटकर कम कर सकते हैं या अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटकर बढ़ा सकते हैं। लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं, हमसे जुड़ते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ से हम जरूरत के समय मिलते हैं, कुछ से किस्मत में मिलते हैं और कुछ हमारे जीवन के पहले दिन से हमारे साथ रहते हैं। मार्गदर्शक जरूरी नहीं कि आपके घर के बाहर का भी, आपके पिता, आपका भाई, आपकी माँ या आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। वो व्यक्ति जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे दे, वो आपका मार्गदर्शक है। हर रिश्ते के अलग अलग चरण, तरीके और नज़रिए होते हैं। विश्वास, प्रेम और सम्मान, ये तीन अलग अलग तरीके हैं जिससे हमारे रिश्ते का महत्व दिखाया जा सकता है। विश्वास ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम यूं ही दे दें या जो भावनाओं से पैदा हो जाए। विश्वास कमाना पड़ता है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें एक भरोसेमंद इंसान चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोगों से मिलते हैं।

लेकिन हमारे दोस्त और प्रियजन खास होते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे लिए भी कोई व्यक्ति उतना ही खास है, उतना ही भरोसेमंद है। किसी भी परिस्थिति में जब हम गिर जाएं, हम रुक जाएं, वो हमें बचाने आए। यही विश्वास ज़्यादातर समय परिवार के सदस्य हमारे जीवन में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति होते हैं, साथ ही दोस्त हैं, प्रेमी होते हैं। कहते हैं पिता सबसे अच्छा दोस्त होता है, पिता सबसे अच्छा मार्गदर्शक होता है। एक वही व्यक्ति है जिसे हमेशा ये तमन्ना, हमेशा ये इच्छा होती है कि उसका पुत्र उससे आगे बढ़े। खैर, सुनते हैं एक गीत, फिर बातें और करेंगे।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का सुप्रभात कार्यक्रम संपन्न होता है। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। पीएम

0: suryaghar.gov.in पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
2: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
3: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
4: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
5: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
6: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती

0: विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
6: We have a huge pool of talent.
7: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमरीका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
1: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के हमराह पेरिस में वीवाटेक समिट में शिरकत करेंगे।

वज़ीर-ए-आज़म फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज पोलिंग होगी। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती मुआहिदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाज़े के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के आखिरी मरहले में कल रात पेरिस पहुंचे। फ्रांस की राजधानी पहुंचने पर होटल में जमा हुए भारतीय बिरादरी के अफराद ने जनाब मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुरजोश हामियों ने वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत का इजहार करते हुए नारों के साथ उनका खैर मकदम किया। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के आखिरी मरहले में कल रात पेरिस पहुंचे। फ्रांस की राजधानी पहुंचने पर होटल में जमा हुए भारतीय बिरादरी के अफराद ने जनाब मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुरजोश हामियों ने वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत का इजहार करते हुए नारों के साथ उनका खैर मकदम किया। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने पेरिस में अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। पेरिस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह वीवाटेक 2026 में शिरकत करेंगे। वीवाटेक समिट यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप प्रोग्राम है, जहां तवक्को है कि जनाब मोदी भारत के फरोग पाते हुए जिद्दत तराजी के निज़ाम और तकनीकी तरक्यात को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म एक खसूसी तकरीब में भारतीय बिरादरी के अफराद से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नुमानीगर से।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी आज दो तरफा तजारत और इख्तराई शराकत दारियों को मजीद मजबूत बनाने की गरज से अपनी मसरूफियात को जारी रखेंगे। वो फ्रांस और यूरोप के कारोबारी रहनुमाओं के साथ एक खसूसी गोलमेज इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें भारत के तेजी से फैलते हुए सनअती और टेक्नोलॉजी शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस दौरे का मरकजी हिस्सा आज बाद में वीवाटेक होगा, जो यूरोप की मुमताज टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों समिट में आला सतह की सरगर्मियों की क़यादत करेंगे। इन सरगर्मियों का इख्तिताम एक अहम कलीदी खिताब से होगा, जिसमें भारत के तेज़ी से बढ़ते हुए आलमी डिजिटल असर रसूख को उजागर किया जाएगा। ये वसी सफारती दौरा एक बड़े अवामी राबते के प्रोग्राम के साथ इख्तिताम पजीर होगा। वज़ीर-ए-आज़म वसी पैमाने पर मुनक़िद होने वाली भारतीय बिरादरी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जिसमें रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और भारत की तहजीबी विरासत को उजागर किया जाएगा। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी G7 समिट में कई मुफीद और नतीजा खेज मीटिंगें करने के बाद पेरिस पहुंचे हैं। इन मीटिंगों में उन्होंने हुक्मरानी और पॉलिसी साजी के अहम उमूर पर भारत का मौकफ पेश किया और सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें आलमी खुशहाली के लिए तरक्की पजीर ममालिक के साथ करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर देने का मौका भी मिला। G7 के आउटरीच इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने G7 मुल्कों, भारत और आलमी खित्ते जुनूब की मुश्तरका ताकतों को यकजा करके राबते और तजारत को बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क तजवीज़ किया। उन्होंने तरक्की पजीर मुल्कों पर मगरबी एशिया के बहरान के तवील मुद्दती असरात पर तशवीश का इजहार किया। G7 समिट के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की, जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर, यूक्रेन के सदर वलोदिमिर ज़ेलेंस्की, यूरोपीय यूनियन की आला रहनुमा उर्सुला वॉन डेर लेन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी शामिल थे। सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद जनाब मोदी ने समुद्री अमले के अफराद की सलामती का मामला उठाया और जोर देकर कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के नफाज के दौरान उनके तहफ़ को अव्वलिन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पेरिस के दौरे से तवक्को है कि खसूसी तौर पर टेक्नोलॉजी, इख्तरा और अवाम से अवाम के राबते के शोबों में भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। अपने दौरे के पहले दिन मोहतरमा मुर्मू मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में रूहानी बेदारी के जरिए कबायली समाज को बाख्तियार बनाने से मुतालिक एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: सदर जमहूरिया इंदौर पहुंचेंगी और फिर बैतूल का सफर करेंगी, जहां वो ब्रह्मा कुमारीज के जेर एहतमाम मुनाकिदा एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। बाद में मोहतरमा मुर्मू ओमकारेश्वर मंदिर जाएंगी और शाम की आरती में हिस्सा लेंगी। 19 जून को सदर जमहूरिया सिकल सेल एनीमिया के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर मुनाकिदा एक तकरीब में शिरकत करेंगी। 21 जून को मोहतरमा मुर्मू जबलपुर में योग के बैन अल-अक़वामी दिन की तकरीबात में हिस्सा लेंगी। वो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के 36वें जलसे तकसीम असनाद में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगी। इसके बाद वो नई दिल्ली रवाना होने से कबल कूनो नेशनल पार्क का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया के बैतूल के दौरे के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनावने ने सिक्योरिटी इंतजाम के तहत बाज बंदिशें नाफिज की हैं। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और आज़ाद

0: उम्मीदवार परिमल नाथवानी इलेक्शन लड़ रहे हैं। झारखंड कानून साज असेंबली में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती शाम 5 बजे शुरू होगी और इसके बाद नतीज का ऐलान किया जाएगा। असेंबली के तमाम 81 रुकन असेंबली अपना वोट डालेंगे। फिलहाल हुक्मरान इत्तेहाद को 56 MLAs की हिमायत हासिल है, जिनमें JMM, कांग्रेस, RJD और CPI ML शामिल हैं। 24 MLA की हिमायत वाली अपोजिशन ने आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी की हिमायत की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और बरतानिया ने ऐलान किया है कि जामी इक्तसादी और तजारती मुआहिदा CETA इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। तजारत व सनत की वजारत ने बताया कि समाजी तहफुज से मुतालिक ये मुआहिदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC भी कहा जाता है, इस पर भी उसी दिन से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तजारत और सनत की वजारत ने बताया कि DCC के तहत छूट की मुद्दत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है, जिससे भारत के आरजी वर्करों को बड़ा फायदा है। इस मुआहिदे को सराहते हुए तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि CETA और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के नाफिज होने से भारत की दरामदात के लिए नए मौके पैदा होंगे, क्योंकि भारत ने 99% टैरिफ लाइन्स पर फौरी ड्यूटी फ्री रसाई हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि इससे टेक्सटाइल, चमड़े, मरीन इंजीनियरिंग और डब्बाबंद खुराक से मुताल्लिक शोबों को बगैर किसी नुकसान के और अपनी आलमी सतह की मसनूआत सप्लाई करने में मदद मिलेगी। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्बार।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती मुआहदे से भारत और बरतानिया के दरमियान दो तरफा तजारत और सरमायाकारी को काबिले ज़िक्र तक़वियत मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुआहदे से भारतीय किसानों, वर्करों, MSME, स्टार्टअप्स और इख्तराकारों के लिए रोजगार के बहुत से मौके पैदा होंगे। गुज़श्ता 12 वर्षों के दौरान वज़ीर आज़म मोदी की दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के वसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत की मरबूत और कसीर जहती हिकमत-ए-अमली, जिसमें मुनज़्ज़म सिक्योरिटी कार्रवाइयां, माली वसाइल की बंदिश और तेज़ रफ्तार तरक्याती प्रोजेक्टों का नफाज शामिल था, मुल्क को नक्सलिज्म और माओ नवाजों की दहशतगर्दी से पाक बनाने में कामयाब रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे मुल्क से नक्सलिज्म का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा और अब ये हदफ हासिल कर लिया गया है। गुज़श्ता बरसों में कई अहम सिक्योरिटी कार्रवाइयों ने माओ नवाजों के नेटवर्क की कमर तोड़ने में फैसला कुन किरदार अदा किया। 2022 में झारखंड के बुद्धा पहाड़ इलाके में ऑपरेशन ऑक्टोपस अंजाम दिया गया, जबकि इसी साल फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के जरिए झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातिहार जिलों को नक्सलिज्म से आजाद कराया गया। इसी तरह 2022 में ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, मगरबी सिंहभूम और खूंटी जिलों में माओ नवाजों के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाया गया। 2025 में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद से मुत्तसिल तकरीबन 50 किलोमीटर तवील और 37 किलोमीटर चौड़े पहाड़ी इलाके में चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बाकी मानदा माओ नवाज कारिंदों को शदीद नुकसान पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के बस्तर के रहने वाले एक शख्स ने हुकूमत की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाने का वादा पूरा कर दिया गया है।
3: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो पूरे मोदी सरकार को और अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: जमीनी सतह पर इस मरबूत हिकमत अमली के नतीजे वाजे तौर पर सामने आए हैं। 2024 में 217 माओ नवाज हलाक किए गए, जबकि 2025 में ये तादाद बढ़कर 256 हो गई। साल 2026 में अब तक 26 माओ नवाज हलाक किए जा चुके हैं। इस दौरान कई बड़े नक्सल रहनुमा भी मारे गए। इन सिक्योरिटी इकदाम के नतीजे में नक्सल से मुतासरा इलाकों में तरक्की के एक नए सिलसिले का आगाज हुआ। झारखंड के जिला गुमला के रहने वाले टेम्बू ओराव ने कहा कि मोदी हुकूमत की तश्कील के बाद नक्सलिज्म बतदरीज खत्म हो गया और आज लोग अमनो सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं।
4: एक दशक पहले हमारा गांव क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलवाद के गिरफ्त में था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है,

0: सबसे धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी गांव का विकास हो रहा है, धीरे धीरे रोड सड़क बन गया है, काफी अच्छा है अभी।
1: आज नक्सलिज्म से पाक भारत की कहानी इस बात का सबूत है कि जमहूरियत, तरक्की और आईन ने कई दहाइयों पर मुहित तशद्दुद पर कामयाबी हासिल की है। दिल्ली से अक्षित वेदयान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
2: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पजश्कियान ने वर्चुअल वसीले से 14 निकाती मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को ख़त्म करना, अब नए हुरमुज को दोबारा खोलना और ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक हतमी माहदे के लिए 60 रोज़ा मुजाकराती अमल शुरू करना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान इस मुफाहमतनामे पर ज़ाती तौर पर दस्तखत किए। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की है कि मुफाहमतनामे के मतन को हतमी शक्ल देकर दोनों फरीकों की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। इस माहदे के तहत अमरीका अपनी बहरी नाकाबंदी और मुतल्लिका पाबंदियों को ख़त्म करने का अमल शुरू करेगा, जबकि ईरान इब्तदाई 60 रोज़ा मुद्दत के लिए अब नए हुरमुज से तजारती जहाज़ों की महफूज और बिला मुआवजा आमदोरफ्त को यकीनी बनाएगा। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान लखनऊ में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 49 ओवर 5 गेंद में 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 रन और ईशान किशन ने 125 रन बनाए। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
3: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, G7 इजलास में मोदी और ट्रंप की दो तरफा मुलाकात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आबनाए हुरमुज का खुला रहना दुनिया के लिए इंतहाई जरूरी है। उन्होंने भारतीय मल्लाहों के तहफ्फुज़ पर भी जोर दिया। सर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी की तारीफ की। रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, विकसित भारत के लिए रियासतों को मरकज की अच्छी हुक्मरानी की पहल को अपनाना चाहिए। इसी अखबार ने मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के बयान को नुमाया किया है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को आवामी तहरीक की शक्ल दी। रोजनामा इनकलाब ने फीफा आलमी कप से मुतालिक खबर को शाये करते हुए लिखा है, फुटबॉल के आलमी मेले में सितारे जगमगा उठे।
2: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह पेरिस में वीवा टेक समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आजम फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज पोलिंग होगी। भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती माहदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन माहदे पर दस्तखत किए हैं। और मर्दों की क्रिकेट में भारत ने 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
4: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर

युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत हिंदी में। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हमारे जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी। आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोल

0: और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि श्री ट्रंप ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान व्यक्तिगत रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। श्री मोदी कल रात राजधानी पेरिस पहुंचे। उनके आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। श्री मोदी ने डीप फेक, साइबर धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की हैं, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित ये मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट प्रतीक है। साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 प्रणाली का आधुनिकीकरण करने और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी में नागरिकों को तुरंत सहायता मिले। उन्होंने कल नई दिल्ली में हेल्पलाइन 1930 के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कॉल सेंटरों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि शिकायत निवारण व्यवस्था से अब तक लगभग 1,00,000 नागरिक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही गृह मंत्री ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर की साइबर पुलिस ने जिला कलेक्टर की SSO ID से छेड़छाड़ करने वाले एक शातिर साइबर ठग को झालावाड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल तवर ने कलेक्टर की आईडी में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर फर्जी दस्तावेज अपलोड किए थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि आरोपी का मुख्य उद्देश्य पीएम किसान, जन आधार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सरकारी योजना के लाभार्थियों के खातों की जगह बैंक में अपना खाता जोड़कर सहायता राशि हड़पना था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका स्वागत है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह फैसला लिया है। इसके लिए विभिन्न विभागीय सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। हालांकि जिन कर्मचारियों

0: लोगों ने वर्ष 2023-24 2024-25 और 2025-26 में इस छूट का लाभ पहले ही ले लिया है उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के नए पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने विभागीय जांच के 19 लंबित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कई कार्मिकों की वेतन बढ़ोतरी और पेंशन रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के 4 सेवारत अधिकारियों पर आरोप प्रमाणित होने पर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्णय लिया है। वहीं कुछ अधिकारियों को राहत भी दी गई है। भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई खत्म कर दी गई है। इसके अलावा 2 अन्य प्रकरणों में आरोप साबित नहीं होने पर 4 अधिकारियों को दोष मुक्त कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने और जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए आज भरतपुर संभागीय आयुक्त नन्ली कठोतिया की अध्यक्षता में किसान प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त ने एक अहम बैठक सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर तथा सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की। संभागीय आयुक्त ने बताया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दोनों जिलों के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद का शांतिपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान खोजना है।
1: 2026-27 के तहत पांचना बांध के समीप स्थित 39 गांवों के लिए सिंचाई परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी DPR तैयार की जा रही है, जो कि जुलाई माह के अंत तक संपन्न की जा सकेगी और ये इससे संबंधित निविदा आमंत्रित की जाकर अतिशीघ्र। इसी क्रम में हमने जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर और जिला कलेक्टर करौली से भी हमने वार्ता की है और इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया है। बांध में जलापूर्ति के गतिरोध को दूर करने की दृष्टि से हम जो दोनों ही पक्षकारों के प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं, वो आएं और आकर के हमसे वार्ता करें ताकि इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जा सके।
0: और अब मौसम। राज्य में पिछले 2-3 दिनों में कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 39.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दौसा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से आज राज्य के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभाग के लगभग 33 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां जारी, आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:10 हुए हैं। मरुमंगल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे लोक गायक करीम का खजड़ला के गायक कुछ लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम मुरमंगल में आज आपने करीम का खजड़ला के गाए कुछ लोकगीत सुने। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: जन कल्याण के।
1: फिल्म आशिकी का गीत सुनिए अभिजीत के स्वरों में। गीत समीर का और संगीत नदीम श्रवण का।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म दिल का गीत सुनिए, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के स्वरों में।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: फिल्म माचिस का गीत सुनिए, हरिहरन और साथियों के स्वर में। गीत गुलजार का और संगीत विशाल का।

कार्यक्रम के अंत में सुनी फिल्म सड़क का गीत, अनुराधा पौड़वाल और कुमार सानू के स्वरों में गीत समीर का और संगीत नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे थे। प्रातः के 10 बज चुके हैं। समय है आपकी फरमाइशी नगमों का। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं फिल्म दूसरा आदमी का गीत। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है सिद्धार्थ नगर बाबली से गजानन येले नवदीप विशुदीप अशोक येले, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशाल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, चक 15 पीए से सरबजीत सिंह जोसन सरबजीत कौर गुरमन सिंह आदर्शपाल रोबिन सिंह और उनके साथी, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी पिंकी अफजल मलिक निप्पी साहनी सुनीता साहनी, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवहानकर निर्मला और विशाल नवहानकर, करणपुर से पवन कटारिया शालू कटारिया और समीर कटारिया। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये नगमा।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अब जिस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है, इसके लिए फरमाइश की है सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, द्रीश नूरू, इरफान, मीना, कासिफ, झुंझुनू से भंवर सिंह, मीणा, तन्मय, हमीरी कलां, नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, स्वीटी छाबड़ा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती, गौरी और ओम कुमार, सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी, सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म जूली का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वरों में गीत आनंद बख्शी का, संगीत राजेश रोशन का।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मुंजला राठौड़, विशाल, निशा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। वर्षिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया।

दतरंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोकेलाल वर्मा, सादुल शहर से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, आप सभी ने पसंद किया है फिल्म स्वयंवर का गीत। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वरों में गीत गुलजार का और संगीत राजेश रोशन का।

पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां

0: पार्टी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: फिल्म मुद्दत का गीत सुनिए आशा भोंसले और मोहम्मद अजीज के स्वरों में। गीत इंदिवर का, संगीत बप्पी लहरी का, पसंद आप सबकी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत, बेबी, गरिमा बगड़िया। चंडीगढ़ से सतीश, अनेजा, बिमला, अनेजा। गांधीग्राम से प्रवीण, सोनी, पूजा, पायल, जूली और जगदीश जौहरी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, छिंदा, जसवीर, सीता और गीता। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये नगमा।

गांव रायण से डॉक्टर बनवारीलाल, जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल, पूनम, चालिया और उनके साथी। गांव खारिया हरियाणा से प्रताप, पज्जनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। केसरी सिंहपुर से राजकुमार टठई, कमल टठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम, महेंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल और ताराचंद दायमा। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन, नाजमा बेगम, तोसीफ हाशमी, तैमूर कलीम अंसारी। केसरी सिंहपुर से श्यामलाल, संदीप कुमार, राजपाल, गेजा सिंह, माडूराम और उनके साथी। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म दोस्ताना का गीत। स्वर हैं किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के गीत, आनंद बख्शी का संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोज़ी, परवीन, बिट्टू, साजदा, हिना, कौसर, जोगीवाला से प्रेम सहारण, मनी मोनिका और मनीष सहारण, बुचो कैंचियाँ, बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन, अभिजोत, गमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमन, तमन्ना, सायना, विष्णु ढूकिया और ईवा धारणिया। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छींपा, कपिल, ईशान छींपा और पूजा परिहार। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म त्रिशूल का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वरों में गीत खयाम का, गीत साहिर लुधियानवी का और संगीत खयाम का।

आया सावन झूम के। मोहम्मद रफ़ी और साथियों को सुनिए गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, पसंद आप सबकी। गांव बनवाला हनवंता पंजाब से विनोद, मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और उनके परिवार के सदस्य। गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। गांव कलाना हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव, किरसन, हनुमान, किड़ूराम, जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा। गांव नाईवाला हनुमानगढ़ से डॉक्टर गौरव कंडरिया, मनून कंडरिया, लड्डू और उनके साथी। दिल्ली से दिलीप चौहान,

कुरावली से राशिद हुसैन, नसीर, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी। मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर कमरून, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। लीजिए सुनी आपकी पसंद का ये नगमा।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक दूजे के लिए।

आइए इस फिल्म से लता मंगेशकर और अनूप जलोटा को सुने। गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, पसंद आप सबकी। श्री विजयनगर से हनुमान तिवाड़ी, मंजूबाला, दीक्षा तिवाड़ी, हुबिका पारीक, सालपुरा जिला बारां से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, बटिंडा से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित तनिया नारंग, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना अक्सा, नाजिया इब्राहिम, सद्दाम अदीब, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये नगमा।

अनूप शहर से गजानंद सारस्वत ताराचंद सोनू पवन साहिल मुरारीलाल शर्मा ममता मीनू अक्षय महावीर फूसाराम जितेंद्र मनीष राजेश कुमार हर्ष और उनके साथी किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास आशा देवी गिजज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीटा रजत भाटिया मयंक भाटिया गांव फरांसी से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी सौरभ डूडी पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद पराग टेलर तनुजा देवांगन लखवलीहेड से मास्टर भंवरलाल कृष्णा सौरभ विशाल राजपाला ममता नव्या लक्षिता मोहम्मद रफीक संगरिया से मुकनाराम महावीर लोहरा अलीकांड बाली से बसंत सिंह चन यशिका युवराज गांधी कुलदीप गांधी यहीं से रूप सिंह लखोत्रा करमजीत सरबजीत लखोत्रा रानी सोनू रजनी बीकानेर से रानी झांब बिट्टू झांब बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर संगीता साक्षी जयश्री महेत्रे अंजलि करवा बाला साहेब रामनिवास अग्रवाल महाराष्ट्र से संतोष काले तेजस काले लोकेश एस काले गाजीपुर से सुरेश जायसवाल उर्मिला दीपक स्वाति जायसवाल असम से हितेंद्र दास खोखरावाली से विनोद बरासा विशाल विकास रोशनी शगुन बरासा रतलाम से जगदीश धाकड़ रंजूबाई युवराज सिंह शिवांगी धाकड़ खंडवा से अब्दुल गफार अब्दुल हक जियाउल हक मोहम्मद उमर डावर राजेंद्र कटारे जलालाबाद से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा बागपत से संजय ढींगिया नमन अपार ढींगिया पाटन छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा ज्योति निधि वर्मा रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा राजूबाई माया शोभा राहुल ज्योति आयुल पायल प्रियांशु वर्मा ऋषि वर्मा मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी गुल गगनदीप आरजू और गुड्डू करनाल से विनोद लखनपाल फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा बिमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु सरवन हंसराज मनीराम रणजीत राम और उनके साथी चक 14 पीएसबी से कुलदीप सिंह राजेंद्र कौर संदीप सिंह और उनके साथी आप सभी ने पसंद किया है मोहम्मद रफ़ी का गाया अख्तर रोमानी का लिखा गीत फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने दो बदन फिल्म का गीत सुना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। फिल्म संगीत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत। गीत के बोल मजरू के हैं और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं मुकेश का गाया ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और फिल्म है हिमालय की गोद में।

फकीरा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत और संगीत रविंद्र चैन का था। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। जानवर लीजिए, इस फिल्म का गीत सुनिए, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीत के बोल हसरत के, संगीत शंकर जयकिशन का।

मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार सलील चौधरी। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने, आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने और फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे आवाज दी थी हेमलता ने। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। लीजिए योगेश का लिखा गीत सुनिए, संगीत सलील चौधरी का, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है रजनीगंधा।

लीजिए अनुपमा फिल्म का गीत सुनिए। गीत के बोल कैफी आजमी के, संगीत हेमंत कुमार का और आवाज़ लता मंगेशकर की।

नीरज का लिखा गीत अभी आपने सुना, जिसकी धुन एसडी बर्मन ने तैयार की थी, आवाज़ थी किशोर कुमार की, और इस गीत को हमने फिल्म शर्मीली से लिया था। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार मदन मोहन, और फिल्म है पूजा के फूल।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। 12:30 पर सुगम संगीत और 12:50 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इसमें चर्चा का विषय रहेगा हरे चारे के लिए लोबिया की खेती। दिन में 1 बजे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज इसमें चर्चा के विषय होंगे बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का उपयोग फायदेमंद या नुकसानदेह, स्क्रीन से लगाव छीन रहा बचपन, थायराइड कारण व निवारण और घर पर आनंद लें भेलपुरी का। दिन में 2 बजे अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस और 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा।

शाम 5 बजे युवा साथी सुन सकते हैं कार्यक्रम युववाणी। आज चर्चा के विषय होंगे, जाने राजस्थान के सांस्कृतिक महत्व को, महिला सशक्तिकरण, अध्यात्म का जीवन में महत्व, योगासन के फायदे और आज का इतिहास। साथ ही एक वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे, विषय रहेगा महिला सशक्तिकरण। वार्ताकार होंगी सानिया कुमारी। शाम 5:30 पर धीणेरी बातें कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6 बजे कार्यक्रम विवरण वह 6:05 पर सराय के प्रसारित की जाएगी। शाम 6:30 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 7 बजे किसान भाइयों के लिए प्रसारित किया जाएगा उनका अपना कार्यक्रम चौपाल। 7:45 पर सुन संगीत होगा। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले की जाएगी। रात्रि 9:15 पर सुगम संगीत होगा और रात्रि 10 बजे राजस्थान दर्शन कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये था कार्यक्रम विवरण।

अभी आपने कार्यक्रम विवरण सुना। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

साथियों नमस्कार, स्वीकार कीजिए सुमन शेखावत की ओर से कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम के जरिए हम आपसे मुखातिब हैं। साथियों जिंदगी में यूं तो हर चीज की जरूरत होती है, मगर एक ऐसे साथी की जरूरत शिद्दत से महसूस होती है जिसे दिल की हर छोटी से छोटी बात बगैर कुछ सोचे समझे कह दी जाए। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता।

शुदा, ये बेखुदी भी बड़ी खूबसूरत होती है। कोई एक चेहरा यूं ख्यालों में बसा होता है कि एहसास ही नहीं होता कि वो हमसे कितना दूर है और न जाने कहाँ है।

श्रोताओं, इस समय आप प्रोग्राम सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत, और इसे प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। श्रोताओं, जो शख्स हमारे दिल के करीब होता है, हम चाहते हैं कि वो अपना सुख दुख हमसे बांटे, क्योंकि प्रेम है क्या भावनाओं को साझा करने का, परवाह करने का ही दूसरा नाम ही तो है।

साथियों, कहा जाता है सच्चे प्रेम का कभी अंत नहीं होता। चाहे मोहब्बत करने वाले पास रहें या दूर, दिल से एक दूसरे के लिए दुआ ही निकलती है। ये बात और है कि इन दुआओं में कहीं गहरा दर्द भी छुपा होता है। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे, मैं तुझे

दिया खामोश है मगर किसी का दिल तो जलता है। चले आओ जहाँ तक रोशनी नजर आती है।

और ये मोहब्बत की रोशनी, ये नूर कभी ना ख़त्म होने वाली शय है।

आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए होते थे जमाने मेरे। सुमन को इजाजत दीजिए।

अभी आपने कार्यक्रम सुना कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत।

0: चित्रा सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इसमें जानकारी का विषय है हरे चारे के लिए लोबिया की खेती।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आए गेड़े गर्मी का मौसम आवेर आपन कटे न कटे हरे चारे की जी की किल्लत है बात देखनी पड़े। और पौष्टिक हरे चारे की बात करा तो जे लोबिया की खेती अपन करा तो बड़ी लाभदायक सिद्ध हो है और बड़ी पौष्टिक है। बिया तो देखो अफ्रीका मूल की फसल है, लेकिन भारत के संदर्भ में जे अपन देखा तो हरियाणा पंजाब दिल्ली पश्चिमी यूपी राजस्थान कर्नाटक केरल तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात आ सारी जगह पर बहुत सा किसान भाई है जिसका बहुत बड़े इलाके में उगाई करे। लोबिया एक इसी दलनी फसल है जगह के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक जिका है वह विद्यमान है। तो ये खेती आप अगर करना चाहवा तो वो जिको मौसम है जगह का माँ आप यहाँ माना भी 29 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तई तापमान रवे बैठे इंगी वृद्धि उत्पादन दोनों ही बढ़िया होगा। और इन फसल ने मैदानी बागा में अपना जायद और खरीफ दोनों मौसमों में सफलतापूर्वक उगा सका। ज़्यादा बरसात ज़्यादा जमाव इन खेती वास्ते उपयुक्त कोनी। लोबिया की खेती वास्ते चौकी जल निकास वाली दोमट या थोड़ी भारी माटी हुए जिकी मैं भरपूर रूप छू कार्बनिक पदार्थ हुए बा बड़ी आदर्श जिकी भूमि है बा मानी जावे। और ठंडे मौसम में थोड़ी रेतीली जिकी मिट्टी वाली भूमि है बा भी उपयुक्त है क्योंकि इनमें फसल जिकी है बा जल्दी पक के तैयार हो जाए। अम्लीय माटी में बढ़िया उग सके जिके को पीएच मान लगभग 5.5 से 6.5 हुए, लेकिन लवणीय और क्षारीय माटी का माँ इनकी पैदावार अपन बढ़िया मिल कौन सके तो बैठे किसान भाई बुआई ना करें। लोबिया की बुआई वास्ते चौकी अच्छी तरह जी को खेत तैयार हो जाए वो उपयुक्त है। इन वास्ते आप पहली जुताई जी की है वह कल्टीवेटर में कर लें और दूसरी जुताई हेरेशू आपने करनी चाहिए। हर जुताई के बाद में पाटो जरूर लगाना चाहिए। जे कटाई सख्त माटी हुए या थोड़ी जमाव वाली भूमि हुए बटे आप गहरी जुताई के बाद में 2-3 बारी हेरो चला देवा और फिर पाटो लगा के अरेंगी बिजांत जी को है वह कर सका। लोबिया की बुआई बिया तो देखो दो मौसम में आप कर सका, फरवरी मार्च में भी कर सका और अब आप जून जुलाई में भी कर सका। इनमें अपन ध्यान रखने वाली बात इतनी है भाई कतार से कतार की दूरी आप कम 40 से 60 सेंटीमीटर रखा और बूंटे से बूंटे की दूरी आप 10 से 15 सेंटीमीटर रखा। बिजाई जिकी आप करनी है बा 3 से 4 सेंटीमीटर गहरी करनी चाहिए। बिजाई आप दोनों तरीकों कर सका, छिंटवा तरीके में भी कर सका एर पोरा ड्रिल से भी कर सका। एक हेक्टर वास्ते सामान्य अपन 10 से 15 किलो बीज की जरूरत पड़े एर बीज की मात्रा बुआई की विधि पर निर्भर करें। बीज बीजन पहला आपने बीज को उपचार करना बहुत ही जरूरी है वो चाहे आप क्या कोई बीज गाला क्योंकि भूमिजन जी का रोग है बीजू आपने बीज ने जी को है वह छुटकारा मिल जाए और रोग कौन लगे। बुआई से पहला आप बीजा ने एमिसान 6 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज ने उपचारित करा। जे खेत में आप पहली बनिया लोबिया की खेती करन लाग रहे हैं तो बुआई से पहला बीजा ने आप राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करना चाहिए। बीम शूके उसी कह जी की वायुमंडलीय नाइट्रोजन है बिंग स्थिरीकरण करके और पौधे की जड़ तई जिको नाइट्रोजन है बिना उपलब्ध करा दिया। इनके अलावा 100 किलोग्राम बीज उपचारित करने वास्ते आप 1.5 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर की आप जरूरत पड़े। बिंग वास्ते आप गुड़ को घोल बना के एर बीज उपचार कर सका फिर छाया में सुखा के और फिर बुआई करा। इनकी किस्म जी की है बा आर का समृद्धि है जिके नापा IHR 716 भी कवा आर का

0: सुमन है, नरेंद्र लोबिया है। नरेंद्र लोबिया दो जेकिन आपा एनडीसीपी 13 भी कवा। पूसा कोमल है जेकिन आपा सिलेक्शन 1522 कवा। पूसा फाल्गुनी, पूसा संपदा, चारे वास्ते जिकी विशेष किस्म है बा है कोहिनूर, जिके ने आपा IGFRI 5450 के नाम से भी जाना। बिंग अलावा GFC 1234 UPC 287, इंग अलावा UPC 5286, ए जी की तीन किस्म है। ए चारे वास्ते बिल्कुल उपयुक्त है। पोषक तत्व को जे आपां प्रबंधन करा तो अच्छी पैदावार वास्ते आपां 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर छूँ। चौकी सडेडी जी की गोबर की खाद है बा भूमि में रला देनी चाहिए। बिंग अलावा 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 60 किलोग्राम ही पोटास प्रति हेक्टेयर की दर छूँ अपन ने भूमि ने देनी चाहिए। जल प्रबंधन को विशेष ध्यान रखा क्योंकि गर्मी की फसल वास्ते सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर फसल ने माटी और मौसम के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंतराल पर 5-6 बारी सिंचाई की जरूरत पड़े। फूल आने पर फली भरण की अवस्था में विशेष तौर से आपा ने नमी जी की है बिंगी कमी नहीं आन देनी चाहिए और बी समय के अंदर आपा ने पानी जी को है वो देना चाहिए। और जल भराऊँ जिको फसल है बिन नुकसान हुआ इन वास्ते आपा हल्की सिंचाई करा। फूल आने पहला सिंचाई करनो फलियां के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध हुआ और दूसरी सिंचाई आपा फलियां लगने के बाद में कर सका। खरपतवार तो हर फसल वास्ते नुकसानदायक है, खरपतवार को विशेष तौर से आपा उपचार करा। इन अंदर आपा लोबिया की जगह आपा फसल करा तो बिंगमा जिकी खरपतवार ज़्यादा आवे बा है एलुसिन इंडिका, अचीरा थेंस, प्रोकुम्बेंस, सिनोडोन डिक्टोलोन, अंग उपचार जिको है वो आपा ने विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ज़्यादा पैदावार लेने वास्ते आपा फसल ने 40 से 45 दिन खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। बी दरमियान खरपतवार ने ऊंचो ना आन दिया तो बी शू अपनी फसल के ऊपर नुकसान कम हो सी। जैसिड है, काला एफिड है, ए कीट रोग है जकांगू प्रबंधन आपने जरूरी है। आ दोनों वास्ते आपा डाई मिथेट 30 ताकत की 1-2 मिलीलीटर या मिथाइल डेमोटोन 25 ताकत 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के साथ घोल बना गए और आपा छिड़काव करा तो आ रोग से आपने छुटकारो मिल जीसी। चूर्णिल असिता है जिकिन है आपा पाउडरी मिल्ड्यू कवा, इन रोग के प्रबंधन को जिको इन रोग को जिको आक्रमण है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करे। सबसे पहला पत्तियां पर सफ़ेद चूरण का धब्बा बन जी सी, धीरे धीरे वो बढ़तो पूरी पत्ती की सतह ने ढक लेवे। इंगे रोकथाम वास्ते आपा सल्फेक्स की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 700 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सका। 2-3 छिड़काव आपा 7 से 10 दिनों के अंतराल पर कर देना चाहिए तो इन रोग को प्रभाव जी को है वो अपनी फसल पर ज़्यादा कौन रहेगा। इनके अलावा तना झुलसा रोग है, इन रोगों के वह के जड़ और तनों एक दूसरे में जुड़ जाए और बटे भूरा धब्बा बन जाए, तेजी वो फैल गए तने ने ढक ले वह जकेशू कोंपला जी की है वह सूखन लग जाए। इन रोग की रोकथाम वास्ते आपा पहली बात तो रोग रोधी जी की किस्म है बांगी बुआई करा। बुआई से पहला बीजा ने 2 या 3 ग्राम कैप्टान या फिर थीरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजा ने उपचारित करना बहुत ही आवश्यक है। रुक्षण रोग है तो यह बीज जनित रोग है, इनमें भी बीज को जिको उपचार है वो ही आपने लाभदायक रहेगा। स्वर्ण पित्त विषाणु रोग है, ओ भी जिको है विषाणु जनित रोग है और माऊ से फैले अंदर से वो रोग जिको है वो फैल जाए, इनमें सफ़ेद धब्बा बन जाए और रोग ग्रसित जी को पौधो है बिंगी वृद्धि जी की है बा रुक जाएगी। तो इंगो भी रोकथाम जी की है बिंगो करनो उपचार अपन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन तरीके से अपन लोबिया की चौकी फसल ले सका। अब हूँ चलूँ, राम राम सा, राम राम।
1: हरे चारे के लिए लोबिया की खेती कार्यक्रम।

खलिहान में अभी किसान भाइयों ने इस विषय पर ये जानकारी सुनी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और अन्य ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत 26,000 से अधिक किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 18,907 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के साथ योजना की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में राज्यों को पीएम जनमन योजना के वंचित और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों वाले क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सड़क संपर्क को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर क्रीड़ा भारती राजस्थान और आरएसी के जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नियमित योग एक स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रदेश में सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 4 जून से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 1,10,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा कार्रवाई वाहनों पर लगी ब्लैक फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट को लेकर हुई है। इसके अलावा अवैध हूटर, लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न और वाहनों की बनावट में अवैध फेर बदल करने वालों पर भी पुलिस पूरी सख्ती बरत रही है। अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र की सभी 208 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स को ईआरपी प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ ही ये बैंक राजस्थान का पहला ऐसा केंद्रीय सहकारी बैंक बन गया है जिसकी सभी चयनित समितियां डिजिटल प्रणाली से जुड़ गई हैं। केंद्र सरकार की कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत अजमेर और ब्यावर जिले की इन समितियों को ऑनलाइन किया गया है। इस नई डिजिटल प्रणाली से किसानों को फसल प्रबंधन, बीज और उर्वरक वितरण सहित अन्य वित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। भरतपुर में आज खेत बचाओ अभियान के तहत महिला किसान जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम में निदेशक विजय वीर सिंह ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना जरूरी है। उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने का आह्वान किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने जयपुर में रेल निकुंज पॉली क्लिनिक का उद्घाटन किया। जगतपुरा स्थित रेल निकुंज परिसर में बनाए गए इस पॉली क्लिनिक का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को एक ही स्थान पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहां मरीजों को एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद ओपीडी के साथ साथ डे केयर, फिजियोथेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डेंटल जैसी बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSSI ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य पदार्थों की रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल खाद्य योग्य और जंग रोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय किया है। खाद्य नियामक ने बताया कि कुछ खाद्य व्यवसायों को खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान

0: जंग लगे टूटे हुए चाकू या किसी अन्य प्रकार के अनुपयुक्त काटने के उपकरणों का उपयोग करते हुए पाया गया है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और संबंधित विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली मेरी प्यारी सखियों को किरण का नमस्कार। सखियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा के विषय रहेंगे बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम, फायदे और नुकसान, स्क्रीन से लगाव छीन रहा बचपन, थायराइड कारण और निवारण, और घर पर ही आनंद ले भेलपुरी का। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम, फायदे और नुकसान के बारे में। सखियों, आजकल सभी मोबाइल के प्रेमी हैं, फिर चाहे वह बच्चा है, बूढ़ा है या फिर जवान। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का प्रेम एक दोधारी तलवारें हैं। सीमित उपयोग करने पर यह उनके लिए एक वरदान साबित होता है जो उन्हें अपनों से जोड़ता है और आपातकालीन सुरक्षा भी प्रदान करता है, लेकिन इसकी ज़्यादा लत से मानसिक तनाव और शारीरिक समस्याएँ भी हो सकती है। सखियों, मोबाइल फ़ोन के जरिए वॉइस कॉल या वीडियो कॉल बुजुर्गों को दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से जोड़े रखते हैं, जिससे उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। और संकट के समय मोबाइल एक जीवन रक्षक के रूप में भी काम करता है, जिसे अचानक तबीयत खराब होने पर इसके जरिए एम्बुलेंस या अन्य किसी भी मदद से अस्पताल तक पहुंचा जा सकता है, या कोई घटना के समय पुलिस या परिवार को तुरंत सूचना भी दी जा सकती है। अनेकों ऐप्स के माध्यम से बुजुर्ग अपनी दवाइयों के अलार्म भी सेट कर सकते हैं और हेल्थ रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। सखियों, हाँ, सबसे ज़रूरी मनोरंजन का साधन भी मोबाइल फ़ोन ही है। फ़ोन से पुराने गाने, धार्मिक प्रवचन, भजन या समाचार आसानी से सुनकर मानसिक रूप से सक्रिय और तरोताज़ा रह सकते हैं बुजुर्ग लोग। सखियों, बातें और भी करेंगे, लीजिए सुन लेते हैं ये गीत।

सखियों, हम सब देख रहे हैं कि आजकल क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी को मोबाइल से लगाव है। जिसे देखो वही मोबाइल में खोया रहता है, लेकिन हद से ज़्यादा स्क्रीन देखना

भी हानिकारक है। बुढ़ापे में तो वैसे भी शरीर कमजोर होता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती है। ऐसे में घंटों तक मोबाइल में लगे रहने से शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती है, जिससे आलस्य, मोटापा और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती है। देर रात तक मोबाइल देखने से नींद की गुणवत्ता भी खराब होती है और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। अक्सर बुजुर्गों को इंटरनेट और सोशल मीडिया की समझ कम होने के कारण वे ऑनलाइन स्कैम या फर्जी खबरों के भी जल्दी शिकार हो जाते हैं। फ़ोन को लगातार झुककर देखने से गर्दन और पीठ में दर्द की समस्या भी हो सकती है। सखियों, बुढ़ापे में आंखें पहले से वीक होती है और ऊपर से मोबाइल देखना आंखों के लिए भी सही नहीं है। लीजिए सुन लेते हैं ये अगला गीत।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सखियों, मोबाइल और टीवी का अत्यधिक उपयोग बच्चों का बचपन तेजी से छीन रहा है। स्क्रीन की कृत्रिम चमक और त्वरित मनोरंजन बच्चों को वास्तविक दुनिया, शारीरिक खेलों और रचनात्मकता से दूर कर रहे हैं। स्क्रीन का अत्यधिक लगाव बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट है। स्क्रीन के कारण ही बच्चे बाहर खेलने की बजाय अंदर ही रहते हैं। घंटों एक ही जगह बैठे रहने से बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है, जिससे मोटापा और कम उम्र में ही आँखों की रोशनी कमज़ोर होने जैसी समस्याएँ आ रही है। सखियों, लगातार स्क्रीन देखने से बच्चों के मस्तिष्क का विकास भी प्रभावित होता है, जिससे बच्चे वास्तविक दुनिया में चिड़चिड़े, जिद्दी और सामाजिक रूप से अलग थलग होने लगे हैं। जो बच्चे स्क्रीन से ज़्यादा चिपके रहते हैं, उनमें बातचीत और भाषा सीखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे देर से बोलना शुरू करते हैं। सखियों, स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद के हार्मोन को भी बाधित करती है। साथ ही फ़ोन देखते हुए खाना खाने से बच्चे सही पोषण नहीं ले पाते। इसलिए जितना हो सके बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना जरूरी है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बाहरी खेल आवश्यक है। लीजिए सुनिए ये अगला गीत।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सखियों, स्क्रीन से लगाव बच्चों से उनका बचपन छीन रहा है। हमें बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने के लिए उनकी पसंदीदा चीज़ में दिलचस्पी जगानी होगी। इसके लिए हमें उनके साथ खेलना चाहिए। बच्चों को इंडोर या आउटडोर खेलों की ओर प्रेरित किया जाए। उन्हें हमें यह बताना होगा कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गतिविधि आधारित खेल ज़्यादा ज़रूरी है। सखियों, अगर बच्चा छोटा है तो हम स्वयं उसके साथ खेल सकते हैं। छुपन छुपाई, भाग दौड़ और इसके अलावा जैसे चित्र बनाना, उनमें रंग भरना या फिर खिलौनों से खेलना, ये सारे खेल ऐसे हैं जिन्हें बच्चे बड़े ही चाव से खेलते हैं और बच्चों को मज़ा भी खूब आता है ऐसे खेलों में। सखियों, यदि हम बच्चों को समय देंगे तो बच्चे ज़्यादा मोबाइल या टीवी नहीं देखेंगे। माता पिता जब बच्चों को समय नहीं दे पाते तभी तो बच्चे स्क्रीन के आदि हो रहे हैं। सखियों, अपना समय याद कीजिए, कितना खेलते थे हम लोग। ना ही हमें स्क्रीन से कोई लगाव था, ना ही गर्मी या

सर्दी की चिंता। घर से बाहर पेड़ों के नीचे सारा सारा दिन खेलती थी। वो बचपन कितना अच्छा था जो हम लोगों ने जिया था। सखियों, मैं तो यही कहूँगी, हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चों का स्क्रीन से लगाव अपने आप कम हो जाएगा। लीजिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सखियों, थायराइड होने का कोई एक मुख्य कारण नहीं होता, बल्कि यह खराब जीवन शैली, तनाव, हार्मोन असंतुलन, अनुवंशिकी, ऑटो इम्यून बीमारियाँ और शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। अधिक तनाव लेने से थायराइड हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर परिवार के किसी सदस्य को यह बीमारी है तो इसके होने का खतरा भी बढ़ जाता है। थायराइड ग्रंथि ऐसे हार्मोन बनाती है जो हमारे शरीर के कई चयापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है, जैसे कि हृदय दर, रक्तचाप, शरीर का तापमान, वजन आदि। थायराइड ग्रंथि हमारी गर्दन में गले के निचले हिस्से के पास स्थित होती है। थायराइड की समस्याएं कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि आयोडीन की कमी, ऑटोइम्यून बीमारियां जिनमें हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे थायराइड पर हमला करती है, जैसे कि ग्रेव्स रोग या हाशिमोटो रोग, सूजन जिनमें दर्द भी हो भी सकता है और नहीं भी, और गांठें। थायराइड ग्रंथि का बढ़ना, जिसे गोइटर भी कहते हैं, निगलने और सांस लेने में समस्या पैदा कर सकता है। ग्रेव्स रोग से आँखों, त्वचा और हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकती है। सखियों, अपने आहार में पर्याप्त आयोडीन का सेवन सुनिश्चित करके थायराइड संबंधी दिक्कतों को रोका जा सकता है। लीजिए सुनिए एक और गीत।

सखियों, घर पर बिल्कुल ठेले जैसी टेस्टी और कुरकुरी भेलपुरी बनाने के लिए एक बड़े बाउल में मुरमुरे, बारीक कटे प्याज, टमाटर, उबले आलू और हरी मिर्च मिलाएं। ऊपर से तीखी हरी चटनी, मीठी इमली की चटनी, चाट मसाला, नींबू का रस और ऊपर से भुनी मूंगफली और बारीक सेव डालकर तुरंत सर्व कर सकते हैं। सखियों, हमें भेलपुरी के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है? मुरमुरे 3 से 4 कप, इसे कुरकुरा करने के लिए थोड़ी देर सूखी कढ़ाई में भून लें। एक बारीक कटा प्याज, एक टमाटर और एक उबला हुआ आलू, 2 से 3 चम्मच भुनी हुई मूंगफली और आधा कप आलू भुजिया या बारीक सेव, 2 चम्मच हरी चटनी और 3 से 4 चम्मच खट्टी मीठी इमली की चटनी, आधा चम्मच चाट मसाला, स्वादानुसार काला नमक और लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नींबू का रस और थोड़े बारीक कटे धनिया के पत्ते। ये सारी सामग्री तैयार रखिए। तब तक हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत और फिर हम देखते हैं कि भेलपुरी बनाते कैसे हैं।

सखियों, भेलपुरी मुंबई का एक मशहूर स्ट्रीट फूड स्नैक है जिसे मसालों से बनाया जाता है। जब कुछ हल्का खाने का मन हो तो इसे हम बना सकते हैं। भेलपुरी सबसे पहले मुरमुरों को छलनी से छान ले ताकि उन मौजूद धूल या कचरा उसमें निकल जाए। अगर वे शीले हैं तो 2 मिनट के लिए सूखा भून लें। फिर एक बड़े बाउल में मुरमुरे डालें। अब इसमें कटे हुए प्याज, टमाटर और उबले आलू डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें हरी चटनी, इमली की चटनी, काला नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाल लें। अंत में भुनी हुई मूंगफली, बारीक सेव, नींबू का रस और हरा धनिया डालें। सभी चीज़ों को हाथों या चम्मच की मदद से जल्दी से मिलाएं और तुरंत परोसें। मुरमुरे बहुत जल्दी नमी सोख लेते हैं। इसे ज़्यादा देर रखें नहीं, तुरंत खाएं। लीजिए, सुनिए एक और गीत।

सखियों, खाना हर घर में बनता है, लेकिन हर घर के खाने का टेस्ट अलग होता है। कहते हैं खाना बनाने वाले का भाव खाने में झलकता है। मन से बनाए गए खाने में एक अलग ही टेस्ट होता है। आजकल की इस भागदौड़ भरी और बिजी लाइफ में हम खाना बनाने के बेसिक टिप्स भूल गए हैं, लेकिन परेशान मत होइए, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे आसान कुकिंग टिप्स लेकर आई हूँ जिससे खाना भी टेस्टी बनेगा और हमारा समय भी बचेगा। सखियों, पनीर बनाने के बाद जो दूध का पानी बचे उससे आटा गूंथें, रोटी और पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। लौकी का हलवा बनाते समय अगर लौकी में मलाई डाल के भूने तो हलवा अधिक स्वादिष्ट बनेगा। दही बड़े बनाते समय पिसी हुई दाल में थोड़ा दही मिला के फेंटे, दही बड़े अधिक स्वादिष्ट और मुलायम बनेंगे। अंकुरित दालों को ज़्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए नींबू का रस मिलाकर फ्रिज में रखें। सखियों, कचौड़ियाँ बनाते समय मैदे में थोड़ा सा दही डाल के गूँथें, कचौड़ियाँ सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी। दही जमाते समय दूध में थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा डाल दें, दही दो से तीन दिनों तक ताज़ा रहेगा। मूंग दाल के चीले बनाते समय दाल में 2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिलाने से चीले कुरकुरे बनेंगे। नींबू का रस निचोड़ने के बाद छिलका फेंके नहीं, छिलके को किसी साफ पन्नी में डालते जाएं, साथ में नमक भी डालें, बीच बीच में धूप में रख दें, कुछ दिनों में नींबू का अचार तैयार हो जाएगा। दूध या खीर जल जाए तो उसमें 2 से 3 पान के पत्ते डाल के गर्म करें, जलने की खुशबू चली जाएगी। लीजिए सखियों, अब इजाज़त दीजिए किरण को। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर

0: 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है।

0: समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना आएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय

0: एलएनए पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मुकेश और आशा भोसले को अभी आपने सुना, फिल्म थी एक बार मुस्कुरा दो। गीत के बोल इंदिवर के थे और धुन तैयार की थी ओपी नैयर ने। लीजिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, संगीत मदन मोहन का है, आवाज़ लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है एक कली मुस्काई।

जब जब फूल खिले। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थीं मोहम्मद रफ़ी और नंदा की, गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और इस गीत की धुन तैयार की थी कल्याण जी, आनंद जी ने। फिल्म संगीत इस समय प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। गहरा दाग, लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, गीत के बोल हसरत के हैं और संगीत शंकर जयकिशन का।

और संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन ने। लीजिए एक बार फिर हसरत का ही लिखा गीत सुनिए, जिसकी धुन एसटी बर्मन ने तैयार की है, आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी।

दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में उर्दू सर्विस हमारे दिल्ली के

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए।

वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ आला सतह की मीटिंगें कर रही हैं। वो वाइवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान एक समझौते पर अमल शुरू हो गया है और आइंदा बातचीत भी जारी रहेगी। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तजारती समझौते पर अगले माह की 15 तारीख से अमल शुरू होगा। मरकज माली साल 2026-27 में 26,000 किलोमीटर तवील देही सड़कों की तामीर करेगा, जिन पर 18,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आएगी। और हॉकी में भारत ने उरुग्वे को 3-2 से हराया, जिसके बाद वो न्यूजीलैंड में जारी FIH खवातीन के नेशंस कप में सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ बहुत सी आला सतह की मीटिंगें कर रहे हैं। ये मीटिंगें वो भारत फ्रांस इकतसादी और सनती तावुन को गहरा करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर कर रहे हैं। वजीर आजम फ्रांस के सदर इमानुएल मैखों के साथ वाइवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। ये समिट टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की यूरोप की सबसे बड़ी तकरीब है, जिसमें उम्मीद है कि जनाब मोदी भारत के इख्तिरा से मुतालिक तरक्की पाते हुए इको निज़ाम और टेक्नोलॉजी की पेशरफ को उजागर करेंगे। वाइवा टेक समिट में भारत का सबसे बड़ा पवेलियन है, जो भारत और यूरोप के दरमियान इख्तिरा से मुतालिक इको निज़ाम की शराकत दारी के बड़े इम्कान की एक अलामत है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा का 5 रोज़ा दौरा शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के अपने दौरे के पहले दिन वो बैतूल पहुंची, जहां उन्होंने रूहानी बेदारी के जरिए कबायली तबकों को बाख्तियार बनाने के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम का अहतमाम प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरिया विश्वविद्यालय ने किया था। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद कबायली अफराद को बाख्तियार बनाना है, और ये न सिर्फ खत्ते के लिए बल्कि पूरे मुल्क और माशरे के लिए अहमियत का हामिल है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि भारत को तरक्की याफ्ता बनाने का मकसद हासिल करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि माशरे के सभी तबके को तरक्की के सफ़र में पीछे न छोड़ा जाए। मरकज माली साल 2026-27 के दौरान देही इलाकों में 26,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें तामीर करेगा। ये देही तरक्की की वजारत के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और देही इलाकों में मुतालिका सरगर्मियों के लिए 18,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुख्तस किए गए हैं। आला सतह की एक मीटिंग में देही इलाकों में सड़कों से मुतालिक प्रोजेक्टों की पेशरफ का जायज़ा लिया गया। मीटिंग की सदारत देही तरक्की के महकमे के सेक्रेटरी रोहित कंसल ने की। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई रियासतों के आला एहलकारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। कौमी तहकीकती एजेंसी NIA ने अमृतसर में घर को कुर्क किया है, जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा के कारिंदे से है। ये शख्स सरहद पार मुनशात और दहशतगर्दी के नेटवर्क के एक केस में मुलविस है। ये नेटवर्क पाकिस्तान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, थाईलैंड, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर मुल्कों में फैला हुआ है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये कारिंदा अंकश कपूर इस नेटवर्क का भारत में एक बुनियादी कारिंदा है। NIA की तफ्तीश से इंकशाफ हुआ कि अंकुश के रबते दुबई में मुकीम एक मुलजिम से हैं, जिसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से है। अंकुश को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, जिसकी शनाख्त एक साजिश तैयार करने वाले एक बहुत ही अहम कारिंदे के तौर पर की गई, जिसका ताल्लुक नशीले मादों की स्मगलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और तकसीम से था। तहकीकात से यह भी मालूम हुआ है कि इन सारे कामों से होने वाली आमदनी को भारत में दहशतगर्दाना सरगर्मियों की माली मदद के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में 2027 की हज जायजा मीटिंग की सदारत की। जायजा मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगु करते हुए जनाब रिजिजू ने 2026 के हज को भारत की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हज करार दिया। वजीर मौसूफ ने बताया कि 2026 के हज के लिए सऊदी अरब की हज और उम्रे की वजारत ने भारत को 2 अवार्ड अता किए। उन्होंने बताया कि सरकार 2027 के हज के लिए जल्दी नई हज पॉलिसी का ऐलान करेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अहम मुफाहमतनामा लागू हो गया है, जिसके तहत लगभग 4 माह से जारी लड़ाई फौरी तौर पर ख़त्म हो गई है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के

0: दरमियान एक जामे अमन समझौते की खातिर 60 दिन तक गुफ्तगु जारी रहने की भी गुंजाइश रखी गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान स्विट्जरलैंड में तयशुदा मीटिंग से पहले एक 14 निकाती समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक वसीले से दस्तखत किए गए। समझौते के तहत फौरी तौर पर लड़ाई बंद कर दी जाएगी। दोनों मुल्क दुश्मनाना कार्रवाइयों से गुरेज करेंगे। इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तवील अरसे से चले आ रहे तनाज़े को हल करने के लिए एक खाका तय करेंगे। मुफाहमत नामे के तहत अमरीका ईरान के गिरदो नवाह में बहरी नाकाबंदी ख़त्म करना शुरू कर देगा और अबनाए हुरमुस के रास्ते बहरी जहाज़ों की आमद रफ्त को 30 दिन के अंदर अंदर मामूल पर लाने के लिए काम करेगा। भारत और बरतानिया ने ऐलान किया है कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदा सेटा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। तिजारत और सनत की वजारत ने बताया कि समाजी तहफ़ से मुतालिक ये माहदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCCB कहा जाता है, इस पर भी उसी दिन से अमल शुरू हो जाएगा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती माहदे से भारत और बरतानिया के दरमियान दो तरफा तिजारत और सरमाकारी को काबिल जिक्र तकवीत मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस माहदे से भारतीय किसानों, वर्करों, MSMEs, स्टार्टअप्स इदारों और इख्तराकारों के लिए रोजगार के बहुत से मौके पैदा होंगे और विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत की शक्ल देने में मानी खेज तावन मिलेगा। अमरीका के वजीर दिफा पेट एजिसिट ने यूरोपीय इत्यादी मुल्कों पर जोर दिया है कि वो न सिर्फ अपने बर आजम के दिफा की और ज़्यादा जिम्मेदारी लें बल्कि नेटो को एक बहुत ज़्यादा मजबूत फौजी इत्तेहाद में बदलने के लिए भी काम करें। उन्होंने ये बात नेटो के वज़राए दिफा की मीटिंग से खिताब करते हुए कही। अमरीका के वजीर दिफा ने कहा कि यूरोपीय मुल्कों को यूरोप का रिवायती एतबार से दिफा करने के लिए पेश होने के अलावा नेटो के फौजी इत्तेहाद और उसकी सलाहियतों की मुस्तकम करने के लिए भी काम करना चाहिए। जनूबी कोरिया ने इस साल की दूसरी शिशमाई से LNG और LPG की दरामद पर से महसूल खत्म कर देने का ऐलान किया है। महसूल खत्म कर देने का मकसद तवानाई की लागत में कमी लाना और इफरात जर की रोकथाम करना है। इक्तिसादी और माली उमूर की वजारत ने बताया कि 1 जुलाई से दरामद शुदा LNG और LPG पर महसूलात बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे। महसूलात ख़त्म कर देने के नतीजे में इनकी ट्रांसपोर्ट और उनके इस्तेमाल पर होने वाले अखराजात में भी कमी आएगी। अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में 2027 की हज जायजा मीटिंग की सदारत की। जायजा मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगु करते हुए जनाब किरण रिजिजू ने 2026 के हज को भारत की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हज करार दिया। वजीर मौसूफ ने बताया कि 2026 के हज के लिए सऊदी अरब की हज और उम्रे की वजारत ने भारत को 2 अवार्ड्स अता किए। उन्होंने बताया कि सरकार 2027 के हज के लिए जल्दी एक नई हज पॉलिसी का ऐलान करेगी। न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH हॉकी कप में पूल ए में भारत ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल की और वो पूल ए में सरफहरिस्त आ गया है। शुरू में भारत पर एक गोल किया गया था, जिसके बाद दीपिका ने 2 और दीपिका सोरेंग ने उरुग्वे पर 1 गोल किया। भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है और अब भारत का सामना चिले और कोरिया के दरमियान होने वाले मैच की फाता टीम के साथ होगा। फुटबॉल में कोलंबिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर अपनी मुहिम का आगाज किया। इस दौरान इंग्लैंड ने आर्लिंगटन के मकाम पर क्रोशिया को 4-2 से हराकर अपनी मुहिम का आगाज किया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ आला सतह की कई मीटिंगें कर रहे हैं। वो वाइवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान एक समझौते पर अमल शुरू हो गया है और आइंदा बातचीत भी जारी रहेगी। और हॉकी में भारत ने उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद वो न्यूजीलैंड में जारी FIH खवातीन के नेशंस कप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और डी

अमीर गरीब फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, नगमा निगार थी आनंद बख्शी, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। और ये अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में इंतकाम फिल्म का नगमा, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, और इस नगमे की तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम अंदाज़े नज़र।
1: सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। इस प्रोग्राम के तहत हम अदबी, समाजी और सियासी मौजूआत के साथ साथ अखलाकी मौजूआत पर माहिरीन के ख्यालात से आपको आगाह कराते हैं। मौजूदा दौर बहुत पुर आशोब है। दुनिया के हर हिस्से में तशद्दुद और बेरारवी के साथ साथ कत्ल गारतगरी आम हो रही है। ऐसे में सहाफ़ियों, अदीबों और शायरों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और समाजी जिम्मेदारियां कैसी होनी चाहिए, इन्हीं सवालों के साथ आज इस मुबाहिसे का मौजू है, क्या अदब ज़रूरी है। जी हाँ सामईन, अदब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता बल्कि अदब हमारी ज़िंदगी पे असर अंदाज होता है। अदब की कई शक्लें हैं, समाज की शक्ल में हमारे सामने आता है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ हमारे जो मरासिम हैं उसकी शक्ल में अदब नज़र आता है। हम फिल्में देखते हैं, सीरियल देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, उसमें अदब नज़र आता है। हम शायरी सुनते हैं, शायरी करते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, कहानियाँ बुनते हैं, हर जगह हमें अदब नज़र आता है। और इन अदब का हमारे ऊपर यानी समाज के ऊपर क्या असर पड़ता है, समाज अदब से क्या अखज़ करता है और अदब समाज से क्या लेता है, इन्हीं सवालों के जवाब को जानने के लिए आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू है, क्या अदब ज़रूरी है। तो लीजिए समाअत कीजिए इस मौजू पर ये कारामद गुफ्तगु। हमारे शुरका हैं जनाब क़ुरबान अली, जनाब मासूम मुरादाबादी, प्रोफेसर अनवर पाशा और निज़ामत के फ़रायज़ अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर शफी अयूब। तो लीजिए समाअत कीजिए।
2: हिंदी के महान साहित्यकार कथाकार थे राम वृक्ष बेनीपुरी। एक बहुत ही मशहूर निबंध है आपका, ललित निबंध गेहूं और गुलाब। उर्दू के मशहूर अफसाना नगार, कलम नगार और फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास का मशहूर अफसाना है गेहूं और गुलाब। उसी नाम से उनका अफसानवी मजमुआ भी है गेहूं और गुलाब। इस मौजू पे बहुत बहस होती रही है कि ज़िंदगी के लिए गेहूं ज़रूरी है या गुलाब ज़रूरी है। इस बहस से ये सवाल भी निकला और ये सवाल इसी में पोशीदा है कि हमारी ज़िंदगी के लिए अदब की ज़रूरत है भी या नहीं। अदब, जिसे हिंदी में साहित्य और अंग्रेज़ी में लिटरेचर कहते हैं, उसे हमें क्या मिलता है, अदब क्यों ज़रूरी। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में इल्म अदब की दुनिया से, सहाफ़त की दुनिया से तीन अहम शख्सियात मौजूद हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से साबिक चेयरपर्सन सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, मुल्क के मुमताज़ नक्काद और दानिश्वर प्रोफेसर अनवर पाशा, सहाफ़त की दुनिया में गुज़िश्ता 35-40 वर्षों से अपनी मनफरद शनाख्त कायम करने वाले, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यकसां तौर पे मकबूल जनाब क़ुरबान अली, उर्दू में सहाफ़त के मौजू पे कई अहम किताबों के मुसन्निफ़, मशहूर कलम निगार, कई अहम उर्दू अखबार के मुदीर जनाब मासूम मुरादाबादी के साथ मैं शफी अयूब आज गुफ्तगू करते हैं अदब क्यों ज़रूरी। सबसे पहले शुरू करते हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में उस्ताद जो अदब पढ़ाते हैं, प्रोफेसर अनवर पाशा साहब से, कि ये जो बुनियादी सवाल है कि क्या अदब ज़रूरी है भी या नहीं।
3: जी शुक्रिया। पहले तो मैं ये वाजे कर दूं कि गेहूं और गुलाब जिस कंटेक्स्ट में ये कहानी लिखी गई थी और जो आपने ख्वाजा अहमद अब्बास का जिक्र किया और आपने राम वृक्ष बेनीपुरी का जिक्र किया, उनके हवाले आपने दिए, उनके मजमून का हवाला आपने दिया, वो कंटेक्स्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है
2: जी।
3: ये वो तनाजुर है जब अदब और ज़िंदगी के हवाले से मबाहिस से उस तरह से चल रहे थे। तो जाहिर है कि उस वक्त अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी की बहस थी, उस कंटेक्स्ट में वो कहानी भी लिखी गई थी और ये राम वृक्ष बेनीपुरी का जो मजमून है जिसका जिक्र आपने किया वो लिखा गया था। लेकिन ये अदब ज़रूरी क्यों
2: जी,
3: ये उससे कहीं बड़ा सवाल है
2: जी।
3: अदब और

0: जिंदगी। यहाँ यह है कि अदब एज सच, अदब का जो वजूद है और ख़ास तौर से आज के तनाजुर में, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि आज जो टेक्नोलॉजी का दौर है,
1: जी
0: साइंस के फ़रोग का जिस तरह का दौर है, आईटी में जिस तरह की तब्दीलियाँ, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारी, उसमें जिस तरह से रोज़ बरोज़ इनकलाबात जिस तरह से आ रहे हैं, उस तनाजुर में ये महसूस किया जा रहा है कि क्या अदब इस तरह के अहद में, जब ज़िंदगी बिल्कुल मशीनी बन के रह गई है, जब साइंस और टेक्नोलॉजी जिसकी तरफ हर आदमी दौड़ रहा है, रेस है उसमें हर आदमी दौड़ रहा है, आदमी मशीन बना हुआ है, और अदब एक तरह से साइडलाइन होता जा रहा है। साहित्य लिटरेचर
1: जी
0: अब सबसे आखिरी तरजीह में से है, अदब अब किसी की पहली तरजीह नहीं है। अगर आप दानिशगाहों को देखें
1: जी
0: तो दानिशगाहों में जो डिसिप्लिन्स, जो उलूम, जो
1: जी
0: मजामीन वहाँ ऑफर किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उनमें आप देखेंगे कि अदब सबसे पिछले पायदान पर एक तरह से है, सबसे बिल्कुल लिस्ट प्रायोरिटीज में अदब है, सबसे कम तरीन जो तरजीहात में से है अदब। जिसको कहीं कुछ नहीं मिला वो
1: जी
0: अदब की तरफ आ गया, लिटरेचर की तरफ आ गया, लैंग्वेज की तरफ आ गया। तो इस तनाजुर में अगर आप देखें तो अदब

0: कि क्या अदब इस तरह के अहद में, जब जिंदगी बिल्कुल मशीनी बन के रह गई है, जब साइंस और टेक्नोलॉजी जिसकी तरफ हर आदमी दौड़ रहा है, एक रेस है उसमें हर आदमी दौड़ रहा है, आदमी मशीन बना हुआ है, और अदब एक तरह से साइडलाइन होता जा रहा है। साहित्य लिटरेचर
1: जी
0: अब सबसे आखिरी तरजीह में से है, अदब अब किसी की पहली तरजीह नहीं है। अगर आप दानिशगाहों को देखें
1: जी
0: तो दानिशगाहों में जो डिसिप्लिन्स, जो उलूम, जो
1: जी
0: मजामीन वहाँ ऑफर किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उनमें आप देखेंगे कि अदब सबसे पिछले पायदान पे एक तरह से है, सबसे बिल्कुल लिस्ट प्रायोरिटीज में अदब है, सबसे कम तरीन जो तरजीहात में से है अदब। जिसको कहीं कुछ नहीं मिला वो
1: जी
0: अदब की तरफ आ गया, लिटरेचर की तरफ आ गया, लैंग्वेज की तरफ आ गया। तो इस तनाजुर में अगर आप देखें तो अदब लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, या अदब का पढ़ना पढ़ाना, अदब तख्लीक करना गोया एक तरह से कार्य लाहासिल है, बेकार है। इससे जो संजीदा लोग हैं, संजीदा जहन रखने वाले, माशरे को, इंसानी ज़िंदगी और कायनात को संजीदगी से देखने वाले जो अफराद हैं, वो उनके लिए बहुत ही एक तशवीश का एक सबब है। क्योंकि अदब हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि अदब अगर ना हो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, न बने, अदब क्या है, माशरे का तर्जुमान होता है,
1: जी
0: फ़र्द का भी तर्जुमान है, माशरे का भी तर्जुमान
1: जी
0: है। तो उस तरह से अगर आप देखें कि ज़िंदगी में अदब की हमारी अहमियत क्या है, यानी अदब हम क्यों पढ़ते हैं, अदब हम क्यों लिखते हैं, आप ये सवाल कर सकते हैं
1: जी
0: कि एक फ़र्द अपने अफकार, अपने तसव्वुरात, अपने ख्यालात का इजहार करता है। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि अदब तो एक फ़र्द का इजहार है, एक फ़र्द वाहिद का इजहार है, एक फ़नकार का इजहार है, लेकिन वो इस पहलू को भूल जाते हैं कि वो फ़नकार इसी माशरे का हिस्सा होता है,
1: जी
0: और उस माशरे के वो तमाम जो लवाजमात हैं उससे उसका एक बड़ा गहरा रिश्ता होता है, तो उन सब के साथ वो जी रहा होता है। तो वो जब इजहार करता है अपना, और वो ज़ाती इजहार ही क्यों ना हो, अपनी ज़ात के हवाले से ही वो इजहार क्यों नहीं कर रहा हो, वो इजहार एक तरह से इज्तमाही इजहार का मजहर भी बन जाता है, क्योंकि वो उसी माशरे में जी रहा होता है। तो जब हम अदब की बात करते हैं, अदब के वजूद की बात करते हैं, अदब की अहमियत की बात करते हैं, अदब क्यों की बात करते हैं, तो जो जहन में सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर हम अदब जब पढ़ते हैं
1: जी
0: तो हम क्या हासिल करते हैं, एक कारी के तौर पर, एक सामे के तौर पर, और एक तख्लीकार के तौर पर भी। तख्लीकार जब लिखता है तो उसके सामने भी कुछ मकासद होते हैं,
1: जी
0: वो किसी मकसद को पेश नज़र रख करके अदब तख्लीक करता है, बेमकसद अदब नहीं हो सकता, ऐसी कोई लकीर दरमियान में नहीं खींची जा सकती कि ये अदब मकसदी अदब है और ये जो है गैर मकसदी अदब है, बगैर मकसद के अदब की तख्लीक मुमकिन ही नहीं है। तो हर अदीब एक मकसद के तहत अदब तख्लीक करता है, कारी भी जब उसे पढ़ता है तो उसका भी एक मकसद होता है।
1: जी
0: हर तरह के अदब को हर कारी नहीं पढ़ सकता,
1: जी
0: हर कारी का अपना अलग ज़ौक होता है, बाज़ कारी ऐसे होते हैं जिनकी दिलचस्पी सिर्फ शायरी में है, अदब के सिर्फ एक पहलू शायरी में, बाज़ लोगों की दिलचस्पी सिर्फ नावल पढ़ने में, बाज़ लोगों की दिलचस्पी सिर्फ अफसाना पढ़ने में है। तो जाहिर है कि उसी तरह से और भी दीगर असनाफ की तरफ है। तो ये जो ज़ौक़ है लोगों
1: जी
0: का, ये ज़ौक़ क्या है, इस ज़ौक़ के तकाज़े क्या हैं, क्या वो अदब तख्लीक करने का ज़ौक़
1: जी
0: हो या अदब पढ़ने का ज़ौक़ हो, ये हमारी जो फ़िक्र है, हमारा जो जो जज्बा है, हमारे जो एहसास हैं, या हमारी जो जमालियाती एक कहने के एक ज़रूरत है, जमालियात इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अंसुर है,
1: जी
0: बहुत अहम अंसुर है। हम एस्थेटिक्स को, जमालियात को अलग रख करके इंसान का तस्वुर नहीं कर सकते, इंसान जमालियात के बगैर जी नहीं सकता है, उसकी अपनी जो पसंद और नापसंद है और जो खूबसूरती है दुनिया की, कायनात की, ज़िंदगी की, गिर्दोपेश की, वो उसकी तरफ फितरी तौर पर मायल होता है,
1: जी
0: और उस खूबसूरती में इजाफा भी करता है अपनी फिक्र से, अपने एहसास से, अपने जज्बात से। तो अदब को अगर आप पढ़ते हैं तो जाहिर है कि अदब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है और अदब की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है कि अदब हमारी फिक्र को सैकल करता है,
1: जी
0: हमारे जमाल को सैकल करता है, उसको संवारता है, और एक बेहतर इंसान, एक बेहतर हैसियत वाला इंसान बनने में अदब मदद करता है।
1: कुरबान अली साहब, आप तो सहाफ़ी होने के साथ साथ एक मुसन्निफ भी हैं, कई अहम किताबें आपने लिखी हैं। प्रोफेसर पाशा जो बात कह रहे हैं कि आज हमारी तरजीहात बदल गई हैं शायद, और अदब जो है वो बहुत पिछले पायदान पे है, क्या आप भी इतफाक़ रखते हैं? दानिशगाहों के हवाले से आपने इजहार ख्याल किया, आपकी क्या राय है?
2: मैं अनवर पाशा साहब से थोड़ा सा इत्तफाक नहीं करूंगा
1: जी
2: कि चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, लेकिन हम इसी दौर में ये भी देख रहे हैं कि अदब की सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही है,
1: जी
2: चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो सहाफ़त हो,
1: जी
2: चाहे वो पार्लियामेंट की डिबेट्स हो,
1: जी
2: चाहे वो किसी हेड ऑफ स्टेट का एड्रेस हो, उसमें भी हम ये देखते हैं आमतौर पे कि शेर व शायरी और अदब का सहारा
1: लिया
2: लिया
1: जाता
2: जाता है।
1: जी
2: और अभी गुज़िश्ता कुछ बरसों में हमने ये देखा कि उर्दू के बारे में ये ख्याल किया जा रहा था कि उर्दू ख़त्म हो चुकी है
1: जी
2: और उसकी कोई कलीदी हैसियत नहीं रह गई है।

0: लेकिन इसी शहर में जब रेख्ता के प्रोग्राम हुए तो लाखों वो लोग जो उर्दू से, उर्दू स्क्रिप्ट से
1: जी
0: नावाकिफ थे,
1: जी
0: वो उसमें आए, क्योंकि और उनमें नौजवान खास करके नॉन मुस्लिम, तो उनको ये लगा कि उनकी इजहार मोहब्बत का इससे बेहतर मीडियम शायद कोई और नहीं
1: नहीं हो
0: हो
1: सकता।
0: सकता। अभी एक हाल में फिल्म आई, उसमें फिराक गोरखपुरी का एक शेर है कि
1: जी
0: शाम थी धुआं
1: तो हुस्न
0: धुआं
1: भी था उदास
0: उदास
1: उदास
0: उदास कुछ। अब ये देखिए कि उस फिल्म में इस्तेमाल किया गया है इसको, और कई बार रिपीट किया गया
1: जी जी
0: इस शेर को, और वो बहुत कामयाब फिल्म मानी जा रही है अभी। तो अदब का जो सिलसिला है वो लगता ये है कि हम एक जिस तरह की दुनिया में रह रहे हैं वो बहुत
1: जी
0: ही एक मसनूई सी दुनिया है, लेकिन चूंकि अदब इंसान की रूहानी ज़रूरत है
1: जी
0: तो इसलिए वो कभी शायद ख़त्म हो नहीं पाएगा। उसका तरीका बदल सकता है,
1: जी
0: क्योंकि आप देखें पब्लिकेशन किसी भी ज़बान का लें आप, उसमें अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू और तो जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें खूब शायरी हो रही है, खूब अदब छापा जा रहा है, खूब बिक रहा है, और वो लोगों की रोजी रोटी का बायस भी बन रहा
1: जी
0: है। और आप यहाँ हिंदुस्तान को छोड़ करके पूरी दुनिया में देखिए, ज़्यादातर लोग जो हैं उनको कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी हिस्से में अदब की ज़रूरत महसूस होती है।
1: फरमान साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि शायद अदब जो है वो कालीब बदल रहा हो। आपने सियासतदानों का जिक्र किया। मासूम साहब, मुझे याद है कि सियासतदानों के हवाले से हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में ये शेर पढ़ा था कि कभी शाख व सब्ज़ा वो बर्क पर, कभी गुंचा वो गुल बुखार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ मेरा हक़ है फसले बहार पर। ये शेर मुरादाबाद से आया था, जिगर मुरादाबादी का शेर है और आपका शहर भी मुरादाबाद है, तो इसी हवाले से हम अदब के इस बदलते तनाजुर में मासूम मुरादाबादी की राय भी जान लें।
2: देखिए, जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है और उसकी ज़रूरत का ताल्लुक़ है, इसके दो पहलू हैं।
1: जी
2: एक पहलू तो यह है कि आज हम जिस सारिफ समाज में ज़िंदा हैं
1: जी
2: उसमें हर चीज़ को एक प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाता है
1: जी
2: कि जो कुछ तख्लीक हो रहा है वो एक प्रोडक्ट के तौर पर हमारे सामने आता है कि ये सारफियत है और
1: जी
2: ये एक ऐसा समाज है जिसमें सिर्फ पैसा कमाना जो है ज़िंदगी का बुनियादी मकसद है, जिसका
1: जी
2: ज़िक्र अभी अनवर पाशा साहब ने भी
1: जी
2: किया। लेकिन अदब जहाँ से तख्लीक होता है, जहाँ से इसके सोते फूटते हैं,
1: जी
2: वो कौन लोग हैं जो अदब तख्लीक करते हैं? वो समाज के वो लोग होते हैं जो बहुत हसास होते हैं,
1: जी
2: जिनकी निगाह बड़ी बारीक भी होती है और जो अपनी सोच का दायरा बहुत वसी रखते हैं। वो महज इसको इस चीज़ से नहीं नापते कि उन्हें कोई फन पारा या शह पारा तख्लीक करने का मुआवजा क्या मिल रहा है,
1: जी
2: ख़ासतौर से हम जिस ज़बान में काम करते हैं।
1: उससे बेनियाज होकर वो अदब तख्लीक कर रहे हैं।
2: तो आप ये देखिए कि चाहे हमारा क्लासिकल लिटरेचर हो,
1: जी
2: चाहे और दूसरा पिछले ज़माने का, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि आज जो अदब तख्लीक हो रहा है, ज़्यादातर हमारे जो लिखने वाले हैं वो अदब तख्लीक करने के बजाय ख़ुद को तख्लीक करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पॉपुलर लिटरेचर है हमारा,
1: जी
2: उसकी मकबूलियत ने जो रिकॉर्ड कायम किए, चाहे वो जासूसी दुनिया हो,
1: जी हाँ
2: चाहे वो दूसरी चीज़ें, लेकिन उसके मुकाबले में आज जब आप देखिए, आपको रिसाला उठा के देखिए, उसमें कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदब के दायरे में आती हैं,
1: जी
2: कोई तख्लीकियत उसमें नहीं होती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखिए ज़िंदगी में जो कशाकश है, जो
1: जी
2: पेचीदगी है और जो परेशानियाँ और हंगामा आराइयाँ हैं, इंसान सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़िंदगी कशाकश से परेशान है
1: जी
2: और वो ये सोचता है कि इससे कैसे पनाह हासिल की जा सके। एक शख्स है आयज़ुल क़रनी, अरबी का एक अदीब
1: जी
2: है,
1: जी
2: उसने एक किताब लिखी ला ताहज़नू, ये कुरान का एक
1: जी
2: वो
1: हाँ
2: है, उसका उर्दू तर्जुमा होता है गम ना करें, वो किताब उर्दू में छपी।
1: जी
2: मैं समझता हूँ कि वो बेस्ट सेलिंग किताब है इस वक्त, गम ना करें, वो एक
1: जी
2: गतरीफ़ शहबाज नदवी ने उसका तर्जुमा किया।
1: जी
2: वो ये बताता है अदब के हवालों से, शेर के हवालों से और ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ रवैयों के हवाले से कि इंसान जो सबसे ज़्यादा गम में मुब्तला है, उसने तरदीद की है कि इंसान को गम नहीं करना चाहिए, और मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए हैं, और ऐसी गज़ब की उसकी सोच है कि मैंने जब वो किताब पढ़ी
1: जी
2: तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि इंसान की ज़िंदगी में रंज और गम जो है ये बिल्कुल फजूल चीज़ है, क्योंकि उसके कंट्रोल में कोई चीज़ है नहीं।
1: जी
2: जो कुछ होता है वो कुदरत की तरफ से होता है और कुदरत ही चीज़ों को क्रिएट करती है, वही उनको सॉल्व करती है,
1: वो एक तरह इलाज भी कर रहा है, मुआलिज है आपका
2: इलाज भी
1: अदीब
2: कर
1: जो है
2: रहा
1: वो
2: है
1: मुआलिज है, अदब के जरिए
2: और
1: इलाज भी
2: अदब
1: कर
2: के
1: रहा है।
2: हवालों से ही कर रहा
1: बिल्कुल
2: है।
1: जी हाँ
2: तो ये इसका एक पहलू है। तो हमें इस बारे में ये सोचना चाहिए कि अदब ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी
1: ज़रूरी
2: है,
1: है। गोया
2: इस
1: कि
2: पर गौर
1: अब तक
2: करना
1: अपने
2: चाहिए।
1: प्रोफेसर अनवर पाशा से बात की, कुर्बान अली साहब की बात सुनी, मासूम मुरादाबादी साहब की बात सुनी, ऑल इंडिया रेडियो के इस बहस में कि अदब क्यों ज़रूरी,

0: इतनी बात तो वाज़ह है कि अदब ज़रूरी है, और अगर नई नस्ल में किसी भी वजह से अदब से दूरी हो रही है, या अदब नहीं पढ़ना चाहते हैं, या अदब कम पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई सर्वे हमारे पास हो, तो यकीनी तौर पे हमें रागिब करने की भी ज़रूरत है कि नई नस्ल भी अदब पढ़े। अदब का एक कमाल ये भी है कि वो हमारी तहजीब करता है, नज़र दिल को वसअत देता है, हमारे रवैयों को मोतदिल बनाता है, हमारी रूह और फिक्र को बालिदगी अता करता है। गोया अदब का मुताला हमें आदमी से इंसान और इंसान से और बेहतर इंसान बनाता है। और इसीलिए अदब को तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेसर पाशा खुद एक बहुत ही मुमताज़ यूनिवर्सिटी में ज़बान व अदब के उस्ताद हैं, यूनिवर्सिटी के निसाब में न सिर्फ शायरी, नावल, अफसाने और गैर अफसाने में जो अदब है वो भी शामिल है, खाके हैं, उनसे हमें वसअत मिलती है। पाशा साहब, अदब पढ़ाते हुए जब तालिब इल्मों से जो रुझान सामने आते हैं, उनके जो तासुरात सामने आते हैं, उसकी क्या नवीयत होती है?
1: इससे कबल के आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक गलतफहमी का इजाला कर दूं। कुरबान भाई ने एक बात कही कि शायद मैंने अदब को दरकिनार कर दिया और अदब की अहमियत से इनकार किया। मैंने अपनी गुफ्तगू में अदब की अहमियत से इनकार नहीं किया,
0: जी
1: मैंने इस हकीकत का इजहार किया है कि अदब आज की जो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, साइंस का जो दौर है,
0: जी
1: तो उसकी रीच जो है वो महदूद होती जा रही है,
0: जी
1: उसकी तरफ लोगों की जो रग़बत है वो महदूद होती जा रही है,
0: जी
1: कम होती जा रही है। अदब अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप निकाल नहीं सकते हो
0: जी
1: इंसान की ज़िंदगी से। इंसान की तख्लीक में,
0: जी
1: तख्लीक सिर्फ ये नहीं कि हम पैदा हो जाते हैं, इंसान बनने में आप देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है, जब वो
0: जी
1: 3-4 साल का होता है तो उसकी अम्मा या उसकी दादी या उसकी नानी, पहले जो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी,
0: जी
1: वो उनको नज़में सुनाती थी। जो आज भी स्कूलों में जब जात बच्चों को डालते हैं प्ले स्कूल में या दूसरे, तो वहाँ राइम्स उनको पढ़ने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले छोटी छोटी कहानियाँ, जो हमारे यहाँ पुरानी जो किस्से कहानियाँ होती थी, हकायतें होती थी, चाहे पंचतंत्र के
0: जी
1: तर्जुमे उससे हुए हों, हितोपदेश के तर्जुमे वगैरह हुए, उन सब पे उन्हीं पर बेस्ड अलग अलग कहानियाँ बनानी लोगों ने अलग अलग अपने तरीके से, वो पढ़ने को दिया
0: जी
1: जाता है।
0: हाँ
1: तो गोया अदब तो इंसानी जहन की तख्लीक में, उसकी तश्कील में, बच्चों की शख्सियत की तामीर में एक बड़ा रोल प्ले करता है। अदब का रोल बहुत कलीदी है हमारी ज़िंदगी में, उसकी अहमियत को कम नहीं किया जा सकता।
0: जी
1: मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अदब को लोगों ने बिल्कुल एक तरह से लास्ट तरजीहात में डाल दिया
0: जी
1: है,
0: हाँ
1: उसके पढ़ने का जो अमल, पहले सिलसिला जो था वो धीरे धीरे
0: तो
1: महदूद
0: क्या हमें
1: हुआ है।
0: तरगीब देना चाहिए नई नस्लों की कि
1: अब आप
0: वो
1: देखें कि
0: उसको
1: प्रेमचंद,
0: जी
1: प्रेमचंद को देखें आप, प्रेमचंद की जो कहानियां हैं
0: जी
1: उनको उठा के देखें, और भी मिसालें जा सकती हैं, इकबाल की मिसालें आप देख लें, सर सैयद के ज़माने के जो हमारे दूसरे लिखने वाले थे उनको देखें, तरक्की पसंदी के ज़माने के अदीबों की तहरीरों को देखें, उनकी एक बड़ी रीच थी।
0: जी
1: प्रेमचंद पहला ऐसा फनकार थे कि जिनके कारीन का हल्का बहुत वसी तर था।
0: जी
1: उसकी वजह यह थी कि प्रेमचंद जिस दौर में उन्होंने लिखना शुरू किया, वो दौर हिंदुस्तान में तालीम की तौसी का एक ज़माना था। उससे कबल तालीम बहुत महदूद थी, नए नए स्कूल कायम हो रहे थे, ज़ाहिर 1857 की जो तहरीक चली थी उसके उसके नतीजे में बहुत सारी इस्लाही तहरीकें चली और स्कूल कायम हुए, बहुत सारे मकतब कायम हुए, तालीमी इदारे कायम हुए। तो एक बड़ा हलका पैदा हुआ तालीम हासिल करने वालों का, और तालीम हासिल करने वालों का हलका जब पैदा हुआ तो अदब के पढ़ने वालों का भी हलका उसी से बना। और प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी वो गाँव की कहानियाँ लिखी, गाँव से ज़ाहिर है
0: जी
1: कि जोड़ा ज़िंदगी को अदब को, और उसमें जो कहानियां हैं अदब उनकी, बहुत से मसाइल होते हैं हमारे, हमने उन मसाइल को कभी अपनी ज़िंदगी में उस तरह से संजीदगी से उसको देखने का हमने कोई रवैया कायम नहीं किया था।
0: जी
1: हमने मसलन दलित मसाइल को आप देख लें, दही ज़िंदगी की जो माशरत है, वहाँ की जो लोगों की ज़िंदगी की तकलीफ़ और मुसीबतें हैं, उनको प्रेमचंद जिस तरह से पेश किया, उसकी वजह से हम सेंसिटाइज हुए,
0: जी
1: कारी उस
0: बिल्कुल
1: ज़माने का सेंसिटाइज हुआ, यानी उसके अंदर हसासियत उसकी बढ़ी कि दलित ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं, हम तो अपनी दुनिया मगन थे। प्रेमचंद ने हमारी तवज्जो उस तरफ की कि हम उनकी ज़िंदगी को भी देखें, इन मसाइल की तरफ भी तवज्जो दें। तो अदब का दायरा, अदब मैं तो कहता हूँ
0: जी
1: कि अदब जो है वो जितने भी उलूम हैं उन सब की माँ है अदब। लिटरेचर इज द मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। लिटरेचर को आप सिर्फ लिटरेचर तक महदूद करके मत देखिए,
0: जी
1: बल्कि उसका इम्पैक्ट साइंस पे भी है, उसका इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पे भी है। आपने फिल्म की बात की, फिल्म के अदब ही तो है, ये जो हमारे सीरियल्स हैं वो सब अदब ही हैं, ड्रामे क्या हैं वो सब अदब ही हैं, बगैर अदब के इनकी तख्लीक
0: जी
1: या इनकी इनका तसव्वुर नहीं कर सकते आप। तो अदब की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जो ग्राफ गिर रहा है, अदब की अहमियत का ग्राफ जिस तरह से गिर रहा है, पार्लियामेंट में एक शेर पढ़ देना अलग चीज़ है,
0: जी
1: लेकिन अदब को बचा के रखना, अदब के तख्लीकी सफ़र को और इर्तिका की तरफ ले जाना, ये संजीदा लोगों की उनके लिए तश्वीश का सबब है ये।
0: मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपका इलाज क्या है, अगर अदब के तहीं लोगों के रुझान कम हुए हैं या उधर दिलचस्पी कम हुई है, तो कोई एक इलाज भी आप ज़रा इस पे कि कैसे उनको रागिब किया जाए।

0: देखिए लिखने वाले लिख
1: नई
0: रहे हैं आज
1: नस्ल को।
0: भी,
1: जी,
0: और बहुत अहम
1: इस पर हम
0: सही
1: कुर्बान
0: थे,
1: साहब से भी
0: बहुत
1: बात
0: अहम अदबी
1: करेंगे।
0: सही पे लिखे जा रहे हैं
1: जी
0: आज भी। नॉवेल जाहिर है कि चाहे वो मगरिब से या हमारे यहाँ के अपने अदीबों के जरिए लिखे गए जो
1: जी
0: नॉवेल हैं, अरुंधति जैसे जो और दूसरे लोग जो लिख रहे हैं, ये सब लोग लिख रहे हैं
1: जी
0: अपनी जगह
1: हाँ
0: पर। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ कि उनके कारीन का हल्का
1: जी हाँ
0: क्या बढ़ रहा है या सिमट रहा है इन जनरल।
1: ये एक सवाल
0: मेरा
1: है,
0: ख्याल
1: एक
0: ये है,
1: बड़ा सवाल है।
0: उसके लिए आपने कहा ना कैसे इसको
1: जी
0: कायम किया जाए,
1: जी
0: बढ़ाया जाए। अदब की जानिब से जो एक तरह से लोगों के अंदर बेरुखी है या
1: जी
0: बेतवज्जुही है, उसकी वजह जो ये जो ज़माना है मसरूफियत का,
1: जी
0: मशीनी जो दौर है वो भी, और आज इंटरटेनमेंट के बहुत सारे वसीले हैं,
1: बस
0: आज इल्म हासिल करने के बहुत से वसीले हैं, इसलिए वो उनकी तरफ भी लोग रागिब हो रहे हैं।
1: जी
0: और अदब के लिए कम से कम वक्त है, आज मोबाइल है आपके पास
1: जी हाँ
0: और दिगर तमाम लैपटॉप है, दुनिया आपके सामने है, अपनी अपनी तरजीह के मुताबिक आप उस तरह की चीज़ों को उससे देख लेते हैं और पढ़
1: जी
0: लेते हैं।
1: जी
0: अदब पढ़ने का जाहिर है क्या प्रेमचंद का दौर लौट के नहीं आ
1: जी
0: सकता,
1: हाँ
0: तहरीरी अदब को पढ़ने की तरफ लोग अब फिल्में देख लेते हैं, लोग अब ड्रामे देख लेते हैं, और सब कुछ अवेलेबल है आपके हाथ में,
1: जी
0: सब कुछ
1: हाँ
0: मौजूद है। तो वो सिलसिला तो
1: पूरा
0: है,
1: तनाजुर ये
0: अदब
1: बदला
0: है
1: है।
0: अपनी जगह पे,
1: जी
0: अदब की शक्लें बदली
1: जी
0: हुई हैं,
1: शक्लें
0: यकीन
1: बदल
0: इसमें दो राय नहीं।
1: जी
0: मैं बिल्कुल सत फीसद इत्तफाक करता हूँ कुरान साहब से कि अदब की बदली हुई शक्लें हैं टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में भी,
1: जी
0: वो एक उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदब, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि अदब इंसान को बेहतर इंसान बनने में मदद करता
1: मदद
0: है,
1: बिल्कुल
0: उसकी फिक्र को सैकल करता है,
1: बिल्कुल
0: उसकी हसासियत को वो और सैकल करता है, पॉलिश करता है।
1: जी
0: एक बेहतर इंसान वो है जो हिस्सियत जिसके अंदर हो, एक जो हिस्सियत से बिल्कुल मुबर्रा इंसान अगर है तो मैं उसको इंसान नहीं मानता।
1: बिल्कुल
0: अगर वो किसी को दुख में देखकर उसको तकलीफ़ नहीं होती है, माशरे में बेहंगमी को देख के अगर उसको फिक्र नहीं होती है,
1: जी
0: जो कजरवी है माशरे की हमारी ज़िंदगी की उसको देख के अगर उसको फिक्र नहीं होती है, तो मैं समझता हूँ वो इंसान नहीं है। एक सेंसिटिव इंसान के लिए एक बेहतर सेंसिटिविटी उसके अंदर और प्रमोट हो, इसके लिए अदब बहुत ज़रूरी है। अदब की तख्लीक भी ज़रूरी है, अदब का मुताला भी ज़रूरी है। मैं एक चीज़ अक्सर कहता हूँ जब जाता हूँ कहीं, तो ये बात मैं कहता हूँ कि
1: जी
0: आप साइंस को उसकी अहमियत को से इनकार नहीं कर सकते,
1: जी
0: साइंस बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन साइंस इंसान तख्लीक नहीं कर सकती है,
1: बेशक
0: टेक्नोलॉजी इंसान तख्लीक नहीं कर सकती। आप रोबोट बना सकते
1: जी
0: हैं लेकिन आप इंसान को इंसान नहीं बना सकते बगैर अदब के। अदब वो काम करता है एक बहुत ही, जिसे कह लें कि एक गैर महज़ब
1: जी
0: इंसान
1: हाँ
0: को अगर अदब पढ़ने की लत लग जाए तो वो, मुझे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो एक बेहतर महज़ब इंसान बन सकता है। अदब में ये सिफत है, साइंस में ये सिफत नहीं है, ये अदब का मरतबा साइंस से बालातर मैं
1: बालातर
0: समझता
1: है।
0: हूँ।
1: एक अहम बात की तरफ इशारा प्रोफेसर पाशा ने किया। कुरबान साहब, वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा, हम अपनी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। जल्दी से एक रिमार्क आपकी तरफ से इस हवाले से।
2: नहीं, जो अनवर पाशा साहब ने कहा उससे इत्तफाक करता हूँ, वो
1: जी
2: बहुत बुनियादी बातें उन्होंने कही हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए
1: जी
2: कि इस
1: हाँ
2: वक्त हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं,
1: जी
2: और उसमें
1: बिल्कुल
2: भी अब ये बड़ा जो लोग हैं उनके लिए उनके रोज़गार का मसला पैदा हो गया है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायरी भी कर रही है
1: जी
2: और अदब भी तख्लीक कर रही है, लेकिन अब कैसा होगा वो और उसको आने वाली नस्लें किस तरह से लेंगी
1: जी
2: ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अदब की अहमियत अपनी जगह सादिक है, वो रहने वाली है।
1: ये इस पर एतबार है। और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, अदब के हवाले से इस पर बहस हो रही है इस वक्त कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदब को फ़रोग देने का काम करेगा या अदब पे रुकावट आएगी, ये आने वाला वक्त शायद बताएगा। मासूम साहब, क्या राय है आपकी?
3: देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक से तो बहुत सारे खदशात हैं।
1: जी
3: इसके मुसबत पहलुओं पर लोगों की कम तवज्जो है और उसके मनफी पहलुओं पर ज़्यादा
1: ज़्यादा
3: है
1: है
3: कि क्या तबाही मचने वाली है माशरे के अंदर। एक बात अनवर पाशा साहब ने बड़ी अच्छी कही कि स्कूल में बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती थी। मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ।
1: जी
3: मेरे घर में उर्दू के बच्चों के रसाइल भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। मेरा एक पोता है 3.5-4 साल का,
1: जी
3: और वो एक उर्दू का रिसाला उठा के लाता है और अपनी दादी से यानी मेरी बीवी से कहता है कि दादी कहानी सुनाओ,
1: जी
3: और वो दादी उसको कहानी सुनाती है, और वो 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे इतनी तवज्जो से उस कहानी को सुनता है।
1: जी हाँ
3: तो इंसान की जो सरिश्त है, यानी अभी वो 3.5-4 साल का बच्चा
1: जी हाँ
3: अभी
1: जी
3: स्कूल
1: हाँ
3: भी नहीं जाना
1: जी
3: शुरू
1: हाँ
3: किया है, लेकिन वो कहानियों से अल्फाज भी सीख रहा है।
1: बिल्कुल, उसकी तरफ प्रोफेसर पाशा ने इशारा किया था कि
3: जी
1: बच्चे
3: जी
1: कान में कहानी। जी हाँ
3: तो
1: बिल्कुल
3: अदब इंसान की कितनी बुनियादी ज़रूरत है,
1: ज़रूरत
3: वो
1: है।
3: इंसान को मुकम्मल बनाने में, जिसे अल्लामा इकबाल ने इंसान कामिल कहा है,
1: जी।
3: वो अदब ही बनाता है। अदब के अंदर फ़लसफ़ा, मंतिक और तमाम किस्म के जो उलूम हैं, चाहे कदीम उलूम हो चाहे जदीद उलूम हो,
1: जी
3: और जो साइंस की जैसे बात की जा रही है, साइंस का भी इसमें एक रोल है।

0: आज की ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल है,
1: जी
0: लेकिन अदब के बगैर कोई भी ज़िंदगी का मैदान मुकम्मल नहीं होता। अदब हमारी बुनियादी ज़रूरत है,
1: बिल्कुल
0: हमारे शऊर को बेदार करने में, हमारी हिस को बेदार करने में और हमें एक मुकम्मल इंसान बनाने में अदब एक कलीदी किरदार अदा करता है।
1: बिल्कुल
0: इसलिए अदब की अहमियत से, अफादियत से आप किसी भी तौर इनकार नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
2: एक पहलू अदब का जो जो
1: जी
2: आपने कहा कि कैसे उसका मुस्तकबिल कैसा हो,
1: जी
2: कैसे उसको बचा के हम रख सकते
1: जी
2: हैं
1: हाँ
2: या कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं
1: जी
2: बदलते,
1: हाँ
2: आप ज़माने पर, ज़माने की तब्दीली पर आप कोई रोक नहीं लगा
1: जी
2: सकते।
1: हाँ
2: तब्दीली का अपना
1: बिल्कुल
2: निज़ाम है, वो होती रहेगी तब्दीली, चेंजेस आती रहेंगी। ये साइंस टेक्नोलॉजी, ये सारी, जाहिर है आज से 100 साल पहले का तनाजुर देखिए, मंजरनामा आज
1: जी
2: का देखिए, फ़र्क नज़र आएगा। और ये कुदरत का निज़ाम है, लेकिन उसी निज़ाम के साथ हमें अपने सर्वाइवल के लिए भी गुंजाइशें पैदा करनी है,
1: जी हाँ
2: चाहे वो इंसान की ज़िंदगी के तौर पर बहैसियत इंसान हम उसकी फिक्र
1: जी
2: करें या बहैसियत इल्म, बहैसियत अदब, एक डिसिप्लिन के तौर पर। आज लोग उसके साथ अपने आप को हमाहंग कर रहे हैं,
1: जी
2: नई टेक्नोलॉजी के साथ भी लोग अपने आप को जोड़ रहे हैं,
1: जी
2: जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ। सही रखे, आज आप देखें प्रिंटेड फॉर्म में अदब जो है अब कम है इस वक्त, ज़्यादातर डिजिटल फॉर्म में
1: जी
2: आपके
1: हाँ
2: सामने है।
1: बिल्कुल
2: गज़ल हमारी मुकम्मल हुई, फ़ौरन हमने डाल दिया उसे फेसबुक पे, फ़ौरन हमने उसको व्हाट्सएप पे डाल दिया, फ़ौरन हमने ट्विटर पे उसको डाल दिया, तो उसकी रीच बढ़ रही है, उस तरह से
1: बल्कि
2: बढ़ रही है। तो
1: मैं एक बात कतः कलाम कहता हूँ, डिजिटल का एक बड़ा फायदा यह है, आपकी कोई चीज़ छपती है कहीं, उस पर आपको रेस्पॉन्स नहीं पता चलता, लेकिन आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर जी
0: अपनी कोई
1: दूसरे
0: चीज़ डालते हैं,
1: सोशल
2: फॉरन
1: मीडिया के
2: रिस्पॉन्स।
1: जरिए
2: अभी
1: से
2: मैंने
1: आपको मालूम
2: एक
1: होता रहता
2: पोस्ट
1: है।
2: कल डाली थी
1: जी
2: तो तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों ने उस पर कमेंट्स की।
1: जी हाँ
2: और ये कमेंट सिर्फ आपके हिंदुस्तान के, अपने मुल्क के, अपने इलाके के नहीं है,
1: जी हाँ
2: वो कोई कमेंट अमेरिका से कर रहा है, कोई
1: बिल्कुल
2: इंग्लैंड से कर रहा है, कोई फ्रांस से कर रहा है, कोई जर्मनी से कर रहा है, कोई अरब मुल्क से कर रहा है,
1: जी
2: यानी उसकी रीच बढ़ी है। तो हमें इस पे संजीदगी से सोचना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ
1: जी
2: हम कैसे खुद को ज़्यादा हम आहंग करें और उसका फ़ायदा उठाएं और अपने अदब की रफ्तार को और ज़्यादा।
0: जैसा कुरान भाई ने रेख्ता का भी जिक्र किया,
2: जी
0: रेख्ता से
2: वो
0: कितना
2: भी एक शक्ल
0: इस्तेमाल
2: है,
1: लोग कर
2: बहुत
1: रहे हैं
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बिल्कुल पूरी दुनिया में।
2: नॉन उर्दू
1: जी
2: हल्का,
1: और
2: जी नॉन
1: आपको
2: उर्दू हल्का,
1: पाकिस्तान में
2: हाँ
1: कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया कि उर्दू की सबसे बड़ी वेबसाइट हिंदुस्तान में है, हमारे पास उर्दू की सबसे बड़ी वेबसाइट। बिल्कुल अदब क्यों ज़रूरी, इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ाती तौर पे मुझे शफी अयूब को खुशी इस बात की है कि हमारे जो आज के माहरीन हैं वो बिल्कुल मायूस नहीं है इस हवाले से, और उनकी ये मुस्बत राय है कि बहरहाल अदब की ज़रूरत है। अदब की ज़रूरत कल भी थी, अदब की ज़रूरत आज भी है, और अदब की ज़रूरत कल भी रहेगी। अदब अपनी शक्लें बदल सकता है, नावल या शायरी, अफसाने या खाके या सफ़रनामे किताबी शक्ल में छपते थे। किताबें कम छपें या ज़्यादा छपें, हम डिजिटल फॉर्म में पढ़ें, लेकिन बहरहाल अदब की ज़रूरत है। हमारे साथ स्टूडियो में अदब क्यों ज़रूरी के मौजू पे बात करने के लिए प्रोफेसर अनवर पाशा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, साबिक चेयरपर्सन सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जनाबे कुरबान अली साहब, मुल्क के जाने माने सहाफ़ी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यकसाम मकबूलियत रखने वाले शख्सियत, जनाबे मासूम मुरादाबादी, न सिर्फ़ एक अच्छे सहाफ़ी और अखबार के मुदीर बल्कि बहुत अहम किताबों के सहाफ़त के मौजू पर, तो ख़ासकर बहुत अहम किताबों के मुसन्निफ़, और तीनों हजरात की ज़ाती तजर्बात की बुनियाद पे भी, अपने मुताले की बुनियाद पे भी ये राय है कि अदब हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। मासूम साहब ने भी इस तरफ इशारा किया, कुरबान साहब ने भी इशारा किया, और प्रोफेसर अनवर पाशा ने भी जोर दे के इस बात की तरफ इशारा किया कि इंसानी ज़िंदगी के लिए अदब ज़रूरी है, लिटरेचर ज़रूरी है, उसके फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम अदब का मुताला करते हैं तो हम एक अच्छे इंसान बनकर अपने समाज की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। आप तीनों स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छी गुफ्तगू की, उम्मीद है हमारे सामईन को भी ये गुफ्तगू पसंद आएगी, और जो लोग अभी तक अदब से ज़रा दूरी बनाए हुए थे वो भी अदब की तरफ रागिब होंगे, अदब पढ़ेंगे, किताबें खरीदेंगे, ख़ुसूसी तौर पे उर्दू अदब की तरफ रागिब होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया
3: सामीन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाज़े नज़र, मौजू था क्या अदब ज़रूरी है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 के लोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशात जारी हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी नगमे। फिल्मी मौसीकी का आगाज़ कर रहे हैं ग़ुलामी फिल्म के नगमे से, लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। नगमा निगार गुलजार, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
4: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम संदेश

0: नंदन वंदन अभिनंदन। मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो ना केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तरवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है। आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है, क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
0: जी।
1: वहाँ से भी एक एक एक वो है, ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं। और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्र रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए हालांकि हम फौजी परिवार से हैं लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए, तो ये बातचीत तो हुई थी। लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है, जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज़ ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुँच सकती है, इसीलिए

0: वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना।
1: वाह
0: अच्छा ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने, कहते हैं ना, अपना प्यार कैसे बरसाया?
1: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं. तो काफ़ी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का. और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ. इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफ़ी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देख के कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया. और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ, तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक ऑफिसर बन गया.
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग आप तरीक अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
1: देखो, जाना तो काफ़ी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन, कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता. तो काफ़ी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में. हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है. तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं. वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो, फौज ज्वाइन करो.
0: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए स्कूल में काफ़ी शैतानियां क्या करते थे?
1: हाँ यस, मेरा एक बड़ा भाई है, तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ, और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे. मैं काफ़ी शरारी था. मेरे मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है, तो काफ़ी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए. कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफ़ी लोकप्रिय था. मेरे अच्छे दोस्त हैं, और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं. जो जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है.
0: बरकरार है। अच्छा ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए? क्योंकि आर्मी का तो काम ही यही आर्म फोर्सेस का, कि आपसे आप में से एक ऑफिसर बनाना है। लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है, तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार। तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
1: निश्चितानियों का दौर तो एनडीए में भी चला. शुरू शुरू में जब एनडीए पहुंचे, तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है. हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन. तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है, और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए. एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो. लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए, टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज़ करना. वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोर्समेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाडन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं.
0: वाह क्या बात है। तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
1: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी गया. देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की एकेडमी है. वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में. मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया. और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी.

0: इमेजिन मेरा मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में हमने बहुत अच्छा काम किया, और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया और आगे मेरा मेरा सफ़र 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बन के पीछे मुड़कर देखा तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूँ शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहाँ ना होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोस्टमेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोस्टमेट्स हैं, आईएमए में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है जो आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसिस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
0: आपने आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया।
1: मैं आज बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: दो दिन तीन दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा,
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे, तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद एक दो बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूँ, बट देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
1: ले जा ले, ग्रे लगा ले।
0: 5 महीने का टर्म होता है जून टू नवंबर, बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा
1: हमेशा आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है,
0: मदद करती है।
1: आप
0: मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की हैं, शी इज़ वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज़ गॉट टू डू विद माई मदर, क्योंकि वो हमेशा, मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएँ होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
1: जी कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है, तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, यहाँ मैं प्ले करना चाहूँगी।
0: तो माँ के, जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई,
1: जी जी जी,
0: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है, एंड हाँ। वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
1: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
0: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे, एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं, जो फाइटर पायलट बचे थे उनके
1: जी,
0: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोस्टमेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है, और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव कर्नल तनवर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ, ये कहूँगी मैं, सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। खासतौर पर जब एक बच्चा इंडिया जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्ज़ाम दिया मैंने एनडीए का, और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का जो सफ़र है, सफ़र नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पॉस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर। और कहीं ना कहीं आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज़ ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज़ द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूँगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो हैं लहू के बह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए, कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूँ मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था, और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन, और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती। खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीज़ें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ अंधाधुंध

0: भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमने कुछ दिमाग लगाया और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती। और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे उससे मेरे को ज़िंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
1: वाह क्या बात है। अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक ज़रूर पहुँचाया जाए और आगे का कारवां आप ही की ज़ुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने में कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ

0: पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स, कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए, यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई ऐसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 97 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून, दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोस्टमेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोस्टमेट मनोज पांडे। तो कई कोस्टमेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी। और आप उनके साथ कॉलेज में थे, आप अगर इंडिया को कॉलेज माने, तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही, कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता, हालांकि देश के लिए, देश के काम में चला गया, लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोस्टमेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया। और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई। हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है, उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर लेता है, उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूँ, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं, और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
0: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये एक व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है। हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना, कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है?
1: बहुत बहुत महत्वपूर्ण। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी।

चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी है, करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं, वो क्या क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता? पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये भय, डर, खौफ काफ़ी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूँ, चाहे जो भी हूँ, उस कमांड को सक्सेस करना है मैं। और अगर सक्सेस नहीं हुआ, तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो चाहे मेरी जान जाए, लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूँगा। और ये ऑफ कोर्स जैसे

0: सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूँ चाहे जो भी हूँ, उस कमांड को सक्सेस करना है मैं, और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूँगा। और ये ऑफकोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
1: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
0: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस हैं, एस्प्री डी कोर है भारतीय सेना का, जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
1: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज़ होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे उसमें काफ़ी फ़र्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूँ, कॉरपोरेट में जैसी कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
0: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा हमेशा, लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीज़ों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहाँ पे ब्रिगेडियर राणा है उदाहरण वॉर्स, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशक्त हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से, और उन्हीं के नाम ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की हैं। आपके मिशंस के बारे में बात की, आपके अपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल, अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है। एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी से। तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, एक घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए? बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो। और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माई वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
0: सो स्वीट।
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अफसर था। वो शी वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
0: अच्छा।
1: एंड तो

0: वहां से सिलसिला शुरू हुआ। एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरी मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
1: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किल आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, माय वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी। तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइफ्स ऑल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ। हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में। पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
1: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, उन तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी कारगर साबित होती हैं,
0: बिल्कुल
1: नित्य प्रति
0: बिल्कुल
1: कार्य करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है। और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
0: विदाउट एनी कंप्लेंट्स। वो इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
1: कोई कैसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
0: बहुत याद आता है, ऑफकोर्स माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज ऑल्सो प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड।
1: क्या बात है।
0: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए हैं मेरे को, अभी तक मेरी मेरी आंखों के सामने वो नजराना आ
1: क्या
0: जाता
1: बात
0: है।
1: यानी कि वो पल जिस
0: वो
1: वक्त
0: पल जिसमें
1: सूत्र
0: उन्होंने
1: में
0: डांस
1: बंधे
0: किया
1: और
0: है,
1: उनका नृत्य कहीं ना
0: उनका
1: कहीं
0: बहुत
1: आपको
0: अच्छा।
1: लुभा गया। वाह क्या बात है। कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया है, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें।

0: और हम भी हरदम हरपल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। एनडीए में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ। मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं। मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है, वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ। मेरा बेटा अभी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं ना कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है
0: जी।
1: मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना

0: 1951 में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था, तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूँगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती थे, जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
1: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं
0: आज की युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा
1: जी।
0: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहाँ पे हर चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूँ कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आएं और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
1: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देश प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी ज़िंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुँचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम ज़रूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तनवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: आचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
2: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5 बजे हैं। समय है युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी का।

सभी युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित है आपका अपना साथी करण वर्मा। स्वागत है आपका हमारे 18 जून के इस अंक में, जिसका आगाज हम करेंगे योग के महत्व से आज की बात के साथ। श्रोताओं, योग हमारी भारतीय संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है। योग शब्द संस्कृत भाषा के

युज धातु से बना है, जिसका अर्थ ही जोड़ना होता है। ये केवल हमारे शरीर को लचीला बनाने का अभ्यास नहीं है, जबकि ये हमारे मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का माध्यम है। योग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और आज ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। मित्रों, आज के समय में हमारा जीवन भागदौड़ और तनाव से भरा हुआ है, तब योग ही हमें मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। योग केवल व्यायाम नहीं है, जबकि ये एक जीवन शैली है। इसके नियमित अभ्यास से हमारे शरीर में लचीलापन आता है, रक्त संचार सुधरता है और मन शांत रहता है। साथियों, योग के अनगिनत लाभ हैं, जैसे योग से हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बनता है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। योग हमारे तनाव और चिंता को दूर कर मन को शांत करता है। योग हमें आत्मज्ञान और आत्मसंतुलन की ओर ले जाता है। दोस्तों, आज पूरा विश्व योग के महत्व को समझ चुका है, इसीलिए प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग का अभ्यास हमें स्वस्थ, प्रसन्न और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और योग इस उद्देश्य को पूरा करने का सबसे सरल मार्ग है। तो श्रोताओं, चर्चा और भी करेंगे, आइए पहले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म राज का ये गीत।

दोस्तों, किसी कवि ने लिखा है, एक दिन इजाज़त मिली सबको अपना प्रिय चुनने की। सूरज ने रोशनी को चुना, चांद तारों के साथ हो लिया। नदियां सागर से जा मिली, हवा खुशबू के पीछे भागी गई। बरखा ने बादल को गले लगाया और प्रेम ने थाम ली बस प्रतीक्षा की कलाई।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक वार्ता महिला सशक्तिकरण पर। वार्ताकार है सानिया कुमारी।
4: नमस्कार आदरणीय श्रोतागण, मैं सानिया आज आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं, जो केवल महिलाओं से नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास से जुड़ा हुआ है। मेरा विषय है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को वह सम्मान, अधिकार, अवसर और स्वतंत्रता प्रदान करना जिसके वह पूर्ण रूप से अधिकार रखती है। यह केवल महिलाओं को शक्तिशाली बनाने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने योग्य बनाने का प्रयास है। हमारे देश में महिलाओं ने समय समय पर अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दिया है, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, राजनीति हो, खेल हो या शिक्षा। महिलाओं ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय

उपलब्धियां हासिल की है। उदाहरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने साहस का परिचय दिया, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन किया और पीवी सिंधु ने खेल जगत में नई ऊंचाइयां प्राप्त की। नारी वह दीप है जो स्वयं जलकर भी प्रकाश फैलाती है, नारी वह दीप है जो स्वयं जलकर भी प्रकाश फैलाती है, नारी वह शक्ति है जो हर कठिनाई में मुस्कुराती है। उसके सम्मान में ही समाज का सम्मान है, उसके सम्मान में ही समाज का सम्मान है, उसकी प्रगति में ही राष्ट्र का उत्थान है। फिर भी आज समाज में अनेक चुनौतियां मौजूद है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव, अशिक्षा और महिलाओं के प्रति हिंसा जैसी समस्याएं महिलाओं के विकास में बाधा बनती है। इन चुनौतियों का सामना केवल कानून बनाकर नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज की सोच बदलकर ही इनका स्थायी समाधान संभव है। महिला सशक्तिकरण की शुरुआत शिक्षा से होती है। जब एक लड़की शिक्षित होती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होती है। शिक्षा महिलाओं को आत्मविश्वास देती है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है। जब महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होती है तो वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती है। आज अनेक महिलाएं उद्यमिता, व्यवसाय, विज्ञान, तकनीक और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। महिला किसी भी देश की रीढ़ होती है और भारत में उनका योगदान हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है, चाहे परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र निर्माण। हर जगह महिलाओं ने अपनी मेहनत, बुद्धिमता और समर्पण से अमूल्य भूमिका निभाई है। महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है। सावित्री बाई फुल्ले जैसी महान समाज सुधारक ने भारत में महिला शिक्षा की नींव रखी। आज लाखों महिलाएं शिक्षिका, प्रोफेसर और शोधकर्ता बनकर देश के भविष्य को आकार दे रही है। भारतीय महिलाएं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। कल्पना चावला जैसी अंतरिक्ष यात्री ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। आज महिलाएं इसरो, DRDO और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खेल जगत में भी भारतीय महिलाओं ने देश का गौरव बढ़ाया है। मैरी कॉम, पीवी सिंधु और अन्य खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए पदक जीतकर देश का मान बढ़ा रही है। महिलाएं राजनीति और प्रशासन में भी सक्रिय है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने देश का नेतृत्व किया। आज महिलाएं सांसद, मंत्री, IAS, IPS अधिकारी बनकर देश की नीति निर्माण में भाग ले रही है। भारतीय महिलाएं अब सेना, नौसेना और वायुसेना में भी अपनी सेवाएं दे रही है। वे देश की सुरक्षा में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। महिलाएं आज व्यवसाय, स्टार्टअप और स्वरोजगार के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और रोजगार सृजन कर रही है। नारी की शक्ति को पहचानना होगा, उसे हर बंधन से आजाद करना होगा। जिस दिन हर बेटी मुस्कुराकर आगे बढ़ेगी, उस दिन भारत को विकसित राष्ट्र बनना होगा। फिर भी एक कड़वी सच्चाई यह है कि आज भी समाज के कई हिस्सों में महिलाओं को भेदभाव, अशिक्षा, हिंसा और असमान अवसरों का सामना करना पड़ता है। जब किसी लड़की के सपनों को केवल इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, तब केवल उसका नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य कमजोर हो जाता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं है बल्कि समानता और सहयोग है। एक सशक्त समाज वही है जहां महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर प्राप्त हो और दोनों मिलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल प्रस्तुत की। इस अभियान की आधिकारिक जानकारी देश और दुनिया के सामने रखने की जिम्मेदारी दो महिला सैन्य अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरेशी और व्योमिका सिंह ने संभाली। इन दोनों अधिकारियों ने आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र सेवा की भावना का उत्कृष्ट परिचय दिया। उनकी उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि आज भारतीय महिलाएं केवल शिक्षा, खेल और विज्ञान ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और नेतृत्व के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह कदम महिलाओं को नीति निर्माण और नेतृत्व में अधिक अवसर प्रदान करने की दिशा में

0: एक महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। अंत में मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी, नारी है शक्ति, नारी है सम्मान, उससे ही रोशन है ये सारा जहान, जब मिले उसे हक और पहचान, तभी बनेगा सशक्त हमारा हिंदुस्तान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक वार्ता महिला सशक्तिकरण पर। वार्ताकार थी सानिया कुमारी। तो श्रोताओं, चर्चा करने से पहले आइए एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म जोनी मेरा नाम का ये गीत।
2: सुनो, तुम्हारा असली नाम क्या है?
3: जी, मेरा असली नाम जॉनी।
2: और नकली?
3: नकली भी जॉनी।
2: इसके अलावा भी कोई नाम है?
3: जी हाँ, जानी। आपको ज्यादा पसंद है?

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं राजस्थान के सांस्कृतिक महत्व की। श्रोताओं, हमारा राज्य राजस्थान अपनी वीरता, शौर्य गाथाओं, लोक कला, लोक नृत्य, खान पान, वेशभूषा और लोक संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। हमारा राजस्थान वीरों और शूरवीरों की भूमि है। यहाँ के किले, महल और हवेलियाँ शौर्य गाथाओं के प्रतीक हैं। इन धरोहरों में राजपूताना वैभव और स्थापत्य कला की झलक भी देखने को मिलती है। मित्रों, हमारे राज्य का खान पान भी इसकी संस्कृति की तरह समृद्ध है। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, कचौड़ी और घेवर यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। हमारे राज्य की संस्कृति वास्तव में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एक उज्ज्वल उदाहरण है। यहाँ की कला, स्थापत्य, भोजन, संगीत और परंपराएं न केवल हमारे देश भारत को गौरवान्वित करती है, जबकि विश्व भर के लोगों को भी आकर्षित करती है। सच कहा जाए तो राजस्थान की संस्कृति भारतीय संस्कृति की आत्मा है। तो श्रोताओं, युववाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए अब चलते चलते सुनते हैं फिल्म आंटी नंबर 1 का ये गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युगवाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 5:30 हुआ चाहते हैं। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

0: कार्यक्रम धीने दी बात्या
1: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं पर आज मुंडा उतार किया बैठे हो
2: काई करूं दाबू बेटा भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और बिरो जीसरो भी कौन
1: बस इतनी सी बात आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया काकी साहब ये कार्यक्रम सुन सुन मिल से पशुपालन से जुड़ी हो रही सभी समस्याओं का समाधान
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजक है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर
4: धीरे दी बातिया धीनेरी बातें कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
5: बंशी भाई रा
4: मोकला मोकला
5: राम राम
4: राम राम भाई बंशी भाई राम राम
5: राम राम हरखू भाई राम राम
4: देखो सिंजा पड़ी री बेला है और लठ हाथ में लेवड़ो और गमछो कांधे पर टांगेड़ो लगे कठी घूम रहे हो
5: थे तो हरखू भाई सारी बात जानो
4: जानो क्यों माथे पसीनो टपक रही है पूछ रिया हो बार बार है कई बात है
5: देखो साहब बेरी बेड़ा और संजेरी बेड़ा
4: हाँ
5: यानी बी टाइम रा आदमी ने थोड़ा टहलना चाहिए ताकि उन्हें सु कहीं है कि शरीर जो निरोग रहे
4: बिल्कुल सा देखो जे सुबह री बेड़ा है तो भी आपने घूमना चाहिए और साथ है साथ है

0: जिका भी आपा हड़का फुलका व्यायाम है योग है वो भी आपा कर लेवा तो शरीर रे नी आपा निरोगो रेवे।
1: इन वास्तरी क्या करे के भाई जिको करे योग
0: हाँ
1: उनरो शरीर रेवे निरोग।
0: निरोग बिल्कुल सा। देखो सुबह उठते ही साथे कहीं है आपा देखो तैयार हो जावा और अनुलोम विलोम बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है। अगर बिना भी आपा कर लेवा नी तो भी आप निरोग रहो सा। और आप अगर घर से बाहर निकल 2-3 किलोमीटर घूम लियो तो और ही सोने में सुहागरी बात है सा।
1: भाई जितो करो नी आपा शरीर ने दूरो
0: हाँ
1: भाई काम सु करा एक तो
0: हाँ।
1: और एक अपना अगर योग रे माध्यम से बो जको दूरो को नहीं रहनो होवे वो
0: हाँ।
1: उल्टे रो जको कहीं है कि शरीर ने सोरो राखन रो योग
0: हाँ।
1: है।
0: तो देखो आपा ने जीवन रे माने एक आदत डालनी है कि आपा ने सुबह और सिंजारी बेला घूमने रो जको बखत है वो निकालना है और हल्का फुल्का जिका व्यायाम है वे करना है। जे आप कोई रोग विशेष से जुड़े रहो तो आप जिका भी विशेषज्ञ है बियारी सलाह ले पर आपा ने योग करना है।
1: कुल मिलार बात आई है कि शरीर जको है नी उन्होंने कोई ना कोई काम रमाने लगाएड़ो रखो।
0: हाँ देखो शरीर से पसीनो निकलना चाहिए अभी पसीने में मेहनत छुपी है
1: और मेहनत से ही देखो सा मिले धन।
0: हाँ बिल्कुल सा। तो आप बताओ योग रे साथ है कि आज आप चर्चा किन विषय पर कर सा।
1: लोग कागज तो घना करा लिखे है कोई लिखे है कि भाई और रानी खेत रोग कहीं हुए उन बाबत जानकारी दो और एक फाउल पॉक्स चेचक रोग
0: देखो बर्ड फ्लू रे बारे में आयो है।
1: अच्छा
0: राम जी लिखी है मुर्गिया में होने वाला रोग
1: मुर्गिया रा प्रमुख रोग अरे रोक थाम रा उपाय।
0: वाह वाह ठीक रस्तो बतायो आज विशेषज्ञ जी का पता नहीं हाँ। नाम आपने बता दूं जहाँ पर चौपाल में पधारे है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे है सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी आप चौपाल में घनो घनो स्वागत है आपने में करा।
1: राम राम सा।
2: राम राम हरकू भाई। राम राम बंसी भाई।
1: देखो सा आपा कर सा डॉक्टर साहब सु प्रसन्न और डॉक्टर साहब जब जवाब देसी नी तना आपना जका पशुपालक भाई नी बे होसी प्रसन्न।
0: बिल्कुल
1: आभार पूछू सा। तो सेव पहली डॉक्टर साहब मारा पशुपालक ने आप आ बताओ कि मुर्गियां माए होण वाला प्रमुख रोग है वे किसे किसे होया करे।
2: हाँ बंसी भाई प्रमुख रोग अपने मुर्गियां में मेनली 3 कारक होया करे चाहे मुर्गियां हो पशु हो पक्षी हो। क्या तो वायरस हुए के बैक्टीरिया हुए के प्रोटोजोआ पेरासाइट हुए
1: जी।
2: तो वायरस होने वाली मेन पहले मैं बताऊं आपने बीमारियां सब बड़ी बीमारी बर्ड फ्लू जो पूरा वर्ल्ड पूरा राजस्थान ही नहीं भारत ही नहीं पूरा विश्व त्रसित है। बर्ड फ्लू ला रहे 2-4 बार हुआ तो लाखों लाखों की संख्या में अपने मुर्गियां मारनी पड़ी ताकि मनुष्य में वो रोग नहीं पहुंचे
1: जी।
2: दूसरो रानी खेत डिजीज है वो भी बहुत खतरनाक छूतरी बीमारी। तीसरो फाउल पॉक्स है। चौथो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है जो अपने बार ला रहे कोरोना बीमारी हुई सेम बारी बा बीमारी है बिना इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस के वे बा मुर्गिया में हो जावे। चौथी मर्क्स डिजीज आपने कैंसर हुए मनुष्य आदमिया में बस सेम ट्यूमर हो जावे मर्क्स डिजीज में। पांचवी गंबोरो डिजीज है लीची रोग है ये सब वायरस होने वाला है। दूसरा बैक्टीरिया होने वाला रोग है इन्फेक्शियस कोराइजा है फाउल कोलेरा है जो हुए आपने जी हाँ फाउल कोलेरा हुआ है पुलोरम डिजीज है ई कोलाई है फाउल टाइफाइड है अपने टाइफाइड हुआ जी यहाँ टाइफाइड हुआ है ये सब जीवाणुओं बैक्टीरिया होने वाला बीमारियां हैं
1: जी।
2: तीसरी परजीवों पेरासाइट जो चीचड़ है टिक है माइट है कोक्सीडियोसिस है एस्परजिलोसिस है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है ये सब प्रोटोजोआ या पेरासाइटों होने वाली ये प्रमुख बीमारियां मुर्गियों में हुए।
0: वाह सर बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आप घनकरा रोग बताए पर आज आप कुछ मुख्य मुख्य रोग पर चर्चा कर सा। तो सब पहला डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहूँगा कि रानी खेत रोग रा कारण लक्षण रोकथाम रा उपाय कहीं वे इन विषय पर थोड़ी जानकारी दो सा।
2: रानी खेत डिजीज अगर रानी खेत नाम ही वास्ते पढ़ो कि रानी खेत एक जगह है उत्तराखंड में तो सब पहले बठे भारत में डिजीज आई आ बीमारी आई
1: अच्छा।
2: जी इरो नाम रानी खेत भी जगह रे हिसाब रानी खेत डिजीज नाम पड़ियो। दूसरो नाम ये बीमारी रो न्यू केसल डिजीज भी कहवा न्यू केसल एक जगह है इंग्लैंड में।
1: अच्छा।
2: तो भारत में रानी खेत में आई लेकिन सब पहले महामारी रे रूप बठे न्यू केसल में आई इन्हें इरो दूसरो नाम न्यू केसल डिजीज भी मेरे हिसाब आप राखोड़ो है। तो इमें का है कि सब उम्र री मुर्गिया में हो सके छोटा चूजा लेर बूढ़ी भी मुर्गी तक आ बीमारी हो सके टर्की में भी बीत रहूं समान रूप हुए इरो कारक एक मिक्सो वायरस हुआ करे भी वायरस री वजह आ हुए इमें इरा मेन लक्षण आ 4 तरह री हुए पहलो विरुलेंट फार्म है दूसरो मिसोजेनिक फार्म है तीसरो लेंटोजेनिक फार्म है और चौथो एसिम्टोमेटिक। तो पहलो विरुलेंट फार्म इन एशियन टाइप रानी खेत डिजीज भी कहे आ बहुत

0: करना के इमें 100% 100% मृत्यु निश्चित है, इमें मरे ही मरे मुर्गी। और आ 3-4 दिन तक रहे और बीर बाद में कदे कदे एक ही दिन में सगली मुर्गियां मर जावे। इमें लक्षण तेज बुखार हुए और मुर्गियां ने सांस लेने में बड़ी तकलीफ हुआ, मुंह खोलर मुर्गियां भी में सांस लेने की कोशिश करे और अंडा उत्पादन सब भी में कम हो जावे। दूसरी है मिसोजेनिक फार्म, भी ने अमेरिकन टाइप किया करे, भी में मृत्यु थोड़ी कम हुए, कम खतरनाक है, 5-20% तक ही मृत्यु हुए, सांस लेने में कठिनाई हुए, हरिया रंगरा भी में दस्त हुए तो और अंडा उत्पादन में कमी तो बात ठीक हो सके, 10-20% तक भी मृत्यु हुए, 80% मुर्गियां भी में ठीक हो जावे। तीसरी है लेंटोजेनिक, इनमें मृत्यु दर बहुत कम है, वो श्वास लेने में थोड़ी तकलीफ हुए लेकिन अंडा उत्पादन में भी कमी हुए लेकिन वह ठीक हो जावे। चौथी एसिम्टोमेटिक, भी लक्षण दिखे कोनी।
1: अच्छा।
0: पर बड़ी मजेदार बात है कि इमें लक्षण कौन दिखे पर मुर्गी उल्टी चलन लाग जावे।
1: अच्छा।
0: तो भी अपन ठा पड़े के ओ रानी खेतरो लेंटोजेनिक है,
1: रोग है
0: एसिम्टोमेटिक, सिम्टम कोने आ रहा है, इमें भी में खांसी आवे, उल्टी आवे।

0: श्वास लेने में थोड़ी तकलीफ हुए लेकिन अंडा उत्पादन में भी कमी हुए लेकिन वह ठीक
1: हो जावे।
0: चौथी एसिम्प्टोमेटिक भी लक्षण दिखे कोनी।
2: अच्छा।
0: पर बड़ी मजेदार बात है कि इमें लक्षण कौन दिखे पर मुर्गी उल्टी चलन लाग जावे।
2: अच्छा।
0: तो भी अपन ठा पड़े के ओ रानी खेतरो लेंटोजेनिक है
2: रोग है
0: एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम कौन आ रहा है इमें भी में खांसी आवे उल्टी आवे पर मुर्गी उल्टी चालन लाग जावे तो आपने ठा पड़ जावे आ बीमारी कदे कदे बार टांगे रे बीच में माथो देर भी बैठ जावे तो यूं आपने ठा पड़े कि यह एसिम्प्टोमेटिक रानीखेत डिजीज है। तो ई रोग रो कोई उपचार नहीं है जो मेन जो विरुलेंट फॉर्म में बतायो एशियन टाइप बीरो कोई उपचार नहीं है बाकी तीनों फॉर्म रो थोड़ा उपचार है ठीक हो जावे। वैक्सीनेशन इमें जरूर कराना चाहिए। अच्छा। ब्रॉयलर और लेयर में तो सातवें दिन पर जन्मे जीव सातवें दिन पर 28वें दिन पर और 10 सप्ताह पर।
2: अच्छा।
0: तीन बार वैक्सीनेशन कराना जरूरी है और ब्रॉयलर में सिर्फ 7 दिन पर वैक्सीन करा दो वो भी काम चल जाए।
2: तो डॉक्टर साहब मैं उम्मीद करा कि भी आपने जिकी जानकारी आप दी उनासु आपने जगह पशुपालक भाई है वे लाभ उठा सी। अब बात करा डॉक्टर साहब एक रोग आप बतायो बर्ड फ्लू जिके सु देखो साहब भारत ही नहीं पूरा जो विश्व है वो भी कहीं कि इनसु प्रभावित हुए परेशान हुए। आप बताओ कि इन बर्ड फ्लू रोग रा लक्षण कारण और उनरा रोकथाम रा कई उपाय।
0: जी बर्ड फ्लू भी एक वायरस होने वाली बीमारी है इन्फ्लुएंजा वायरस आपने कोविड में भी इन्फ्लुएंजा वायरस ही हो इमें इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है भी वो बर्ड फ्लू बीमारी फैले अभी बहुत खतरनाक बहुत ही संक्रामक बीमारी है और इमें भी जी रानी खेतों बताई 100% मृत्यु निश्चित इरो कोई उपचार नहीं है इमें मुर्गिया ने मार खड्डे में या कोई सुरक्षित रूप में निस्तारित करनी पड़े और रोग मुर्गिया में और टर्की में मुख्य रूप हुए। ई रोग रा लक्षण है कि अचानक ही खूब संख्या में एक ही दिन में एक ही दम ही मुर्गियां मरनी शुरू हो जावे। अपने समझ नहीं आवे यार एक ही दम ही मुर्गियां क्या मरी पहले कोई लक्षण दिखे को नहीं एक ही दम ही मुर्गियां मरनी शुरू हो जावे पक्षी सुस्त और बिल्कुल खानो पीनो बंद करे और मरना शुरू तो आ स्थिति फार्म में हो जावे। बर्ड फ्लू रो पक्षी में कहीं सूजन भी आ जावे जुकाम हो जावे नाक आंख आमू सब वो स्त्राव शुरू हो जावे तो ये सब लक्षण इमो हो जावे इरो उपचार कोनी बिल्कुल भी और मरना शुरू हो जावे तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वैक्सीनेशन इरो उपचार है वैक्सीनेशन आपने 7-10 दिन में करवाना चाहिए डॉक्टरी सलाह लेर
1: बिल्कुल नुकसान वैसा। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे और जानना चाहूँ हाँ कि गंबोरो रोग कई है और इरा उपचार और बचाव क्या कर सका।
0: गंबोरो रोग इरे साइंटिस्ट है एक बारो नाम हो जूलियन गंबोरो वे ई रोग ने शुरू शुरू में स्टार्टिंग में खोज करी तो बारे नाम वो गंबोरो रोग नाम पड़ियो तो मैं साइंटिस्ट री वजह ई बीमारी रो नाम गंबोरो आ भयंकर छूतदार बीमारी है एक मुर्गियों दूसरी मुर्गी में दूसरी तीसरी में और चूजा में ज्यादा हुए छोटी उम्र में सामने 2 सप्ताह लेर 15 सप्ताह री उम्र में वो रोग हुए और 3 सप्ताह लेर 7वें सप्ताह में लक्षण बहुत तेजी हुआ हुआ भी में 3-6 सप्ताह की आयु में इमें एकदम रोग लक्षण जो हुए वे तेजी प्रकट हुआ इमें पक्षी सुस्त हो जावे भूखरी कमी हो जाए भूख प्यास कम लागे मारो उत्पादन कम हो जाए पानी री कमी हो जावे शरीर में ऐसा लक्षण पंख इमें गंबोरों में पंख बीरा अव्यवस्थित हो जावे थोड़ा
2: अच्छा
0: पंख उड़ने में चालने में बीरा बड़ी तकलीफ हुए पगा में लकवा जिसी स्थिति भी आ जावे तो है आप पशु चिकित्सक ने जाओ या राजूवास आपने नंबर है टोल फ्री बैठे बात करो इरो इलाज है पोल्ट्री फार्म भी राजूवास रो है बैठे भी आप संपर्क कर सके किसान भाई तो इरो इलाज है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है 4 वैक्सीन इरे वास्ते है पहली माइल्ड वैक्सीन है कम लक्षण आवे तो माइल्ड मतलब माइल्ड वैक्सीन लागू हुआ इंटरमीडिएट वैक्सीन हुआ और इरे अलावा इन्वेजिव इंटरवेसिव हुआ लेयर और ब्रॉयलर के लिए इन्वेजिव इंटरमीडिएट वैक्सीन और चौथी हुए हॉट स्ट्रेन वैक्सीन जो अगर एरिया में आपने प्रोन हुए कई एरिया ये बीमारी के वास्ते प्रोन हुए तो भी में हॉट स्ट्रेन वैक्सीन जरूरी हुए 4 तरह की वैक्सीन कर इरो बचाव कर सका।
2: जी हाँ डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया तरीके से समझावे नहीं तो सवाल भी आपने बढ़िया बढ़िया दिमाग रे मायने आ जावे तो अगलो सवाल अब डॉक्टर साहब आपसे हो है कि फाउल पॉक्स या चेचक रोग रा लक्षण कहीं होया करे और इन बाबत टीकाकरण की कई भूमिका हुए इन बाबत भी जानकारी दो सा।
0: जी हाँ चेचक आप नाम बतायो पॉक्स पॉक्स वायरस हूँ वेरा नाम में ही आ रही होगी पॉक्स तो पॉक्स वायरस है चेचक जिमें छोटी छोटी पुणसियां जिम मनुष्य में चेचक हुआ तो फुणसियां हो जाए जी इमें मुर्गी में छोटी छोटी फुंसियां हो जावे जगह जगह पूरे शरीर पर कलंगी पर गलकंबल पर आखरी पुतलियां माथे और सिर माथे फुंसियां हो जावे तो वही मेन लक्षण है कि फुंसियां अगर आपने दिखे तो आप समझ जाओगे वो फाउल पॉक्स बीमारी है। इनमें संपर्क भी एक मुर्गी दूसरे मुर्गी में

0: आवे तो भी हो एक दूसरे में फैले, मच्छर या पेरासाइट बारे पर जीवी आरी वजह भी आ बीमारी हो जावे। अब तीन तरह री हुए, चर्म रूप मतलब चमड़ी में फैलनो,
1: अच्छा।
0: दूसरी हुए मुख रूप और तीसरी हुए आँखों रूप। चर्म रूप में कहीं हुए कि इमें कलंगी कलंगी माथे चेहरे माथे और गर्दन माथे ए फुंसियाँ चेचकरी चेचकरा दाग हो जावे, गल कंबल पर गुदा पर भी हो जावे, तो यहाँ में हल्का भूरा रंगरा दाना नजर आवे, तो बन देख रहे धीरे धीरे पीला रंगरा एक दो दिन में पीला रंग में बदल जा भी वहाँ परी पहचान हो जावे। दूसरो वह मुख रूप, इमें मुँह अंदर झिल्ली अंदर गड़ा तक छला और दाना हो जावे, तो वो मुख रूप हुए इरो चेचकरो फाउल पॉक्स रो। तीसरो वह आँख रूप, इमें आँखों पलकाओं स्त्राव शुरू हो जावे, सफ़ेद मवाद भी कई बार निकलन लाग जावे,
1: अच्छा,
0: तो वो इरो तीसरो रूप है आँख रूप। ओवरऑल अंडा उत्पादन तीनों ही रूपों में अंडा उत्पादन में कमी आ जावे, आहार प्रति रुचि पक्षी री कौन रहे, ताप टेम्परेचर बिरो बढ़ जा, बुखार टाइप हो जा और उग्र रूप हो जावे, तो पक्षी मरना भी शुरू हो जावे। इमें भी रोग रो बचावी उपाय है, ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीनेशन।
1: अच्छा।
0: बीमारी होनू पहले वैक्सीनेशन आपने करना चाहिए, 6-8 सप्ताह री उम्र में इरो वैक्सीन लागे।
1: अच्छा।
0: वो डॉक्टर साहब संपर्क कर और वैक्सीन लगवानी चाहिए।
2: बिल्कुल साहब, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। और अब जो बखत है बंसी भाई, वो है गीतड़ ले रो।
1: बिल्कुल अरकू भाई,
2: सुना दू
1: एकदम साहब।
2: आप से सुनो भैया, वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: तो भैया बार आप सुनियो भी एक मीठो मीठो सो गीत रडलो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धूड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इन बेला आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीणेरी बातें। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़। और आज आप बातचीत करिया मुर्गिया रा प्रमुख रोग रोकथामरा उपाय विषय पर।
2: डॉक्टर साहब क्या करे कि भाई जीवारी और पशुवारी सुरक्षा बहुत ही जरूरी हो या करे और बे चाहे किने भी रूप पारे मायने हो या करे। अब बात करा जैव सुरक्षा री तो मुर्गिया माए जैव सुरक्षा रो काई महत्व है, इन बाबत आप जानकारी दे सा।
3: बायो सिक्योरिटी या जैव सुरक्षा बहुत जरूरी है। ई में आप सब पक्षियों रो स्वच्छता रो विशेष ध्यान रखनो पड़े, नहीं तो कई तरह रा इन्फेक्शन चूहा अपने पोल्ट्री फार्म में नहीं घुसे, इसका भी विशेष रूप ईरो भी आपने विशेष रूप ध्यान रखना पड़ी, कोई तरह रो इन्फेक्शन नहीं आवे। अपने जब फार्म डालते हैं नया तो भी टाइम डालना, जब नया जब चूजा खरीद लावा जठों भी तो ईरो भी आपने ध्यान रखना पड़े कि जठों भी आप ला रहे हैं वो 3 महीना तक या 4-6 महीना तक बैठे कोई बीमारी नहीं आई हुई इसी जगहों ले रहा हुआ। अच्छा। जी वाहन में आ रहे हो वो वाहन भी साफ सुथरो हुए तो ये सब चीजा ध्यान रखनो पड़े। इमें अंदर घुसनो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड और फुटबाथ वगैरह आप अंदर हैंडलर करना वाला वे मास्क वगैरह गम बूट वगैरह वे पैर जावे, ये सब बहुत जरूरी है। तो आऊं बायो सिक्योरिटी जैव सुरक्षा आरी मुर्गी फार्म री जरूरी।
0: बिल्कुल सर, कुल मिलाकर साफ सफाई की जी भूमिका है बा महत्वपूर्ण है। और चाहे आउन जाउन रो जो भी वाहन है वो हो, चाहे जठे भी पशु दड़बे में रहे बीरी हाँ। भी साफ सफाई रो भी बहुत महत्व है।
3: बीरो बीरो लीटर जो आपा नीचे बिछड़ो हुआ है बीरो भी बहुत ध्यान रखना हुआ है साफ सफाई रो।
0: पर अब एक डॉक्टर साहब आप सुमे और पूछना चाहूंगा कि संतुलित आहार और साफ पानी मुर्गियों रोग से बचाव में किन भात सहायक रहे।
3: संतुलित आहार अपने न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट हमारे राजू आस में भी है और जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर्स है बहु बातचीत कर रही, जब भी आप फार्म डालो पशु फार्म तो वो पूरा प्रोटोकॉल है न्यूट्रिशन रो, चूजा लेर जन्म लेर और आगे जू जू उम्र बढ़े भी जू और ब्रॉयलर रो अंडा देवन री टाइम कहीं आहार रहना चाहिए, क्लाइमेट रे हिसाब भी सर्दी गर्मी में थोड़ो बहुत बदलाव आहार में लाना चाहिए, बारिश रे टाइम में कहीं है बीमारियां वैक्सीन, तो वो सब जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है हमारे राजूवास विश्वविद्यालय में भी आप संपर्क कर सको और नियर जो नजदीक आप रहे पशु चिकित्सक है वहाँ भी संपर्क कर और एक प्रोटोकॉल रे तहत ही आहार देवा। पेयजल भी बहुत सुरक्षित होना चाहिए, अन्यथा ये बीमारियां सकला पशु मुर्गियों आर इंसाना मासी आदमी मासी बहुत खतरनाक रूप भी ले लेवे कई बार, तो आहार और पेयजल रो बहुत संतुलित रूप में ध्यान रखना पड़े। ऑल आउट ऑल इन भी एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए, मुर्गिया ने एक साथ 2-3 महीना में एक साथ

0: सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। तो सा हमें महने आज्ञा दिराओ सा घणान घणा राम राम सा।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
2: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुन्ना उतार किया बैठे हो।
3: काहे करूं दाबू बेटा, भैंस को दूध भी कौन दियो और विरोध जिसोरो भी कौन।
2: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी साहब कार्यक्रम सुनन सुनिल सी पशुपालन से जुड़ी होरी सारी समस्या का समाधान
4: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे थे धीणेरी बाता। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं।
2: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6 बजने वाले हैं। लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय सुनिए।

पहले सुनिए आज के दिन के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या 6:05 पर सराइकी भाषा का कार्यक्रम होगा झोंक माही दी। संध्या 7:00 ग्रामीण परिवार अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल। कार्यक्रम में खेतीबाड़ी से संबंधित विषयों के अलावा आज आपको एक भेंट वार्ता भी हम सुनवाएंगे। उपलब्ध होने पर मौसम और बाजार भाव भी आप तक पहुंचाए जाएंगे। फिल्मी गाने संध्या 7:45 पर और फिल्म संगीत का ही हमारा एक कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप रात 8:00 सुनेंगे। चंद गजलें आपके लिए होगी रात 9:15 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इनसाइट प्रोग्राम होगा रात 9:30 पर, और आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से राजस्थान दर्शन आप सुनेंगी रात को 10:00। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 10:30 पर।

ये थे आज के दिन प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम। आप सुनिए कल के दिन प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। सुबह 6:10 पर भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम चिंतन, 6:45 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुबह 6:10 पर, किसान भाइयों के लिए खेतीरा वास्ते कार्यक्रम सुबह की सभा में 7:10 पर होता है। रामचरित मानस का सस्वर पाठ मानस गान आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 7:30 पर। महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी महिला जगत दिन में 1:05 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम रात 8 आप सुनेंगे। साप्ताहिक पंजाबी कार्यक्रम मिठी दी खुशबू रात 9:30 पर आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से मीडियम वेव 326.7 मीटर पर बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। समय सराय की का है।

ए ऑल इंडिया रेडियो दा सिराइकी प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते अज दा प्रोग्राम घेन के हाजिर हां। कुछ बातां कुछ गीत, तुसा सारे ठीक ठाक होसो ते वाला प्रोग्राम दी शुरुआत करेंदे हां एक बहु मजेदार गीत नाल के छुहेर दे पै ने रेल गड्डी ते आवना हई। हुन रेल गड्डी थी गई खराब, रेल गड्डी लेट थी गई ते छुहेर सारा कावड़ रेल गड्डी ते ही कढेंदी पई है। के आखदी है, नी टूट जाए रेल गड्डीए तू रोक लिया चन मेरा, विच हिक झां ते आदिए आके करांगी सियापा तेरा, नी मैं की सी विगाड़िया तेरा तू रोक लिया चन मेरा। एह फिल्म गुड्डी दा गीत शमशाद बेगम दी आवाज विच, बहु वधिया गीत है, आओ मजे चाओ।

ए हई शमशाद बेगम दा गाया गीत। फिल्म हई गुड्डी। सुनन आलियो, बहुडिया तू गर्मी केडी पेंदी पई है। इस मौसम विच सेहत दी देखभाल बहु जरूरी है। इंदे वास्ते तुसा डी विच 2-3 लीटर पानी पीवना है। नाली नींबू पानी, नारियल पानी, शरबत, लस्सी, सत्तू घिन्नो। ए चीजा शरीर को ठंड पौंदियां हैं ते शरीर विच पानी दा घाटा नहीं होवन देंदियां। इस मौसम विच घ्यू तेल आलियां चीजा को ना खावन दी सलाह दित्ती वेंदी है। खाने विच दाल, रोटी, हरी सब्जी, दही घिन्नो ते घर विच सारा को ताजा खाना खावन को दियो। सूती कपड़े पावन कीते रखो। दोपहरी घरों धूप विच बाहर निकलन वेले सिर को ढको ते धूप दा चश्मा लावना ना भूलो। ई करके इंज दियां छोटियां छोटियां गालां को ध्यान विच रखो ते गर्मी को दूर भजाओ। ते हुण मैं तुहाकू सुनवेंदी हां गीत छुहे राधा है। तैनू बेरियां दे झुंड चों बुलावां, निचोरी चोरी आजा गोरिये। ते अगू छुहेर के आधी है, दस केड़े में बहाने आवा के बेरियां दे बेर मुक गए। गावन वाले कलाकार हैं आशा सिंह मस्ताना ते मदन बाला सिंधु।

ए हरी मदन बाला सिंधु ते आसा सिंह मस्ताना दा गाया गीत। हुण मैं तुहाकू हसणे हसाणे दी एक गल सुणेंदी हां। आधे ने दुध पीवण नाल जे सेहत बणदी तां बिल्ली हुण तक शेर बण वेंदी। सैर करन नाल बंदा पतला थींदा तां हाथी दा वजन ना घट वेंदा। तैरन नाल वजन घटता तां हवेल मछली ना पतली थी वेंदी। रोज सवेरे जल्दी उठन नाल घर विच लक्ष्मी आंदी होवे तां अखबार वंडन नाले BMW ते ना घूमदे। ही करके मौजा करो, ज्यादा टेंशन विच ना रहो। घिनो सुनो ए गीत सर्वजीत दी आवाज विच।

अभी आप सुन रहे थे सराय की भाषा का कार्यक्रम झोंक माही थी। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ है।

0: यह आकाशवाणी सूरतगढ़ है। संध्या के 6:30 हुए हैं। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98.5% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और आरपीएससी ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस प्रोत्साहन वितरण से 15 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगारों को समर्थन मिलने की संभावना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। आज जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 स्थानों पर होंगे।
1: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख

0: ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
1: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, साथ ही खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण ने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता को मजबूत किया है। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में करीब 98% खाद्यान्न वितरण EPOS उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक से अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान करने में मदद मिली है। वहीं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल ने देश भर में प्रवासी लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।
2: हमने वन रेशन कार्ड जो गरीब बड़े बड़े शहरों में जाते थे उसको राशन नहीं मिलता था, उसका भी इंतजाम इससे हुआ है। तो रिसेंट हमारा जो है CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड द फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप ऑफ दी को टेक्नोलॉजी उपयोग करके, डिजिटाइजेशन उपयोग करके नेक्स्ट लेवल का एक बदलाव है।
1: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस वर्ष की हज यात्रा को सफलतम बताया है। श्री रिजिजू ने आज नई दिल्ली में अगले साल की हज यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस बार भारत को हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जल्दी ही 2027 की हज यात्रा के लिए नई नीति की घोषणा करेगी। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत इन सड़कों के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अगुवाई में हुई बैठक में राजस्थान सहित 6 राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में सभी तेल शोधन संयंत्रों में कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार हैं और ये संयंत्र उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले 3 दिनों में 1,47,00,000 LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख PNG कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी दी है। इन खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किया जाएगा। इस निर्णय से युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने और प्रदेश में खेलों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18,86,00,000 रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। इस राशि से मंडी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का विकास और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। इससे सोजत, पलसाना, श्रीमाधोपुर, बीकानेर, नागौर और दूदू कृषि उपज मंडियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिससे कृषि विपणन गतिविधियों को हवा मिलेगा। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय पर आज

प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि विभाग की ओर से डीडवाना में हुई वर्कशॉप में पीएचईडी और जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किसानों से कुल कृषि भूमि के कम 10% हिस्से में प्राकृतिक खेती शुरू करने को कहा, जिसे भविष्य में व्यापक स्तर पर विस्तार दिया जा सके। उधर नागौर में आयोजित कार्यशाला में किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी संभव है। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना की उच्चाधिकार समिति की आज जयपुर में बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने परियोजना के तहत अधिकारियों को ग्रीन कवर बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण और चारागाह विकास कार्यों में स्थानीय तथा क्षेत्र विशेष के अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव ने जल संरक्षण और जल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

0: ग्रीन कवर बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण और चारागाह विकास कार्यों में स्थानीय तथा क्षेत्र विशेष के अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव ने जल संरक्षण और जल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने आज आयोग मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पिछले एक साल में आयोग द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और तकनीकी नवाचारों की जानकारी दी। श्री साहू ने कहा कि आयोग ने परीक्षा प्रणाली की शुचिता और समयबद्धता बनाए रखने के विशेष प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया गया और 10,000 अभ्यर्थियों की चयन अनुशंसा संबंधित विभागों को भेजी गई।
1: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 डीपीसी की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस डीपीसी के माध्यम से मिला है।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों को नीट यूजी 2026 परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने का आश्वासन दिया है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल और अनुचित गतिविधि के प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। एनटीए ने अपने संदेश में कहा है कि परीक्षा में केवल 3 दिन शेष है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर भरोसा रखते हुए परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 144-16 से मदद ली जा सकती है। एजेंसी ने अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जनता को अफवाहों पर विश्वास नहीं करने और अपुष्ट जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों और पार्कों तथा खेल मैदान में बड़ी संख्या में लोग सामूहिक योगासन करते नजर आ रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरएसी जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। उधर उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने भी आज जयपुर में अपने आवासीय परिसर में परिजन और सहायकों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर श्री बैरवा ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे स्वस्थ जीवन शैली का स्थायी आधार बनाया जाना चाहिए। वहीं राजस्थान विधानसभा परिसर में कल सुबह सामूहिक योग कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अगुवाई में यह कार्यक्रम होगा। सिख धर्म के 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। त्याग और सेवा के प्रतीक गुरु अर्जन देव को शहीदों का सरताज भी कहा जाता है। इस मौके पर गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए हैं और गुरबाणी तथा शबद कीर्तन के आयोजन रखे गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों की जल सेवा भी की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98.5% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और आरपीएससी ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशी लाल ने तैयार किया है। बालोतरा जिले में राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से सरकार के 22 विभागों की सेवाएं आम जन तक पहुँच रही है। ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों की

0: समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को उनसे जोड़ा जा रहा है। वर्षों से लंबित कई कार्य एक ही स्थान पर पूरे किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव इन शिविरों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। वे गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। जिले के सभी स्थानीय निकायों में शहरी सेवा शिविर भी लगाए गए हैं। जिले के आठों नगरीय निकायों में नियमित रूप से शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टों का वितरण किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा पेंशन प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिले में परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण और जल संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विभिन्न तालाबों जल स्रोतों पर श्रमदान किया गया तथा पूजन के कार्यक्रम हुए। रेवाड़ा तालाब पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री केके विश्नोई ने भाग लिया। उन्होंने लोगों को जल संरक्षण का महत्व बताया और जल बचाने की शपथ दिलाई। जल ग्रहण विकास और भूमि संरक्षण विभाग की ओर से भी कई ग्राम पंचायतों में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीणों को वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों की सफाई के महत्व के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर पूजा अर्चना की गई। बालूतरा के प्राचीन खेड़ मंदिर में भगवान रणछोड़ राय की पूजा की गई। वहीं गुड़ामालानी के स्वामी नारायण मंदिर में राज्य मंत्री केके विश्नोई ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। वहीं जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से पंचायत समिति परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन को दी गई। जिले में बदलते कृषि परिदृश्य और भूमि की घटती उर्वरता को देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति परिसर बालूतरा में कार्यशाला रखी गई। कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में किसानों को रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कृषि पद्धतियों के बारे में बताया गया। किसानों को प्राकृतिक खाद और जैविक तरीकों के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। इस वर्ष अधिक मास होने के कारण पूरे महीने जिले में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर नगर परिक्रमा निकाली गई। लोगों ने पूजा अर्चना और दान पुण्य के कार्यक्रमों में भाग लिया। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा की कामना की। पचपदरा रिफाइनरी को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह बना हुआ है। कुछ समय पहले एक यूनिट में आग लगने के कारण काम प्रभावित हुआ था, लेकिन अब फिर से कमिश्निंग का काम शुरू हो गया है। जुलाई के पहले सप्ताह तक रिफाइनरी के शुभारंभ की संभावना जताई जा रही है। रिफाइनरी से क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न स्थानों पर योग शिविर और योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह के समय बड़ी संख्या में लोग योग कर रहे हैं। जिले में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी और हल्की बारिश हुई है। इससे गर्मी और लू से लोगों को राहत मिली है। तापमान में कमी आने के बाद किसान खेतों की ओर लौटने लगे हैं। खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसान खेतों की सफाई कर रहे हैं और अनावश्यक पौधों को हटाने का काम कर रहे हैं। मॉनसून की बारिश से पहले खेतों को तैयार किया जा रहा है ताकि समय पर जुताई और बुआई का काम शुरू किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियां फिर से तेज होने लगी हैं और किसान आगामी मौसम की तैयारियों में जुट गए हैं। बालूतरा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली माए देश माए 200 क्षेत्रीय कार्यक्रम भैला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98% अन्न वितरण ई पीओएस मशीनों करियो चार्यो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तर री होड़ा माए तमगा जीतन वाला 50 खिलाड़िया ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी री मंजूरी दीनी। आर पी एस सी लारला

0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मत ही समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तरीय होड़ा माए तमगा जीतन वाला 50 खिलाड़ियां ने माध्यमिक शिक्षा विभाग माए कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी देवन री मंजूरी दीनी है। इन फैसला नौजवाना ने खेलना रा हलका माए आगे बढ़न और प्रदेश माए खेलना रा विकास ने बधावो मिलेला। राज्य में कृषि उपज मंडी समितियां रो बुनियादी ढांचो मजबूत बनावन सारू मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 18,86,00,000 रुपया रा खर्च वाला विकास रा काम मंजूर कीना है। इन रकम सोजत पलसाना श्रीमाधोपुर बीकानेर नागौर और दुदू कृषि उपज मंडी में विकास रा काम कराया जावेला। इस आगे यार्ड और संपर्क सड़क बनावन और टूटोड़ी सड़क री मरम्मत रा काम ही कराया जावेला। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय माथे आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला राखी जी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन रा तहत कृषि विभाग री ओर डीडवाना माए राखी जी कार्यशाला माए जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी किसाना खेती री कुल जमी कमों कम 10% हिस्सा माए प्राकृतिक खेती करण बाबत कहो। नागौर माए भी कार्यशाला माए किसान आयोग रा अध्यक्ष CR चौधरी प्राकृतिक और जैविक खेती माथे जोर देता थका कहो क इनु किसाना री आमदनी माए बढ़ोतरी फै सकेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना रा तहत हरियाली बधावन और जमी हेठ पानी रा लेवल माए सुधार सारू जतन करण रा हुकम दीना है। वे आज जयपुर माए अहलकारा सागे मीटिंग रे दौरान बोल रहा है। मुख्य सचिव चालू माली साल री कार्य योजना नई मंजूरी दीनी व पौधा रोपण और चरागाह विकास से जुड़िया काम माए स्थानीय और हल्का र अनुकूल प्रजातियां माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA विद्यार्थियां ने उजू ली जावन वाली नीट UG 2026 परीक्षा साफ गोई सागे करावन रो भरोसो दिरायो है। एजेंसी रे मुजब परीक्षा माए नकल और गैर कानूनी काम करण री कोशिशां ने करड़ायूं रोकी जावेला। NTA उम्मीदवारा ने तैयारी माथे भरोसो राखता थका परीक्षा देवन और जरूरत पड़िया मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 14416 मदद लेवन बाबत कहो है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आज अजमेर माए आयोग रा मुख्यालय माए खबरनवीसा ने लारला एक साल माए आयोग री उपलब्धियां और तकनीकी नवाचारा नी जानकारी दीनी। वे कहो क आयोग परीक्षा प्रणाली री साफ कोई बनाई राखण और परीक्षावा टेम सर करावण सारू खास कोशिशां कीनी है। वे बतायो कि एक साल माए 47,00,000 बत्ता उम्मीदवारा सारू 187 परीक्षावा करार 10,000 उम्मीदवारा री नौकरी री सिफारिश संबंधित महकमा ने करी जी।
1: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-layer सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 DPC की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस DPC के माध्यम से मिला है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन रा तहत प्रदेश में आए योगाभ्यास रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली आज जयपुर माए मुख्यमंत्री रा रहवास माथे योगाभ्यास कार्यक्रम राखी चियो। इन माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा RAC रा जवाना सागे योग और प्राणायाम रो अभ्यास कीनो। उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवाई जयपुर माए वारा रहवास माथे परिवार वाला और सहायका सागे योगाभ्यास कीनो व लोगों योग जुड़बारी अरज कीनी। बैरवा कहो कि योग न केवल एक दिन ताई सीमित रखने री बजाय स्वस्थ जीवन शैली री बुनियाद बनायो जावनो चाहिए। राजस्थान

चौपाल कार्यक्रम सुननी है सगल्या परिवाराने बुरु भाई की घनी घनी घनी घनी राम राम मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों, आज आपां खेतीबाड़ी पर भी चर्चा कर सियां एर आपने सागे कान्हा राम जी भुआल है बां सागे बातचीत करी है नवीन सिसोदिया जी जैविक खेती पर भाभी थाने सुना सियां। सदाण तरियां कार्यक्रम की शुरुआत करा आपां भजन गे सागे सुनो सा।

0: जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सुनियो भजन, अब सुनावा था ने जैविक खेती पर बातचीत अपने प्रगतिशील किसान है कन्हा राम जी भुआल जका सा के बातचीत करी है नवीन सिसोदिया जी। सुनो सा।
4: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी की आप बात करया करा तो अपा अक्सर सुना कि जैविक खेती है जिकी करनी चाहिए, पर किसान जिको है वो कई बार सोच तो रह जाए कि मैं

0: क्या शुरू करूँ और क्या हो पासी आपने जिको उत्पादन है वो कम ना हो जाए, ये सारी चीज़ें जिका सवाल है बेंगे मन में रहे किसान के। इसी बातें जानने वास्ते आज अपना आकाशवाणी सूरतगढ़ का स्टूडियो में आप बुलाए हुए प्रगतिशील किसान कान्हाराम भुआल ने। ये गाँव खोतावाड़ी का है, तहसील पीड़ीबंगा और हनुमानगढ़ से। अने भारत सरकार के ऑर्गेनिक कृषि को मंत्रालय वेबिंग की तरफ से चैंपियन फार्मर को अवार्ड भी मिले हैं आदि नहीं। और सारों बड़ी बात है कि एक खुद खेती के माया जैविक अपनाए हुए पर सागी सब बढ़िया काम जिको कर रहे हैं बाकी किसानों ने सिखाना वो कर रहे हैं। आपका आसपास का किसान दूर दराज का किसान भी यहाँ से प्रशिक्षण ले संस्थाएं बना रखी है बिंग माध्यम से। ये लगभग 2500 किसानों ने अभी तक प्रशिक्षण दे चुके हैं। सारों पहले तो कन्हाराम जी थारो स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद जी। राम राम जका सुनन आरा किसान बंधु है बने।
0: कन्हाराम जी सारों पहले तो आप बताओ थे ऑर्गेनिक खेती की है जैविक खेती है बे मैं कद आया?
1: अभी ट्रेनिंग तो मैं 2016-17 में लिंदी और भी बाद में 2018 में थोड़ा बहुत प्रयोग करियो।
0: अच्छा।
1: और अभी 2023 यूं लगातार करना रहे।
0: अच्छा 2023 से थे खुद के खेत में जैविक खेती कर रहे हो?
1: जी।
0: तो थारे मन में की आई कि मैं जैविक करूं?
1: मन में तो चारा पास देखने आ रहा माहौल के है।
0: अच्छा के माहौल बताओ।
1: वो माहौल है कि चारा पास एक तरीको छुप गए वार होने लग रहा है स्वास्थ्य के ऊपर
0: या केस
1: का लुक गए। और यहाँ धीरे धीरे जका है आप यहाँ लगना रहा है कि जो उम्र को जो गैप कम हो है।
0: अच्छा।
1: इन कठिन कठी खेती को भी एक रोल है जका अभी या रासायनिक जहरीली जकी खेती है बिंगो भी एक प्रभाव है सीधो सीधो।
0: थे आ कहना चाहो कि जवान जिगा जल्दी बुढ़ा होने ला रहे हैं कि?
1: बिल्कुल जवानी आनी कौन आ रही बुढ़ा तक सीधा बुढ़ा पपरी जाए।
0: तो कान्हाराम जी थे खेती जिकी है मैं जैविक कर ली तो भी वास्ते थे कोई प्रशिक्षण लियो के थे आप ही शुरू करी?
1: नहीं प्रशिक्षण लेके आयो मैं पहली बार 2016 के अंदर बीकानेर से हूँ प्रशिक्षण ले गया रानी बाजार से हूँ।
0: अच्छा बेटा कोई संस्था थे प्रशिक्षण?
1: हाँ संस्था कोई एक गौ सेवा गतिविधि संस्था।
0: अच्छा अच्छा।
1: बांगे द्वारा मैं प्रशिक्षण ले गया बठस हूँ। और बिंग बाद में 2017 में जयपुर 4 दिनांक एक ट्रेनिंग ही भी में जा गया हूँ।
0: थे आपने क्षेत्र में जी कृषि विज्ञान केंद्र है आम भी जाकर प्रशिक्षण लियोगे?
1: हाँ आम मैं केवीके संग्रिया से जुड़े हूँ।
0: अच्छा केवीके संग्रिया जुड़े
1: जी।
0: तो जैविक खेती के बारे में माने थे जिका सुनो नारा किसान भाई है।
1: हाँ।
0: बाना बताओ कि जैविक खेती क्या करी जी?
1: बिल्कुल अब भी जैविक खेती सरल सरल विधि जकी है।
0: हाँ।
1: किसान ने प्रकृति प्रदत्त भी कह सका
0: बा
1: खेती जैविक खेती है। और बिंगे माँ सारों पहला अपन जकी जरूरत है बा जकी पहला करता बुढ़िया अकूरड़ी वाली खाद।
0: अच्छा
1: बिंगी सारों पहली जरूरत है जैविक खेती में।
0: अकूरड़ी वाली खाद किया बने तू?
1: अकूरड़ी वाली खाद तो पशु बनावे और अपने इकट्ठा करे और घराला पर बिना भी जी अपने कह रहे कंपोस्ट करके सड़ा के गला के तैयार करो।
0: कोई विशेष तरीको है सड़ाना को?
1: हाँ बिल्कुल इन्हें अपने सरल कंपोस्ट खाद कह सका।
0: हाँ।
1: एक ट्रॉली जिया है भी ट्रॉली ने आप अगर तैयार करनी है तो बा भरगे घरों खेत में ले जाके इसी छाया जगह रख दियो।
0: हाँ।
1: और बीहू बाद में जो अपनो मेज आई लदाइया ऊंची चोरस करके कुर्सी
0: है।
1: जीती ऊंची और फुट फुट पर बिंग माँ लकड़ियों मोरा काट लो। और बिंग माँ ताजा गोबर ले गए गाय को 30 किलो और 30 लीटर छा कोई भी पशु की और 2 किलो गुड़ और एक ड्रम को पूरो घोल बना गए।
0: अच्छा।
1: ए जका आपा अकूरडी का मां मोरा काट दिया बिंगा मां वो घोल घाल दियो।
0: ठीक है।
1: और अकूरडी अगर सूखी है तो थोड़ी भी ने गिल्ली कर लियो लड्डू बंदे इसी के।
0: ठीक है।
1: और ऊपर बन सटी हूँ या पराली हूँ या कोई आकड़ों बुई का जो को भी अपना आस पास खरपतवार को कचरो पड़ी है बीच हुई ना ढक के छोड़ दियो। तो जिया केचुआ खाद को प्रोसीजर है 60 दिनों 70 दिनों में तैयार हुआ है 48 दिनों 60-70 दिन के बीच में आप भी एक कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी।
0: तो
1: केचुआ खाद से भी कई गुणा दुणा बढ़िया।
0: नहीं बीच बीच में मैं कोई पानी
1: ना
0: डालूं
1: कुछ
0: कुछ
1: भी कौन करनो इन्हें ढक के छोड़नी है
0: की कौन करना बस
1: बीच
0: छोड़
1: में
0: दो?
1: की कौन करनो वो पहले दिन जो को अपनों घंटे भर को परिश्रम है मेहनत
0: हाँ।
1: है भाई है बीच में कोई भी अलवाद को नहीं।
0: आज की एक ट्राली तैयार होगी आ कितनी बीघा में काम आ जाएगी?
1: आप 1 बीघा ले गए 3 बीघा ताई रेड सका। अगर
0: अच्छा।
1: आपने कहना पर्याप्त है तो 1 बीघा में रेड नहीं चाहिए।
0: हाँ।
1: अगर यहाँ लगे कि इती है तो फिर भी ना 3 बीघा ताई भी घेर सका क्यों ट्राली के अंदर 40-1 क्विंटल वजन रेवा है।
0: सही बात है। तो कन्हाराम जी जी आप देखे करा किसान भाई है बे सारू पहला कणक में ही जैविक करने की सोचा है
1: जी।
0: तो कणक की अगर आप बात करा तो थे शुरू से लेकर अंत तक बताओ कटे कटे किसे किसे चरण पे के काम करना पड़ेगा?
1: बिल्कुल अब भी क्या जैविक करा जी सारा किसान आई बात करें
0: हाँ
1: और पहले साल ही बंगो उत्पादन जो को है 14-15 क्विंटल अपने एरिया का माँ जो को भाखड़ा पर हुआ है बी एरिया गए माँ उत्पादन जो को है 14 क्विंटल ले गए 16 क्विंटल तक को है।
0: हाँ
1: और अगर वे जैविक करे सीधी तो वो उत्पादन 8 क्विंटल पर 6 क्विंटल पर भी आ जाए
0: आदो जैसी तो
1: क्योंकि बिंगी गलती आ है कि

0: किसान जका भैया हैं बिंगो जो कि शुरुआत करी जैविक की तो बांक एक रो एक बार बार रुखी सुखी कूड़ियाली खाद रेट दी बीच में भी ना पूरा टाइम की को दिन दियो।
1: अच्छा
0: और फसल का माँ तो यूरिया ही देना रहा है डीएपी देना रहा है फसल का पहला बिजाई में भी दिन दी पर इनमें को दिन दियो तो इनमें एक तो कूड़ियाली खाद दे दियो बीयू बाद में बिजाई हूँ पहला जब आप रूणी भावा बी टाइम में सरसों की खड़ी दे इसका 5 किलो अगर आप 20 किलो डीएपी देने लग रहे हैं 20 किलो यूरिया देने लग रहे हैं 5 किलो सरसों की खड़ और 2 किलो हरा कशीस क्यों अपने बेल्ट में आयरन की बहुत कमी है।
1: अच्छा
0: तो जो को हरा कशीस है इनकी पूर्ति करे
1: पहला माटी जांच करा ले ज्यादा बढ़िया को
0: नहीं ना माटी की जांच मेरो वो मानना है कि अपने एरिया में जांच होने लाग रही है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सारा गाँव में है तो एक आम घर की महिला जकी गए आजकल बे जकी आंगनबाड़ी वाले बेना जांच है नहीं
1: हाँ।
0: तो बे जांच कराओ जन सारी अंग ही आयरन की कमी बतावे।
1: अच्छा
0: इंगो मतलब है कि जकी धरती माता की कोख है और जकी भी जननी की कोख है और एक गाय की कोख है तीनों समान कोख है अगर लेडीज का कोई समस्या है जो महिला में कोख में कोई कमी बताई गई है तो बा धरती में भी जरूर बा कमी है।
1: नहीं आप बात तो थारी सच्ची है कि आप जिकी चीज खावांगा
0: हाँ
1: भाई अपने शरीर में बनेगी।
0: बिल्कुल तो अभी आप देखा कि आपने जो कि सामान्य घर की महिला भी आयरन की थप्पो थप्पो गोली खावे जी तो इनको मतलब आयरन आपने लगभग कमी रेवे।
1: नहीं वो तो क्या है हरी पत्तेदार सब्जी को नहीं खाओ तो भी कम हो जाए
0: बिंग वो कारण भी है पर विशेष करके तो फसल का माह है।
1: अच्छा तो बिंग बाद में आप बात करा जी कह दियो कि भाई
0: खाद रेट दी अब बिजाई कर दियो।
1: अच्छा
0: और जब कोर को पानी लगावे बिंग ऐसा गए ताजा गोबर गाय को 30-40 किलो पर बीघे को पानी के सागर चलाओ।
1: ठीक है
0: अगर आप 5 पानी लगावा तो 5 पानिया को सिस्टम बना लियो भी पहलो को और को पानी लगायो तो 40 किलो ताजा गोबर दूसरो पानी लगायो तो 40 लीटर गौमूत्र तीसरो पानी लगायो तो फिर ताजा गोबर चौथो पानी लगायो तो फिर गौमूत्र तो एक दाणो जो को है वो अपनों कणक को कम को है।
1: थारो कहने का मतलब है अगर ए जी की थे सारी चीजें बताई है
0: जी
1: आना अगर किसान मान ले आपका खेत में कर ले तो जो उत्पादन वो कम कौन
0: कम कौन हुआ क्योंकि जकी एक तो बापा खाद बताइए कूड़ियाली तैयार करेड़ी बा रेट दी तुनिया मान लो कि सारा डीएपी यूरिया थैला खोल दिया खेत में
1: एक थे बता रहे जिसका माइक्रो न्यूट्रिएंट है अगर बांगी भी मान लो कमी हो जाए तो थे फिर वे वास्ते किसी खाद बनाओ
0: बी खातर भाई सब 6 एलिमेंट्स का नाम से आपा भूमि शक्ति का नाम से एक चीज तैयार कर सका जो को 100 लीटर पानी के अंदर गोबर 6 किलो गाय को ताजा 6 लीटर गौमूत्र और 1.5-2 किलो गुड़
1: ठीक है
0: इन्हें पानी में घोल लियो 100 लीटर में
1: 100 लीटर पानी लेना है।
0: हाँ 100 लीटर पानी में
1: ठीक है
0: और बीहू बाद में तीसरा दिन दिन गए इंगमा 3-1 किलो सरसों की खड़ गाल दी।
1: ठीक है
0: और पांचवें दिन दिन गए इंगमा जो कि 4 प्रकार की दाल को आटो कोई अच्छा। सी भी 4 प्रकार की दाल ले लियो चना उड़द मूंग
1: दिन में कौन मिलानी
0: एक दिन में कौन पांचवें दिन दाल मिलानी है
1: ठीक है
0: और मिला गए और बीहू बाद में 10 दिन तक और इन्हें रख लियो सुबह शाम घुमाणो क्लोक वाइज और ढक के रखना कपड़ों बोरियों और परछाइयां रखे
1: ठीक है
0: तो आज की तैयार होगी आ एक बहुत शक्तिशाली 6 एलिमेंट्स तैयार हो जाएगा।
1: हाँ।
0: बड़ो शानदार तरीका
1: ओ फिर खेत में किया दे जैसी
0: ओ पानी का सागा भी तिरा सका आप बिघे को 3 लीटर और आप फसल के ऊपर 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव भी कर सका।
1: अच्छा कीट पतंगा और हरी बीमारी अगर मान लो खेत में आ जाए
0: आप
1: ये सारे तो दे दिया है तो चलो खाद है
0: बिल्कुल
1: और फिर स्प्रे वगैरह करना उसी तो के
0: हाँ स्प्रे खातर जी अगर मच्छर तेलो आवे
1: अच्छा
0: रस चूस से कीट जका कम आप
1: हाँ।
0: बे अगर आवे तो 10 लीटर गौमूत्र 2 किलो नीम 1/2 किलो दतूर और 1/2 किलो आंकड़ो इन एक ड्रम में भिगो के रखे किन्नमन क्रिया कर लिया सड़ा लिया सुबह शाम डंडो घुमावे ढक के रखे 20 दिन में आ गर्मी पड़े इनमें तैयार हो जाए।
1: ठीक है
0: अगर आप जल्दी है तो इन उबाल के भी तैयार कर सका 8-10 उबाला दे के भी तैयार कर सका और फिर इनको जो लिक्विड बने हुए इन्हें छान गे और 20 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप फसल पर छिड़काव करांगा तो रस चूस से कीटों अपनों बचाव हो जाएगा।
1: और दूसरी को लट वगैरह सुंडी वगैरह वास्ते
0: इन खातर भी तैयार कर सका इंग हम 10 लीटर गौमूत्र 2 किलो नीम 1/2 किलो दतूरो 1/2 किलो आक 50 ग्राम हरी मिर्च 50 ग्राम लहसुन और 300 ग्राम तुम्बो आ चीजा ने भी किन्वन क्रिया कर लिया सड़ा लिया इन गौमूत्र के सागे और ओ यूज कर लिया।
1: अच्छा ठीक है
0: और इन्हें भी 20 दिन बाद में सड़ने के बाद में 15 ml प्रति लीटर के हिसाब से लट सुंडी कीड़ो अपन दिखो बी टाइम में इनको यूज करे बहुत बढ़िया परिणाम।
1: तो कानाराम जी लट सुंडी और एज का कीट है ये तो अपन दिख जाए और कई बार फंगस हुए कोई बैक्टीरिया लग जाए तो पत्ती में पतो कौन लगे बी में क्या करे फिर किसान
0: देखो फंगस 3 तरीके है
1: अच्छा
0: लाल धोली और काली जकी बोल रहे
1: ठीक है
0: और बा पत्ते पर आवेगी तो पत्ते को कलर बता

0: देगो, पत्तो सड़न लाग जाएगो, रे जड़ में लागेगी तो पौधो सूखने लाग जाएगो,
1: ठीक है।
0: जड़ ना आप पटके देखा तो कठी काला निशान होसी, कठी पिल पिली होगी। मतलब
1: ठीक है।
0: तो बी खातर अपने घरे ही वो बहुत बढ़िया उपचार है, जिको प्राकृतिक और थारे जकी बोला नेचुरल खेती, इनमें भी बताई जाए छाछ जकी है खट्टी लस्सी,
1: अच्छा।
0: इनको बड़ो शानदार उपयोग आप में कर सका। इन्हें भी अगर सीधी 10-5 दिन पुरानी खछा है बा भी छिड़क सका आप 25-30 ml प्रति लीटर के हिसाब हूँ, और इन्हें अगर पावरफुल शक्तिशाली बनानी है तो 10 लीटर छा के अंदर 1.5 किलो गुड़ और थोड़ो कोई तांबे को टुकड़ो और 1 चम्मच हल्दी, इन आप 5 दिन एयर टाइट करके रख दो छाया
1: ठीक है।
0: भर के, और 5 दिन बाद में इन्हें निकाल के 20 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करांगा तो किसी प्रकार की फंगस है बिंगो इलाज बहुत शानदार तरीकों आप कर लेंगा।
1: लगभग जी की आपने हरी बीमारी भी सारी बता दी,
0: जी
1: और एक मान लो दिमक भी आ जाएगा रे कई बार,
0: हाँ
1: बिगो भी कोई इलाज है क्या
0: बिल्कुल, दीमक
1: बताओ।
0: गो इलाज है, बहुत सरल तरीकों हैं। दीमक गो इलाज है जी, अगर आप खेत में कच्चो कचरो दियोगा जी, या पर्याप्त मात्रा में देना शुरू कर दियोगा तो दीमक पौधा ने कदे नुकसान कौन करे, क्योंकि वह मित्र कीट बतावे।
1: थे वो कह
0: पर
1: रहे कि
0: अगर
1: जो
0: वो आ
1: कचरों
0: भी
1: को मिट्टी
0: गयो
1: में मिला दो।
0: बिल्कुल, अब जिया सरसों को गुणो है आजकल बेचण लाग गया तो दीमक ने बेचारा ने कच्चो सामान चाहिए सूखो चाहिए, वो तो अपना खेत में छोड़ो को नहीं तो बत तो बेचारी सीधी फसल पर ही अटैक करेगी, आपको जीवन बचाना है बने ओ मिल गयो तो वह पौधा ने नुकसान कौन कर सी, आधो ध्यान बिंगो बिना उड़ जी। पर अगर बाई चांस आ भी गई तो फिर बिंगो इलाज है कि 100 लीटर पानी के माँ अगर 50 ग्राम हींग बढ़िया वाली ले गए
1: अच्छा, हींग।
0: हाँ, और ई पानी ने आप तैयार कर लियो, और ई पानी को अगर आप छिड़काव करांगा ड्रेंचिंग करांगा, मतलब थोड़ी नमी है जमीन के अंदर और वो पानी लिंदे और भी जमीन के ऊपर अगर आप ड्रेंचिंग कर दी,
1: ड्रेंचिंग मतलब
0: मतलब जमीन गिल्ली है
1: हाँ,
0: पौधा सारा सारे इन ढोलकी में गाल
1: अच्छा
0: गयो पानी
1: ढोलकी में डाल
0: छिड़कनो
1: दी, स्प्रे कर दियो।
0: जी, जड़ का सारा स्प्रे करनी तो बिंगो दीमक को 10-12 दिन खाता दीमक बिंग स्मेल के कारण सुगंध के कारण है वहाँ
1: नीचे
0: बैठो हट जाएगी
1: नीचे चल जाएगी।
0: बिल्कुल सा
1: तो थारा कहना मतलब वो है कि अगर पहला उन जो कचरो रखांगा तो बीम बढ़ेगी तो कौन दिमाग
0: ना,
1: है
0: बिल्कुल कौन बताएगा,
1: काल नहीं हो कि बेना बहुत खाना मिल गया तो बांगे
0: नहीं
1: सब्जी
0: नहीं
1: बढ़ती
0: नहीं
1: जाए।
0: नहीं फिर इंगा और भी प्राकृतिक इलाज है,
1: अच्छा।
0: अगर बा और ज़्यादा बदन लाग रही है नहीं लगा आप यूं कंट्रोल कौन हुई तो फिर भी प्राकृतिक तरीका है जहाँ दीमक ने सबसे ज़्यादा सफेदे की लकड़ी पसंद है तो
1: अच्छा।
0: आप 20-20, 50-50 फुट पर सफेदे की लकड़ी रेड दें डोली पर और तो बाद दीमक बिना
1: ये
0: चाल
1: तो
0: जाएगी
1: देसी इलाज अपना किसान
0: हाँ
1: करे भी करे।
0: बिन करे करे बा चक के रेड दी। दूसरों आप मक्की खाने के बाद में जो शेष बच जाए बूटा को लकड़ी बच जाए जिकी बूटे की मक्की खाने के बाद है वो हांडी कोई रूई हांडी है भी मैं गाल लियो और बिंग तड़े का थोड़ो सा ऊपर मोरा काट दिया बिना जुगतियों
1: ठीक
0: और
1: है।
0: बिंग माँ रख दी तो दिमक बिंग माँ जगी पा हांडी चक के बारह धोगे और पाछी ले आगे रख दियो और फिर बूटो गाल दियो फिर वा वापिस भी माँ जगी तो दिमक को वो इलाज भी आप बढ़िया तरीकों कर
1: ठीक है,
0: सका।
1: सही बात है। तो कान्हा राम जी थे, बहुत ही बढ़िया बात बताई हमारा किसान भाई जी का भी सुनने लग रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आशा करा कि किसान भाई इन्हें जैविक अपनावेगा, और आपका खेत में, आपका पड़ोसियां गए, आपका
0: बिल्कुल
1: भाई गए, आपका गांव में,
0: जी
1: सब जगह लोगों ने प्रेरित कराएगा
0: जी
1: कि जैविक खेती करें। धन्यवाद थे हमारे स्टूडियो में आया और इतनी बढ़िया बात मैंने बताई।
0: जी धन्यवाद।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: संदेश सुनियो, संदेश सुन पहला सुनी बातचीत कान्हा राम जी भुआल शू, बातचीत करा नवीन सिसोदिया जी। अब आप एक गीत सुन लिया, फिर करांगा खेतीबाड़ी पर बातचीत।

0: या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सुनियो गीत, किसान भाइयों, आपनो क्षेत्र जी को है वो ग्वार की बीजान तलो क्षेत्र है, क्योंकि कठन कटे बरानी खेत भी ज़्यादा है, बिया तो नहरी के अंदर भी ग्वार जी को है वह बहुत सा किसान भाई करे, क्योंकि आ जी की फसल है आ सुखो सहन करने वाली फसल है और वर्षा आधारित फसल है, तो इनमें पानी की जी की जरूरत है वह बहुत ही कम होए, ज़्यादा सिंचाई की जरूरत होवे को नहीं, क्योंकि अब बीजांत होगी तो आप जल प्रबंधन वास्ते विशेष ध्यान रखा कि जिका किसान भाई गुआर बीजी ने हफ्ता दो हफ्ता हो गया वह पानी जरूर लगावे, और दूसरी सिंचाई जी की है वह सितंबर महीने में कर देनी चाहिए, ताकि दो सिंचाई जी की है वह कम से कम गुआर की फसल जी की है वह मंगे। विशेष तौर से ध्यान रखा आप खरपतवार प्रबंधन को, गुआर की फसल में खरपतवारों को जी को समय से निरंतर अगर नियंत्रण नहीं करा पा तो अपनी बढ़िया पैदावार में बाधक बने बा, क्योंकि खरपतवार खाली पोषक तत्व और पानी वास्ते प्रतिस्पर्धा करे बल्कि रोगों ने भी बढ़ा देवे, तो रोग ना बढ़े और आपने बुनते ने पूरी पोषक तत्व मिले, पूरा पानी मिले, इन वास्ते खरपतवार को प्रबंधन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। रासायनिक

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं। स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आपने तई दो मंडियां का बाजार भाव भुगता हुआ है। आज सुरतगढ़ मंडी में जो जी की है वह बिकी है 2100 रुपया, चीने का नीचे का भाव रहा 5386 रुपया, ऊपर में बिकी 5451 रुपया। सरसों का भाव नीचे में रहा 6798 रुपया और ऊपर में बिकी 7248 रुपया। ग्वार 5300 ले गए 5400 रुपया तई बिकी। इनके अलावा गंगानगर मंडी में आज कणक का भाव रहा 2425 ले गए 2460 रुपया तई। चीनों बिक्यो 5250 ले गए 5470 रुपया तई। सरसों का नीचे का भाव रहा 6970 रुपया और ऊपर में बिक्यो 7451 रुपया। ग्वार बिकी 5520 ले गए 5750 रुपया तई। जो बिक्या 2110 ले गए 2310 रुपया। ऐ हा मंडियां का बाजार भाव। सुन लें एक और गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए कुछ फिल्मी गाने सुनिए। पहले सुनिए शकील बदायनी का लिखा ये गाना, तर्ज बनाई रवि ने। फिल्म है घराना।

अभी आपने शकील बदायनी का लिखा गाना सुना, धुन रवि ने बनाई, फिल्म घराना के लिए आवाज थी मोहम्मद रफी ने। लीजिए इसी आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा गाना सुनिए, धुन बनाई शंकर जयकिशन ने और फिल्म है जवां मोहब्बत।

0: बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है, मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 8 बजे हैं, लीजिए कार्यक्रम सुनिए एक ही फिल्म से।

श्रोताओं, अभी आपने लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना सुना, धुन रोशन ने बनाई। जी हाँ, हमारे आज के कार्यक्रम की फिल्म ममता, ममता के गाने सुनेंगे।

0: लेकिन कुछ संदेशों के साथ।
1: बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
6: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप 1966 में रिलीज हुई फिल्म ममता के गाने सुन रहे हैं। ममता असित सेन की फिल्म, कहानी निहार रंजन गुप्ता की, संवाद कृष्णचंद्र की, मुख्य भूमिका में अशोक कुमार, धर्मेंद्र, सुचित्रा सेन और डेविड। गाने फिल्म के मजरू के, धुन रोशन की, आवाज इस गाने के लिए आशा भोसले और मोहम्मद रफीक की। सुनिए।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: श्रोताओं, आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम के लिए हमारी आज की फिल्म ममता, जिसके गाने मजरून लिखे, धुन रोशन ने बनाई। आइए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना सुने।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट और हर मैदान की खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक आज के मुख्य समाचारों के साथ। भारत ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया। भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराया। मीनाक्षी हुड्डा, स्नेह प्राची और निखिल विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में आज चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया।

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के महासंग्राम से, जो कि इंग्लैंड और लीड्स में चल रहा है। भारत ने आईसीसी टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप में अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड्स पर 95 रन की विशाल जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही हरमनप्रीत कौर की विमेन इन ब्लू ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गई है।
1: Sprinting forward, what a spectacular catch from Jemmy Rodrigues to wrap up the affairs this afternoon. 50 over champions march ahead in their T20 campaign with another clinical showing.
2: Harmanpreet Kaur की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप में लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की। पहले मैच में पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए लीड्स के हेडिंगले में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया। यह महिला T20 विश्व कप में रनों के अंतर से भारत की सबसे बड़ी जीत है। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दी। दोनों खिलाड़ियों ने 115 रन की साझेदारी की। शेफाली 38 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुई, जबकि स्मृति ने पहले मैच की फॉर्म जारी रखते हुए 47 गेंदों में 74 रन बनाए। मैच के बाद उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि वह शेफाली के साथ बल्लेबाजी को काफी एंजॉय कर रही हैं।
3: We enjoy batting with each other quite a lot. With Shifu, you know, you have to be on toes with her. You have to keep telling her that don't complicate anything, just watch the ball. With the talents of what Richa and Shefali, they feel like trying to hit every ball for a six, which is very fair.
2: इसके बाद अंत में दीप्ति शर्मा ने 2 गेंदों में 10 रन बनाए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आई। टीम के साथ खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। पूरी टीम 17.5 ओवर में 114 रन पर सिमट गई। कप्तान बेबेट डी लीडे ने सर्वाधिक 28 और हीतर सीगर्स ने 21 रन जोड़े। भारत के लिए श्रीचरणी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि शेफाली वर्मा ने 3 और नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट अपने नाम किए। मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा, सुनते हैं।
3: आई थिंक वी वर रियली गुड विद द बैट। इट वाजंट दैट इजी विकेट, बट आई थिंक द वे स्मृति एंड शेफाली बैटेड, दे यू नो गिव अस अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम द वे दे बोथ बैटेड टुडे।
2: अब भारतीय टीम का अगला ग्रुप मुकाबला 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से खेला जाना है, जहां भारतीय टीम की नजर जीत दर्ज करते हुए अपनी सेमीफाइनल की राह आसान करने पर होगी। स्पोर्ट्स कैन प्राची वाजपेयी।
0: और अब विमेंस टीम के बाद बात की जाए

0: शुभमन गिल एंड ब्रिगेड की। भारत ने कल अफगानिस्तान को 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में 170 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाकर ये सीरीज अपने नाम कर ली है। सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
1: By the bowlers, now Shubman Gill, his 900 in ODI cricket, been phenomenal with the bat. Ishan Kishan, his second 100 in ODI cricket.
2: धर्मशाला में पहला एक दिवसीय जीतने के बाद शुभमन गिल की मैन इन ब्लू ने लखनऊ में भी अफगानिस्तान पर एक शानदार जीत दर्ज की। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल का दिन कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन के नाम रहा। भारत के इन दोनों बल्लेबाजों ने कल अपने बल्ले से न सिर्फ मैच में बल्कि सीरीज में भी भारत की जीत पक्की कर दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्द ही गिर जाने के बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मजबूत स्थिति मिलाने में मदद की। हिटमैन रोहित शर्मा कल अपने रंग में नजर आए और उन्होंने 39 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मेहमान टीम के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। इन दोनों खिलाड़ियों ने शतक पूरा करते हुए 224 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारत को 320 के स्कोर तक पहुंचा दिया। शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने अपने एक दिवसीय करियर का 9वां शतक पूरा किया। कप्तान गिल ने 110 गेंदों पर 2 छक्के और 22 चौकों की मदद से 154 रन बनाए। दूसरे छोर पर ईशान किशन ने 79 गेंदों पर 7 छक्कों और 14 चौकों की मदद से 125 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि इसके बाद आए भारतीय खिलाड़ी कुछ बहुत खास नहीं कर सके और टीम ने इस मजबूत शुरुआत की बदौलत 402 रन बनाए। ये 8वां मौका था जब भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट में 400 रन का आंकड़ा पार किया। भारत अब दक्षिण अफ्रीका के बराबर पहुंच गया है जिसने सर्वाधिक 8 बार 400 रन का आंकड़ा पार किया है। इस विशाल लक्ष्य के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम फिर एक बार भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती नजर आई और 45वें ओवर में 232 रन पर ही सिमट गई। मेहमान टीम के लिए रहमत शाह ने सर्वाधिक 79 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। अपना पहला मैच खेल रहे प्रिंस यादव के हाथों 2 सफलता लगी। अपना डेब्यू करने पर प्रिंस ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है।
3: जब भी कोई क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है तो वो ड्रीम यही करता है कि इंडिया के लिए खेलूंगा, इंडिया की जर्सी पहनूंगा। डेब्यू किसी भी प्लेयर के लिए अच्छी बात है, बट ये है कि मैं अपनी टीम के लिए परफॉर्म करूं, अपनी टीम को जिताऊं।
2: शानदार शतकीय पारी के लिए शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात हॉकी के मैदान की, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने देश का झंडा बुलंद किया है। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने हॉकी महिला नेशंस कप में अपने आखिरी पूल मैच में उरुग्वे पर 3-2 की जीत दर्ज की।
4: सबसे पहले बात FIH हॉकी प्रो लीग 2025-26 की, जहां भारतीय पुरुष टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराया। भारत के मनदीप सिंह मैच के साथ में शिलानंद लाकड़ा ने 13वें और नीलकांत शर्मा ने 35वें मिनट में गोल दागा। इस मुकाबले में भारतीय टीम का डिफेंस भी काफी मजबूत नजर आया। मिडफील्डर हार्दिक सिंह को मिडफील्ड में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने शुरुआत से ही जर्मनी पर दबाव बनाए रखा। इसका फायदा 7वें मिनट में मिला जब मनदीप ने गोल के सामने एक तेज टर्न से गोल करके भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद लाकड़ा ने 13वें मिनट में एक शानदार स्ट्राइक से स्कोर 2-0 कर दिया। दूसरे हाफ में 35वें मिनट में नीलकांत शर्मा ने गेंद को गोल में डालकर भारत की बढ़त 3-0 कर दी। जर्मनी के राफेल हार्टकोफ ने 45वें मिनट में गोल करके स्कोर 3-1 कर दिया। आखिरी क्वार्टर में जर्मनी ने गोल करने के कई मौके बनाए लेकिन भारत ने उन्हें नाकाम कर दिया और मुकाबला 3-1 से अपने नाम कर लिया। इस मैच के साथ ही मनप्रीत सिंह भारत की से सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने दिलीप तिर्की के 412 मैचों के रिकॉर्ड को तोड़ा। 413 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले मनप्रीत अब पुरुषों की ऑल टाइम इंटरनेशनल कैप में 5वें स्थान पर है। दूसरी तरफ भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी महिला नेशंस कप में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए आखिरी पूल मैच में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। शुरुआत में एक गोल खाने के बाद भारत ने जोश और संयम दिखाते हुए वापसी की। दीपिका ने 24वें और 56वें मिनट में 2 गोल किए जबकि दीपिका सोरेंग ने गोल किया। इस जीत के साथ भारत ने लगातार 3 जीत हासिल करके पूल ए में शीर्ष स्थान पक्का कर लिया। ये मैच मिडफील्डर नेहा के लिए भी खास मौका था जिन्होंने अपना 200वां सीनियर इंटरनेशनल मैच खेला।

0: भारत अब पूरे आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में उतरेगा और FIH नेशंस कप का खिताब जीतने तथा FIH प्रो लीग में वापसी करने की अपनी कोशिश जारी रखेगा। 20 जून को होने वाले सेमीफाइनल में उनका मुकाबला चिली या कोरिया से होने की संभावना है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात फीफा की, जहां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में कोलंबिया ने आज उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया, जबकि घाना ने पनामा को 1-0 से और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 से जीत दर्ज की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा।

0: और टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। 32वें मिनट में लुइस डियाज के शानदार मूव को डेनियल मोनोज ने बेहतरीन गोल में बदलकर कोलंबिया को 1-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ के अंत तक कोलंबिया का दबदबा बना रहा, वहीं दूसरे हाफ में उज़्बेकिस्तान ने जोरदार वापसी की। अब्बोज़बेक फैजुल्ला एव ने हेडर लगाकर शानदार गोल दागा। इस गोल के साथ ही स्कोर 1-1 से बराबर हो गया। कोलंबिया ने तुरंत पलटवार किया। स्टार खिलाड़ी लुइस डियाज ने नीचे की तरफ बेहतरीन शॉट लगाते हुए कोलंबिया को 2-1 से शानदार बढ़त दिला दी। मैच के अंतिम मिनटों में कैंपाज ने शानदार हेडर के जरिए गोल कर कोलंबिया की जीत पक्की कर दी। एक अन्य मुकाबले में ग्रुप एल में घाना ने कालेब येरंकी के अंतिम क्षणों में किए गए गोल की बदौलत पनामा को 1-0 से पराजित किया। दोनों टीमों ने गोल के कई प्रयास किए लेकिन वे नाकाम साबित हुए। मैच के अंतिम क्षणों में कालेब येरंकी ने अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल करते हुए घाना को 1-0 से जीत दिलाई। वहीं तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने फीफा विश्व कप 2026 का जीत के साथ आगाज किया। डलास स्टेडियम में हुए ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से शिकस्त दी। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया तो 12वें मिनट में ब्रिटेन को मिली पेनल्टी को हैरी केन ने गोल में तब्दील कर टीम की 1-0 की बढ़त पक्की की। इसके बाद क्रोएशिया ने मार्टिन बटुरिना के शानदार गोल की बदौलत वापसी करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। ब्रिटेन ने एक बार फिर पलटवार किया और कॉर्नर किक पर हैरी केन ने बेहतरीन हेडर लगाकर अपना दूसरा गोल किया और इंग्लैंड को 2-1 से आगे कर दिया। पहला हाफ खत्म होने से पहले मूसा ने गेंद को गोल पोस्ट में डालकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में ब्रिटेन अलग ही अंदाज में मैदान पर उतरा और खेल शुरू होने के केवल 2 मिनट के अंदर जूड बेलिंगहैम ने शानदार व्यक्तिगत प्रयास करते हुए गोल दागा। इसके बाद मैच के अंतिम पलों में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड ने गोल करते हुए स्कोर 4-2 किया और ब्रिटेन की जीत पर मोहर लगा दी। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब रुख करते हैं चीन का, जहां पर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही है। मीनाक्षी हुड्डा ने आज इस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने 51 किलोग्राम वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में पोलैंड की नतालिया कुचेस्क्वा को 5-0 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में कल 4 भारतीय खिलाड़ी अपना मुकाबला खेलेंगे, जिसमें 51 किलो में मीनाक्षी, 65 किलोग्राम वर्ग में स्नेह, 57 किलोग्राम वर्ग में प्राची रिंग में उतरेंगी। वहीं पुरुषों में निखिल 55 किलोग्राम वर्ग में चुनौती रखते नजर आएंगे। वहीं मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चाहिला महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और अब बात स्टार जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की, जो कि एक लंबे इंतजार के बाद कल से कतर में शुरू हो रहे दोहा डायमंड लीग 2026 में मैदान पर नजर आएंगे। ये नीरज का इस एथलेटिक सत्र में पहला मुकाबला है।
2: ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट कंपटीशन फॉर द सीजन, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई फील रियली गुड, आई फील फिट एंड लेट्स सी टुमारो। आई एम वेटिंग फॉर टुमारो।
3: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा कल रात डायमंड लीग के दोहा में मैदान पर उतरेंगे। इस स्टार खिलाड़ी ने 2023 में दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर के साथ खिताब अपने नाम किया था। 2024 में 88.36 मीटर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया था और पिछले वर्ष नीरज ने इसी मैदान पर 90 मीटर का आंकड़ा पार कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि उन्हें 90.23 की दूरी प्राप्त करने के बाद भी रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। नीरज चोपड़ा बीते कुछ समय से स्विट्जरलैंड में ऑफ सीजन प्रशिक्षण शिविर में पीठ की चोट से उबर रहे थे। भारत का यह स्टार भाला फेंक खिलाड़ी आखिरी बार पिछले वर्ष सितंबर में टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मैदान पर उतरा था। ऐसे में लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे नीरज के लिए मैदान पर कड़ी चुनौती इंतजार कर रही है। वर्तमान विश्व रिकॉर्ड धारक श्रीलंका के रोमेश पथिरागे इस लीग के लिए तैयार हैं। पथिरागे ने इस महीने की शुरुआत में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का शानदार थ्रो किया था। त्रिनिदाद और टोबैगो के मौजूदा विश्व चैंपियन केशॉर्न वॉलकॉट, ग्रेनाडा के पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स और केनिया के जूलियस योगो भी शामिल हैं। ऐसे में कल सभी को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो सबको उम्मीद होगी कि कल दोहा में एक शानदार मुकाबला भारतीयों का इंतजार कर रहा हो। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह की आज पुण्यतिथि है। देश विदेश के लोग इस महान धावक को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की उम्र में 18 जून 2021 को निधन हो गया था। फ्लाइंग मिल्खा सिंह को भारत में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जाना जाता है। मिल्खा सिंह ने भारत का 3 ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व किया था और खासकर याद किया जाता है 1960 में 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ी गई उस दौड़ को, जहां एक सेकंड से भी कम अंतर में ये खिलाड़ी भारत के लिए पदक लाने से चूक गया था।

0: लेकिन भारत के लिए कई कीर्तिमान अर्जित किए इस खिलाड़ी ने। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें sportscan@air.gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: एआई मस्ट इम्प्रूव लाइफ, वाइडन एक्सेस, ड्राइव ग्रोथ एंड ऑल्सो हेल्प अस सस्टेन अ हेल्दी प्लेनेट। Our participation at the AI Country Partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री

भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के

0: बारामूला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
1: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खराब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते

0: second time within a week, and Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. That's all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर। रात के 9:15 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम सुनिए सुगम संगीत। पहले सुनिए सागर सिद्दकी की ये गजल गुलाम अली की आवाज में, कि आज रूठे हुए साजन को बहुत याद किया, अपने उजड़े हुए गुलशन को बहुत याद किया।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने गुलाम अली की आवाज़ में चंद गज़लें सुनी। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़ है, मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। रात की 9:30 हुए हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इनसाइट प्रोग्राम होगा।
1: कंट्री वाइड ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: श्रोताओं, पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी थी। देश में रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण योजना के तौर पर उभर कर सामने आई है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने EPFO के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की थी, जिसे लगभग 1,00,000 रुपए के कुल बजट के परिव्यय से शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में 2 साल के अंदर करीब 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएं। अगर कहा जाए कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें रोजगार देने पर या रोजगार प्राप्त होने पर एक तरह से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस संदर्भ में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इस योजना का तथ्य है। और हम आज कार्यक्रम में इस योजना के संदर्भ में एक विशेष चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें पहली बार इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा रही है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, और साथ में हम इस कार्यक्रम में ऐसे लाभार्थियों से जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, साथ ही जिन कंपनियों ने रोजगार दिया है उनके उन नियोक्ताओं से भी हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को, कि 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार को पैदा करने का जो इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है?
3: सच्चाई ये है, समाज में इसकी जरूरत थी कि सरकार की ओर से आप ऐसा कुछ करें कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसके लिए आगे बढ़े कि भाई हमें नौकरी देनी है लोगों को। तो उस दिशा में जब ये सरकार ने सोची और बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी और उसके लिए फिर पूरी तैयारी हुई, कल पहली बार 2400 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी थी। ये पहली किस्त है क्योंकि अदरवाइज तो ये कुल बजट इसका करीब करीब 1,00,000 करोड़ है, 99 लाख समथिंग कुछ इस तरीके से इसका है। तो वो चीजें पहली किस्त जा रही है। और आपने ये बात जो कही कि आप कुछ ऐसे लाभार्थियों से भी बात करेंगे और कंपनियों से भी बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि जो औपचारिक नौकरी पाने वाले जो युवा हैं उसके इसमें जो है 2 किस्तों में 15,000 रुपीज तक की कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो दी जाएगी। और इससे जाहिर तौर पर कंपनियों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए एक असिस्टेंट सरकार की ओर से मिला, हम लें, उनको भी जरूरत है। देखिए आज के दिन क्या है, अब जब फिर से वर्ल्ड ओपन अप होने वाला है, बहुत अच्छी बात हो गई कि वेस्ट एशिया क्राइसिस भी खत्म हो गया। अभी देखिए एक बार भी बहुत तेजी से काम भी बढ़ेंगे, कंपनियों के लिए भी बहुत काम आने वाला है हर क्षेत्र में, उसमें सरकार की ओर से ये मदद भी जब जाएगी तो और एक अच्छा माहौल बनेगा
2: निश्चित तौर पर। और इससे पहले कि हम एक लाभार्थी को जोड़ें, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस योजना में जो रोजगार पाने वाले की मासिक अधिकतम जो सैलरी है वो 1,00,000 तक रखी गई है, यानी हम देखें तो इस योजना के तहत रोजगार पाने वाला एक बड़ा मध्यवर्ग भी स्थापित होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से इसमें जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है कि जो EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में 1,00,000 रुपए तक की मासिक सैलरी या वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको ये लाभ मिलने वाला है,
3: कि 1,00,000 तक के किसी को नौकरी मिल रही है, बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है।
2: बिल्कुल।
3: दूसरी तरफ देखिए कि इस 1,00,000 से जोड़ते हुए सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बजट में 12,00,000 तक रुपए तक के ये जो है सो टैक्स फ्री
2: किया था। बिल्कुल,
3: ये देखिए ये दोनों चीजें जोड़ती हैं कि 1,00,000 रुपए वेतन पाने वाला एक युवा जिसकी कि समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरीके का आकांक्षी समाज है, उसमें 1,00,000 रुपए में बहुत सारी चीजें उसे जुटानी होती है। तो उस पर सरकार की ओर से एक्स्ट्रा भार न पड़े तो उसको टैक्स फ्री किया गया, कंपनियों को ये राहत दी गई कि आपको हम मदद करते हैं इसमें। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा

0: स्ट्रक्चर हुआ है आज के।
1: बिल्कुल, जुड़े रहिए आशुतोष जी। एक लाभार्थी को हम शामिल करते हैं, अमन त्रिवेदी जो एक डेटा इंजीनियर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अमन जी स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: अमन जी अपना अनुभव बताएं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आपको किस तरह से लाभ मिला है, और थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में भी बताएं, किस तरह से आप एक EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और कैसे आपको इस योजना का प्रोत्साहन मिला है।
2: अगर सबसे पहले बात करें कि मुझे लाभ कैसे मिला है, तो उसमें सबसे पहले बात करें तो कंपनीज जो है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको सबसे पहले तो इंसेंटिवाइज करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप फ्रेशर्स जो होते हैं, जिनका पहली बार EPFO का अकाउंट खुला है, उन्हें
1: हाँ
2: हायर करिए।
1: बिल्कुल,
2: तो मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं इंजीनियरिंग करा हूँ, राइट, मैं और अभी मैं एज ए डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था कि इंटरव्यू से पहले ही आपसे पूछते थे एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नहीं इंटरव्यू होगा, तो स्किल सेट पे बात ही नहीं आती थी। अब एज ए फ्रेशर भी मौका मिलेगा बहुत लाखों करोड़ों युवकों को कि एटलीस्ट इंटरव्यू तक जा तक इंटरव्यू में जाए और बता पाए कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी है और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में। और बात करें तो जैसे कि जो 15,000 रुपये की राशि जो इम्प्लॉयज को भी दी जा रही है, वो दो टाइप, या तो वो कुछ 6 महीने बाद जो 7,500 और उसके 6 महीने बाद वापस 7,500। सो मेरा मानना है कि वो कुछ के लिए रिवॉर्ड है और कुछ के लिए मोटिवेशन है, वो कि कॉरपोरेट में गए हैं जो एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय 6 महीने में, उसके बाद जो ये राशि आती है वो एक रिवॉर्ड लगता है कि ये मेरे लिए एक नया कदम था और इसके साथ एक रिवॉर्ड मिला है। तो और वर्कफोर्स में इसके बाद मैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा दिख रही है और ज्यादा दिखेंगी। तो आई थिंक जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी ये योजना जो है ये बहुत मददगार साबित हुई है यंग जनरेशन के लिए। उस हिसाब से बहुत यंग एज के अंदर भी एक इस कॉरपोरेट के अंदर घुसने में भी बहुत मदद की है इस योजना ने मेरी और लाखों युवाओं की।
1: आशुतोष जी आपको मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा, और कि इस योजना के तहत नए लोगों को सामने लाने का मौका मिलेगा जो रोजगार की तलाश में है, और इसमें जैसे कंपनी और नियोक्ताओं के लिए भी ये शर्त है कि अगर 50 कर्मचारियों से कम संख्या की कंपनी है तो उन्हें दो नए लोगों को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 5 नए लोगों को हायर करना होगा। यानी जो नियोक्ता हैं उन पर फोकस है कि वो नए लोगों को रोजगार दें। किस तरह से इस दिशा में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जो फ्रेशर्स हैं, और जैसा कि अमन जी ने भी बात की, जो स्किलफुल लोग हैं वो सामने आए।
0: अब क्या है कि दो इसके पहलू देखिए इस योजना के। 1 लाख रुपए तक के लिए ये है जो किसी यूथ को मिलता है, उसमें सरकार इस योजना में लेकर के आई है। दूसरी तरफ जो फर्स्ट टाइम EPFO में एनरोल हो रहे हैं, अब आज के दिन आप थोड़ी सी अगर पीछे थोड़ा पीछे घूम कर देख लें तो आप देखेंगे कि इतनी कितनी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल फ्रेशर आ रहा हो और उसे सीधे 80,000, 90,000, 1 लाख रुपये मिल रहा नहीं। ये यहाँ पर आप जो है सो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि कंपनियां जो हैं, और उसमें आपने ये बात भी कही कि 50 से कम है तो दो और उससे ऊपर है तो कम से कम 5 की जो बात है वो एक लिमिट भी डाल करके, क्योंकि कंपनियां भी दोनों चीजों से चलती है, एनर्जी के साथ भी चलती है, अनुभव के साथ भी चलती है, तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन उस बीच में फ्रेशर्स के लिए जो नए युवा आ रहे हैं स्किल लेकर के, उनको कैसे एक मौका मिले उसके लिए माहौल बने।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं नीलेश वर्मा जी को भी शामिल करना चाहूंगा, जिन्होंने रोजगार को लेकर एक अपनी कंपनी में भी इस योजना के तहत रोजगार देने में मदद की है। नीलेश जी स्वागत है आपका, अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें पूरा, और साथ ही इस योजना को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया अपने लिए, इसके बारे में भी बताएं।
3: धन्यवाद। मेरा नाम नीलेश वर्मा है। आई एम वन ऑफ दी को फाउंडर ऑफ IntelliDB एंटरप्राइज। वी आर वन ऑफ दी प्रीमियम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन जो AI के तहत एंटरप्राइज डेटाबेस में काम कर रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी हायरिंग थी, और हायरिंग के साथ साथ लोगों को रिटेन करना था, बिकॉज हायरिंग वॉज वन पार्ट एंड रिटेंशन वॉज दी अनदर पार्ट। जितने भी न्यू ब्लड हैं आज की डेट में, नए लोग हैं जो कॉलेज पास आउट हैं, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स, द प्रॉब्लम विद दीज फ्रेशर्स वर देयर रिटेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे ऑलवेज लुक एट मनी ओवर दी करियर। मोस्ट ऑफ देम, आई वुड नॉट से ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम दे लुक एट हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लुकिंग एट देयर करियर मोर रादर देन स्टिकिंग टू एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली जब से ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू हुई है, इससे हमारे जैसे एम्प्लॉयर्स को काफी बेनिफिट मिला है इन टर्म्स ऑफ यू नो हायरिंग दी राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत

0: ही फोकस्ड अप्रोच है और इसको मैं आई एम ग्रेटफुल टू द ईपीएफओ एंड द पीएम ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोलिंग दिस आउट। हालांकि इस योजना के बारे में आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो आई बीइंग एन एम्प्लॉयर आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कपल ऑफ मंथ्स अगो, बट मैं इसके बारे में और डीप जानना चाहूंगा, अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी लेवरेज इट टूवर्ड्स द यंग जनरेशन एम्प्लॉयमेंट।
1: बिल्कुल। तो

0: इस योजना से आगे आने वाले समय में एक बहुत स्किलफुल वर्कफोर्स आपको मिलने वाली है, और जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उससे भी कैसे अट्रैक्ट होंगे आजकल के जो यूथ हैं वो इस योजना के जरिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टैलेंटेड पूल हमारे सामने आ पाए।
1: जी। सो मेरे लिए इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है फॉर द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, यह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म है। एंड इट एक्चुअली इनकरेजेस कंपनीज टू क्रिएट मोर जॉब एंड इट इनकरेजेस यंग प्रोफेशनल टू एंटर इनटू द फॉर्मल वर्क फोर्स विद कॉन्फिडेंस। जब सरकार रोजगार देने वाले संस्थानों को समर्थन देती है तो उसका प्रभाव केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहता है। इट एक्चुअली क्रिएट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स अक्रॉस फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड द ब्रॉडर इकोनॉमी। एवरी न्यू एम्प्लॉय सपोर्ट्स अ हाउस होल्ड एंड एवरी हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द कंजम्पशन एंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स अ नेशन बिल्डिंग। तो बेसिकली जितने भी नए रोजगार को हम प्रोत्साहन देते हैं, अलग अलग योजनाओं को के तहत सरकार हमें इंसेंटिव देती है एज एन एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉयर, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की कॉन्ट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है।
0: बिल्कुल आशुतोष जी, आपसे अब मैं जुड़ना चाहूँगा। कुछ आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस योजना से संबंधित, जैसे जो कुल रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत अब तक हुआ है कर्मचारियों का, जो नए कर्मचारी जुड़े हैं लगभग 60 लाख के करीब नए कर्मचारी इससे जुड़े हैं, और युवाओं की संख्या अगर हम देखें तो 71% के आसपास है इसमें। और साथ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना के तहत निकल कर आया है कि महिलाएं भी 30% के आसपास जुड़ी हैं, यानी विमेन वर्कफोर्स भी इस योजना से बढ़ता हुआ देश भर में देखा जा रहा है। और कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ये आंकड़े हैं कि इतनी कम समय में और इतना अच्छा उत्साह है रोजगार के सृजन में, और साथ ही जैसा कि मैंने युवाओं की और विमेन वर्कफोर्स की तो बात की ही, क्या आपका कहना है?
2: दोनों चीजें हैं, एक तो इसकी जरूरत थी और दूसरी बात कि सरकार की ओर से मदद तो कंपनियां भी आगे बढ़ी। तो ये रजिस्ट्रेशन तो आपको दिखना ही था, ये जो जोश है वो तो दिखना ही था। जैसे अभी निवेश जी ने बात कही ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो
0: बिल्कुल
2: जाकर के इन्होंने कॉलेज से पिक किया, कैंपस से
0: जी
2: उठाया और लेकर के आ गए। अब यही इस योजना की जो खूबी है वो यही है
0: बिल्कुल। तो
2: ये, और जाहिर तौर पर ये फोकस ही किया गया है उस एज ग्रुप पे, जो बात अभी शुरुआत में अमन जी ने भी कही ना कि 21 से 30 के बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस भी वही है, क्योंकि वही जरूरत है, वही आने वाले दिनों में बदलेंगे विभाग को।
0: बिल्कुल
2: जी
0: बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा कि नाम में ही है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो विकसित भारत का
2: जी
0: एक रोड मैप ये योजना देती है, क्योंकि इसमें एक तरफ इंसेंटिव है नियोक्ताओं को और रोजगार पाने वालों को, दूसरी तरफ देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स को औपचारिक सेक्टर में लाने की इस योजना के तहत पूरी कवायद है, जिससे कि रोजगार बड़ी संख्या में बढ़े और एक पूरा स्किल सेट तैयार हो युवाओं का, जिससे कि देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें। बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़े, और इस योजना के जो फायदे हैं और आने वाले समय में जो एक बड़ा इसका आउटकम निकल कर सामने आएगा, इन सभी बातों पर आप सभी ने विस्तार से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: कंट्री वाइड

0: भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।

0: यह आकाशवाणी सूरतगढ़ है। रात के 10 बजे हैं। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
1: और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की

0: अरे सरला, ये मुंह अंधेरे हाथ में बोतल लेके कहाँ जा रही है?
1: जंगल जा रही हूँ दीदी, और कहाँ। इससे पहले कि दिन निकले उजाला हो, मैं जंगल में जाके आ जाती हूँ।
0: पर तू जंगल क्यों जाती है? तेरे घर में तो शौचालय बना हुआ है ना?
1: बना हुआ तो है दीदी, पर उसमें तो उपले रखे हुए हैं। और उस शौचालय में एक बार शौच के लिए जाने का मतलब है 3 बाल्टी पानी खर्च करना। तुम्हें तो पता है ना कि मैं पानी कितनी दूर से लेकर आती हूँ। अब इतनी मेहनत से लाए गए पानी को इस तरह बेकार में ही थोड़ी उड़ेल दूंगी।
0: बेकार में? अरे बावली, जरा सोच। पानी बचाने के चक्कर में तू अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को मुसीबत में डाल रही है।
1: तुम्हारी बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही।
0: अरे सरला, जरा दिमाग पे जोर डाल कि तेरे मल पे कितनी मक्खियां बैठती हैं, और वो ही मक्खियां वहां से उड़कर कई घरों में जाकर उनके खाने पीने की चीजों पे बैठती हैं, और उन चीजों को जब वो लोग खाएंगे तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेंगे?
1: हाय दैया, इतनी गहराई से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, घर पहुंचकर आज से ही शौचालय के उपले बाहर निकालकर हम सब उसे काम में लेना शुरू कर देंगे।
0: ये हुई ना समझदारी वाली बात।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आज है किशोर कुमार की, संगीत रचना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की।
1: चैनल सूरत का है। श्रोताओं, आइए सुने फिल्म संगीत।

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना सुना, आखिरी खत फिल्म से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दो दिल फिल्म का ये गाना सुना। लीजिए शायर का लिखा गाना सुनिए। मौसीकार रोशन, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है ताजमहल।

लीजिए, शकील बदायनी का लिखा गाना सुनिए। नौशाद ने धुन बनाई, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया। फिल्म है लीडर।

अभी आपने हसरत का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 10:30 हुआ चाहते हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए शाहिद परवेज का सितार पे बजाए राग झिनझोटी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने शाहिद परवेज का सितार पे बजाया राग झिंझोटी सुना। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे, तत्पश्चात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails,

0: innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।